यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना, ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माही, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is आकाशवाणी।
4: यह आकाशवाणी वाराणसी है। खेती की बातें कार्यक्रम में

0: लीजिए अमरूद का बाग लगाएं विषय पर दिनेश कुमार सिंह द्वारा दी गई ये जानकारी सुनिए।
1: किसान भाइयों, आज हम अमरूद का बाग लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। अमरूद वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी एवं बलुई दोमट मिट्टी अमरूद की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। अमरूद की अनेक किस्में हैं, जैसे इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 और एप्पल गुआवा। इनमें से जो भी प्रजाति का पौधा आपको मिल जाए ले करके लगा सकते हैं। अमरूद के पौधे लगाने का उपयुक्त समय जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक है। यह समय है जब आप अमरूद की बाग या अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं। बाग लगाने के लिए पहले खेत को जोतकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद 8-8 मीटर की दूरी पर गड्ढे बना लिए जाते हैं। ये गड्ढे 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे होते हैं। गड्ढे बनाते समय ऊपर वाली आधी मिट्टी एक तरफ और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे को भरते हैं। ऊपर वाली आधी मिट्टी 30 से 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 150 ग्राम लिंडेन चूर्ण, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई करते हैं और फिर मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं। गड्ढे की भराई इस तरह करनी चाहिए कि गड्ढे की मिट्टी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई हो। यदि गड्ढा भरने पर बारिश हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन यदि बारिश न हो तो सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। अगर गड्ढा ज़्यादा बैठ जाता है तो ऊपर से थोड़ा मिट्टी डालकर उसे ज़मीन के सतह में कर लेना चाहिए। इसके बाद पौधे को गड्ढे के बीचों बीच लगा देते हैं। पौधे को मिट्टी में उतनी ही गहराई तक दबाना चाहिए जितनी गहराई तक वह पौधशाला में दबा था। रोपाई करते समय पौधे के चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह दबाकर सिंचाई कर देनी चाहिए। रोपाई करते समय ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, और बदली हुई है या शाम का समय है तो ऐसे समय में ही रोपाई करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। पौधा लगभग 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, जिसमें कलम की गांठ अच्छी तरह जुड़ी होनी चाहिए तथा वह किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए। पौधों की रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद अमरूद के बाग की देखभाल करते रहना चाहिए। अच्छे फल और अच्छी गुणवत्ता के लिए पौधों को उर्वरक भी देना जरूरी है। 1 से 2 साल पुराने पौधों को 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 110 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से देना चाहिए। फलत वाले पौधों को, यानी जो 6 साल से ऊपर हैं, उन्हें 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 650 ग्राम यूरिया, 950 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। इन उर्वरकों को 2 बार में, जुलाई माह में और सितंबर अक्टूबर माह में देना चाहिए। गोबर की खाद की संपूर्ण मात्रा जून माह में ही दे दी जाती है। उर्वरकों को पौधों के चारों तरफ तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके फैलाव के नीचे देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक देने के बाद हल्की गुड़ाई करके उन्हें मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए और फिर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। कभी कभी अमरूद के पौधों पर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए 450 ग्राम जिंक सल्फेट व 300 ग्राम भुजा हुआ चूना को लगभग 75 लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पर मार्च अप्रैल माह तथा जून जुलाई माह में छिड़काव करना चाहिए। पुराने व फलदार वृक्षों की सिंचाई बरसात के बाद शुरू करते हैं। फलदार पौधों को अक्टूबर से जनवरी माह तक 2-3 सिंचाई कर देनी चाहिए। छोटे पौधों को नवंबर माह से फरवरी माह तक 1-1 माह पर तथा मार्च से जून तक 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अमरूद की

0: बागवानी करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अमरूद का बाग लगाएं विषय पर दिनेश कुमार सिंह द्वारा दी गई ये जानकारी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। हे सर्वशक्तिमान, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हमारे कष्ट हरो।

मन में जब भी बसाने की बात हो तो प्रभु आप ही हैं जिन्हें हम पल पल याद करते हैं, अपने मन में बसाए रखते हैं।

सच्चा सुख तो केवल भक्ति में है। भक्ति के लिए केवल सच्चे मन की आवश्यकता होती है और इससे देवता प्रसन्न होते हैं।

0: रॉय। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आज सुनिए किताबों से दोस्ती विषय पर विचार, स्वर अरुण पांडे का है।
1: अब्राहम लिंकन ने कहा है कि किताबें आदमी को ये बताने के काम आती हैं कि उसके मूल विचार आखिरकार इतने नए भी नहीं है। सच में किताबों से गुजरना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुजरने जैसा है। इस दुनिया में किताबें पढ़ने से बड़ा सुख शायद ही कोई हो। तभी तो किताबों को सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। साहित्यकार निर्मल वर्मा भी ठीक ही कहते हैं, किताबें मन का शोक, दिल का डर या अभाव की हूक कम नहीं करती, सिर्फ सबकी आंख बचाकर चुपके से दुखते सिर के नीचे सिरहाना रख देती हैं। किताबें जीवन के विभिन्न चरणों में हमारी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में साथ देती हैं। किताबें न सिर्फ हमें जानकारियां देती हैं, बल्कि हमारे अतीत के चलचित्र से भी रूबरू करवाती हैं। सफदर हाशमी कहते हैं, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सचमुच किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी होती हैं। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है, वे हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। किताबें हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। वे हमारे आदर्श मार्गदर्शक या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती हैं। किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आता है। वे हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं, साथ ही यथासमय लक्ष्य प्राप्ति में भी मददगार हैं। हम में से कई लोगों को अपने खाली समय में या सोने के पहले किताबें पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि पढ़ने से अवांछित तनाव पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। यह हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिसे हम सुकून की दुनिया कह सकते हैं। लोगों के विपरीत किताबें कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगती, बल्कि हमारे ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। विद्यार्थियों को निर्देशित करने का सबसे अच्छा तरीका है किताबों से दोस्ती करने की सलाह देना। कुछ महान व्यक्तियों की आत्मकथाओं वाली कई पुस्तकें हैं। ये किताबें विद्यार्थियों को उन लोगों के जीवन से प्रेरित होने में मदद कर सकती हैं, जिनसे वे अपने जीवन में प्रभावित रहते हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, जिससे हम जीवन में सत्य, अहिंसा और अनुशासन सीख सकते हैं। रोजाना कुछ घंटों के लिए पढ़ना शब्दावली के साथ साथ भाषा कौशल के निर्माण में भी मददगार साबित होता है। किताबें पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है और किताबें एक नेक दिल इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करती हैं। नैतिकता और मूल्यों से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ना हमें अच्छे गुणों से समृद्ध करता है और इस प्रकार हम समाज के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। पुस्तक पढ़ने के दौरान हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। हम काल्पनिक दुनिया में अपने आप चले जाते हैं। हमारे मन में चित्र बनने लगते हैं। यही हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ये हमें ध्यान केंद्रित करने और हमारी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी ने सही ही कहा है, कागज की ये महक ये नशा रूठने को है। किताबों से इश्क करने की ये आखिरी सदी है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्ययन से श्रेष्ठ विकल्प कोई नहीं है। इसलिए किताबें मानव की सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो सदैव न सिर्फ परत दर परत जीवन के उतार चढ़ाव से उसे परिचित कराती हैं,

अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, अनूप जलोटा और कल्याण।

0: बल्कि हर मुश्किल वक्त में एक दोस्त की भांति मनुष्य का साथ भी देती हैं।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज का विषय था किताबों से दोस्ती। स्वर अरुण पांडे का था। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज जल जनित रोग कारण और समाधान विषय पर डॉक्टर राजेश जैन द्वारा दी गई ये जानकारी सुनिए।
2: मैं डॉक्टर राजेश जैन, आयुर्वेद विशेषज्ञ वाराणसी। हमने पिछली चर्चा में जल जनित रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की थी। आगे हम जानेंगे कि उस जल जनित रोगों के कारण क्या हो सकते हैं और उनके लक्षण क्या मिलेंगे। तो जल जनित रोग, जैसा कि हमने लास्ट वार्ता में जाना था कि जो रोग गंदे पानी या दूषित पानी या उस पानी से बने भोजन से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां को लेकर आते हैं, उनको जल जनित रोग कहते हैं। अब इन सभी रोगों में जैसे उल्टी होना, दस्त होना, पेट में संक्रमण होना, साथ में पीलिया, पेचिस, कॉलेरा, टाइफाइड, ये सभी जो रोग हैं, ये सभी फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, जिसको दूषित या गंदा पानी या उस पानी के उपयोग से बने भोज्य पदार्थ से होते हैं। इन सभी बीमारियों में हमें कोशिश ये करना है कि हमारे घर का जो भी पानी है वो साफ करके या फिर उसे उबाल कर हम उसको प्रयोग करें। पानी दूषित होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे ये बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में जो आसपास की घर में जो नालियां रहती हैं, इन नालियों का पानी कई बार देखा जाता है कि कुओं में, तालाबों में या फिर आसपास की जो पाइपलाइन अगर कहीं पर डैमेज होती है तो उनके रास्ते हमारे घर में प्रवेश करता है। और वही पानी को हम अगर शुद्धता की ध्यान ना देकर अगर डायरेक्ट उपयोग में लेते हैं तो वो कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसके अलावा घर में जो पानी की टंकी होती है या फिर सोसाइटी में जो पानी की टंकियां होती हैं, उनका महीनों महीनों तक साफ सफाई ना होना, पानी को घर में ढककर ना रखना, इसके अलावा कूड़ा या कचड़े को सही जगह पर निस्तारण ना करना, साथ में मक्खियां और धूल ये भी पानी को गंदा करती हैं। तो इन सभी बातों पर को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना दिनचर्या और हमारे पानी का उपयोग हम सही ढंग से करेंगे, इस तरह की बीमारी नहीं होंगी। और यही पानी जब कोई व्यक्ति पीने के लिए उपयोग में लाता है तो उसे जो पानी के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर पैरासाइट्स हैं, जिसको परजीवी कहा जाता है, वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे करके शरीर के अंदर कई सारे विकारों को उत्पन्न करते हैं। समय रहते इस चीज का अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे काफी दिक्कत होने की संभावना होती है। सबसे बड़ा खतरा पानी की कमी हो जाता है, क्योंकि उल्टी अगर लगातार होते रहेंगी या फिर दस्त लगातार हो रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी के साथ में कुछ तत्व होते हैं को सॉल्ट्स बोलते हैं, उनका भी काफी हद तक शरीर से बाहर निष्कर्षण, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। और साथ में कभी अगर इस तरह के लक्षण हमें मिल रहे हैं तो उस समय हमें पानी का उपयोग अच्छे से करना है, पानी को उबाल कर ठंडा करके उसको बराबर लेना है, जिससे पानी की कमी ना हो। इसके साथ साथ अगर बच्चा है तो उसको ORS का घोल दे सकते हैं। अगर ORS हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है या फिर अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर भी उसे 1 लीटर पानी में उसे उबाल कर ठंडा करके उसमें 6 छोटी चम्मच शक्कर और आधी चम्मच नमक उसको बनाकर आप दिन भर पीने के लिए यूज कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वह पानी 24 घंटे के भीतर ही यूज करना है, उसको आगे नहीं करना है। आयुर्वेद में भी वर्षा ऋतु में कहा गया है कि वर्षा ऋतु में जो पाचन की शक्ति होती है वो दूसरी ऋतुओं की अपेक्षा कम होती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस मौसम के अनुसार हमारा जो खान पीन रहे वो ताजा रहे, हल्का रहे, जो आसानी पच सके और स्वच्छ होना चाहिए। तो इन सभी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम कहीं हद तक इन मौसम की बीमारियों से बच सकते हैं। साथ में इस मौसम में हमें अगर पेट में संक्रमण हो रहा है तो खाने में हल्का भोजन को यूज करना चाहिए, साथ में अपने नजदीकी जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप जल जनित रोग कारण लक्षण और समाधान विषय पर डॉक्टर राजेश जैन द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। केवल काली पुतली का दान ज्योतिदान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं, नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वो अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवें। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटें तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत रथ लेकर श्री राम सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से हो चले हैं।

विवरण। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रात 10 बजे एवं संसद समीक्षा रात 8 बजे, ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर डॉक्टर रामशंकर का गायन एवं इसी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 एवं दिन में 12:45 पर गायन आप सुनेंगे। कलाकार होंगे डॉक्टर शुभंकर दे। गैर फिल्मी गज़लों एवं गीतों का कार्यक्रम अंजुमन का समय रहेगा रात्रि 9:30 का। शाम 7 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत टॉक सुनिएगा, विषय होगा द लिटरेसी लेगेसी ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र। टॉकर होंगी डॉक्टर सुप्रिया सिंह। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई नंदलाल यादव और साजी के गाय लोकगीत के अलावा अनुभव खेती में इस विषय पर कृष्ण कुमार यादव और सतीश कुमार यादव के बीच की गई बातचीत भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा श्रोता आज की बात मार्गदर्शन यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 2:30 का। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 एवं सुबह 9:50 पर कलाकार होंगे नंदलाल यादव और साथी। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहने गीत संगीत के अलावा अन्य कार्यक्रम भी सुनेंगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे युगल किशोर सिंह। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12 बजे का। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस के अंतर्गत व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 11 बजे से। झनकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होगा सुबह 10 बजे से। मधुरिमा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह 8:45 पर एवं गुड मॉर्निंग बनारस का समय रहेगा सुबह 7 बजे से। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रात 10 बजे एवं संसद समीक्षा रात 8 बजे, ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर डॉक्टर रामशंकर का गायन एवं इसी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 एवं दिन में 12:45 पर गायन आप सुनेंगे। कलाकार होंगे डॉक्टर शुभंकर दे। गैर फिल्मी गज़लों और गीतों का कार्यक्रम अंजुमन का समय रहेगा रात्रि 9:30 का। शाम 7 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत टॉक सुनिएगा, विषय होगा द लिटरेसी लेगेसी ऑफ मुंशी प्रेमचंद। टॉकर होंगी डॉक्टर सुप्रिया सिंह। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई नंदलाल यादव और साथी के गाय लोकगीत के अलावा अनुभव खेती में इस विषय पर कृष्ण कुमार यादव और सतीश कुमार यादव के बीच की गई बातचीत भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा श्रोता आज की बात मार्गदर्शन यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 2:30 का। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 और प्रातः 9:50 पर कलाकार होंगे नंदलाल यादव और साथी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र से प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। आज की कड़ी के गायक कलाकार थे भूपिंदर सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का।

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: जाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: उससे अप्पा
1: आ गई है।

0: RC Kuri. So Banaras, let's get ready to groove. Presenting RJ Sana.
1: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक मस्त और बढ़िया हैं जी. क्या भाई बनारस, सावन दरवाजे पर दस्तक देने खड़ा है. बस शुरू ही होने वाला है वो महीना जिसका बनारसियों को साल भर बेसब्री से इंतजार रहता है. जी हाँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी इज ऑल सेट टू वेलकम द मंथ ऑफ सावन. सावन की वो रिमझिम फुहारें, गंगा घाटों पर गूंजते बम बम भोले के जयकारे और गलियों गलियों में सजने वाली शिव मंदिरों की कतारें, बस यही तो है हमारी असली काशी. तो भाई कमर कस लीजिए, कांवड़ यात्रा हो, रुद्राभिषेक हो या सोमवार के व्रत, सावन के दिन पूरे भक्ति और उत्साह से भरे होने वाले हैं. तो जल्दी से अपनी चाय की चुस्की लीजिए और लग जाइए बाबा की भक्ति में. और सावन की रिमझिम फुहारों के साथ ही साथ आज सुबह आसमान में सूरज की पहली किरण के साथ हवाओं में एक अलग ही मिठास और एहसास है. आज का दिन आम दिन नहीं है बनारस, आज है महापर्व गुरु पूर्णिमा. महर्षि वेद व्यास की इस पावन जयंती पर बनारस की इन तंग गलियों से लेकर घाटों के उस पार तक हर कोई अपने गुरु को नमन कर रहा है. बनारस तो वैसे भी गुरुओं की नगरी रही है, चाहे संगीत के घराने हो, अखाड़े हो या फिर शिक्षा के मंदिर. यहाँ तो कण कण में शंकर हैं और हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई गुरु ऐसा है जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है. मेरी भी जिंदगी में है मेरी माँ, जो मेरी पहली गुरु हैं और आज भी एक दोस्त की तरह मेरे साथ हमेशा खड़ी रही हैं. और बनारस पता है, मेरी माँ ना हमेशा कहती हैं कि अगर जीवन में असली सुकून और बड़ी सफलता चाहिए तो सबसे पहले एक काम कीजिए, हर नाव पे पैर रखना बंद कर दीजिए. इसकी बजाय अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाइए जो वाकई मायने रखती हैं. आज की दुनिया मल्टीटास्किंग और हमेशा व्यस्त रहने को एक खूबी की तरह देखती है. हमें लगता है कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हर जगह मौजूद रह सकते हैं और हर किसी को खुश रख सकते हैं. लेकिन सच ये है कि जब आप अपनी एनर्जी को 100 अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं तो आप किसी भी दिशा में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते. अच्छा, इसके साथ ही साथ एक बात और एड ऑन करना चाहूंगी कि हम अक्सर दूसरों को नाराज करने के डर से या किसी मौके को खो देने के डर से उन कामों के लिए भी हाँ कह देते हैं जिन्हें करने की ना तो हमारी इच्छा होती है और ना ही जरूरत. याद रखिए, जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ करते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है तो आप अनजाने में अपनी जिंदगी की किसी बेहद जरूरी चीज जैसे अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य या अपने किसी बड़े सपने को ना कह रहे होते हैं. एक गरिमापूर्ण और स्पष्ट ना कहना आपके समय और आत्मसम्मान की रक्षा करता है. ये समाज के दबाव में बहने के बजाय अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने जैसा है. इसलिए कम चीजें करिए लेकिन उन्हें इतनी शिद्दत और गहराई से करिए कि उनका रिजल्ट असाधारण हो. यही कम से ज्यादा ढूंढ लेने का असली हुनर है. हाँ जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र. तारीख है आज 29 जुलाई 2026 और दिन है आज बुधवार का. तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में. आज खास गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज बुधवार को जिले में घाटों, मंदिरों सहित कई जगहों पर कार्यक्रम को देखते हुए भीड़ अधिक होगी. इसको देखते हुए जिले में इंटर तक के विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्णय लिया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार सभी प्रधानाचार्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है. इधर कई विद्यालयों से भी बच्चों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दे दी गई है. इसके साथ ही सावन में जसीडीह और सुल्तानगंज स्टेशन पर 30 जुलाई यानी कि कल से 29 अगस्त तक ट्रेनों के ठहराव में अस्थायी परिवर्तन किया गया है. जसीडीह और सुल्तानगंज स्टेशन पर जिन मेल, एक्सप्रेस और प्रीमियम ट्रेनों का निर्धारित ठहराव 5 मिनट से कम है उनका ठहराव अस्थायी रूप से 5 मिनट तक किया गया है. इसमें बनारस देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है. दोनों स्टेशनों पर वंदे भारत

पांच मिनट रुकेगी। मालदा टाउन आनंद विहार टर्मिनल 31 जुलाई से 2 मिनट रुकेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सामान्य दर्शन के लिए कतार में औसतन 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। जी हां, संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरे सावन के दौरान सभी प्रकार के प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक लगाने का फैसला किया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र के अनुसार 30 जुलाई यानी कि कल से 28 अगस्त 2026 तक किसी भी स्तर पर विशेष सुविधा या प्रोटोकॉल दर्शन की अनुमति दी जाती है तो सामान्य श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा अवधि और बढ़ जाएगी, जिससे दर्शन व्यवस्था प्रभावित होगी और आम भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गर्मी और उमस के कारण इतनी लंबी प्रतीक्षा बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे में भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए विशेष और प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पूरी तरह स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 48वें दीक्षांत समारोह में 25 सेकंड में 63,060 डिग्रियां अपलोड कर दी गईं। राज्यपाल और विद्यापीठ की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने एक क्लिक कर इसे डिजी लॉकर पर अपलोड किया। अपने दीक्षांत भाषण में राज्यपाल ने कहा कि अगले साल से डिग्री प्राप्त करने की फीस नहीं देनी होगी, ये काम सीधे डिजी लॉकर से होगा, इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। उन्होंने बताया कि 2022 और 23 में 51,000 डिग्रियां अपलोड हुई, जिसमें से सिर्फ 20,000 डाउनलोड हुई। 2023 और 24 में 60,000 अपलोड और 38,000 डाउनलोड। 2025-26 में 41,000 अपलोड और 50,000 डाउनलोड हुई। राज्यपाल ने कहा कि अब कोई भी डिग्री, मार्कशीट और अंक तालिका की हार्ड कॉपी नहीं लेनी है। पेपरलेस काम करना पारदर्शिता को बढ़ाता है। संबंध कॉलेजों के बारे में कहा कि 2023 में विश्वविद्यालय ने 68 अवार्ड दिए थे, इसमें कोई संबद्ध निजी और राजकीय कॉलेज नहीं था। 2024 में भी यही स्थिति बनी। 2025 में विश्वविद्यालय को 47, प्राइवेट कॉलेज 42 और सरकारी और एडेड कॉलेजों को 10 अवार्ड मिले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इस 48वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों को स्वर्ण पदक से नवाजा। पहली बार राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने के बाद छात्र छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। पदक पाने वाले मेधावियों में जीटीसी में हवलदार की बिटिया वुशु, खिलाड़ी अंजलि कुमारी मुक्केबाज बनना चाहती हैं, वहीं सफाई कर्मी का बेटा कलाकार बनकर अपने सपने को साकार करना चाहता है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार की छात्रा निशा सिंह को अतुल माहेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक मिला और तेलंगाना की उद्यमी श्रीधर राव को डीलिट की उपाधि मिली और बेहतर कार्य करने वाले 4 शिक्षकों को भी राज्यपाल ने सम्मानित किया। इसमें बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर के सिंह, बलदेव पीजी कॉलेज बड़ा गांव से डॉक्टर रामजी दुबे, डॉक्टर दयाशंकर सिंह यादव और यूपी कॉलेज से देव नारायण सिंह शामिल रहे। दीक्षांत समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से राज्यपाल सहित अन्य अतिथियों का दिल जीत लिया। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 29th of July। यह 1957 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का गठन किया था। 1980 में आज के दिन मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और बर्थडे की बात कर ली जाए तो आज ही के दिन साल 1904 में प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति JRD टाटा का जन्म पेरिस में हुआ। और आज ही के दिन ईयर 1959 में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त का भी जन्म आज ही के दिन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। और प्रसिद्ध भजन और गजल गायक अनूप जलोटा का भी जन्म आज के दिन साल 1953 में हुआ था। और गुरु पूर्णिमा के अलावा अगर स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए तो आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती संख्या, उनके प्राकृतिक आवासों के विनाश, अवैध शिकार और संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट शिखर सम्मेलन में इस दिन की स्थापना की गई थी। जागरूकता के लिए लोगों को यही समझाना है कि बाघ हमारे पर्यावरण और जंगल के स्वास्थ्य के लिए कितने जरूरी हैं। अवैध शिकार और जंगलों के घटने से बाघों पर मंडरा रहे खतरे को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। एंड नाउ बनारस, लेट्स मूव ऑन टू योर फेवरेट सेगमेंट
बात जरूरत की।

देखिए, बारिश के मौसम में बढ़ी हुई नमी और धूप की कमी के कारण कपड़े देर से सूखते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है, साथ ही फंगस और बैक्टीरिया पनपने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इस कारण स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन और रैशेज हो सकते हैं। दरअसल बारिश में हवा से ज्यादा नमी होने के कारण कपड़ों से पानी का वाष्पीकरण धीमा हो जाता है और कपड़े सुखाना एक चुनौती बन जाता है। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बारिश में जल्दी कपड़े सुखाने के हैक्स पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कौन सी गलतियां कपड़ों में स्मेल बढ़ा सकती हैं, किन स्मार्ट हैक्स को अपनाकर इस परेशानी से बचा जा सकता है। इस दौरान यानी कि बारिश में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ऐसे में कपड़ों में मौजूद पानी भाप बनकर जल्दी नहीं निकल पाता। जब आसपास की हवा में पहले से ही नमी होती है तो वो कपड़ों से निकलने वाली नमी को आसानी से सोख नहीं पाती, इससे कपड़े सूखने की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फैब्रिक कितना पानी सोखता है और उसमें से नमी कितनी जल्दी बाहर निकलती है। कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो जल्दी और देर से सूखते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, ड्राई फिट, रेयन, स्पोर्ट्स वियर, ये सारे फैब्रिक्स जल्दी सूख जाते हैं। और हैवी कॉटन, जीन्स, तौलिया, कॉटन बेडशीट, स्वेटशर्ट या हुडी देर से सूखते हैं। अगर घर में आपके अच्छा वेंटिलेशन है तो आप घर के अंदर कपड़े सुखा सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में गीले कपड़े सुखाने से हवा में नमी बढ़ जाती है, इससे फंगस और बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इस कारण कपड़ों में स्मेल आने के साथ साथ सांस और स्किन से जुड़ी परेशानियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर घर के अंदर कपड़े सुखाते हैं तो खिड़कियां खुली रखें, पंखा चलाएं या एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करें ताकि कमरे में नमी जमा ना हो। अगर कमरे में वेंटिलेशन ठीक ना हो तो ऐसा हो सकता है कि दीवारों पर नमी या सीलन आ जाए। गीले कपड़ों से निकलने वाली नमी दीवारों और छत पर जमने लगती है। लंबे समय तक ऐसा होने से दीवारों में सीलन, फफूंदी और स्मेल की समस्या हो सकती है। कपड़े सुखाने के लिए सबसे बेहतर जगह बालकनी है, क्योंकि वहां खुली हवा और बेहतर वेंटिलेशन मिलता है, इससे कपड़े जल्दी और ठीक से सूखते हैं। खिड़की के पास भी कपड़े सुखाए जा सकते हैं, बशर्ते वहां अच्छी हवा और धूप आती हो। बाथरूम कपड़े सुखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, वहां पहले से ही नमी ज्यादा होती है और वेंटिलेशन कम होता है, इससे कपड़े देर से सूखते हैं और उनमें स्मेल, फंगस का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बारिश में कपड़े सुखाने की जो बेस्ट जगह होती है, तो अगर धूप है तो बालकनी बेस्ट है, अगर बारिश हो रही है तो पंखा बेस्ट है, और ज्यादा नमी हो रही है तो आप अपना एसी ड्राई मोड पर कर सकते हैं, और लगातार बारिश हो रही है तो डीह्यूमिडिफायर जो है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अगर हवा आती है तो खिड़की पे आप कपड़े सुखा सकते हैं, और हेयर ड्रायर का भी कभी कभी यूज लोग करते हैं बारिश में या ठंड के मौसम में, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करना चाहिए, हमेशा नहीं। और आखिरी विकल्प जो है, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे, बाथरूम में ही कपड़े सुखाइए। कुछ आसान हैक्स अपनाकर कपड़ों को आसानी से सुखाया जा सकता है, जैसे कि बालकनी में जो है अगर आप कपड़े सुखा रहे हैं तो डिटर्जेंट कम डालें, धोकर तुरंत सुखाएं, अच्छी तरह निचोड़ें, हैंगर पर सुखाएं, मोटे कपड़े अलग सुखाएं, कपड़ों को दूर दूर सुखाएं, मशीन में स्पिन मोड 1000 रखें। अगर घर में कपड़े सुखा रहे हैं तो कपड़ों के बीच दूरी रखें, कमरे का पंखा चलाएं, रूम में क्रॉस वेंटिलेशन रखें, डीह्यूमिडिफायर ऑन करें, एसी का ड्राई मोड ऑन करें, हल्का गीला आयरन से सुखाएं, और हेयर ड्रायर से भी आप कभी कभी सुखा सकते हैं। कपड़े धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ें, एक्स्ट्रा स्पिन करें ताकि पानी कम से कम रह जाए। कपड़े को फैलाकर हवादार जगह पर टांगें। अगर बाहर जगह ना हो तो पंखे या एग्जॉस्ट फैन के नीचे भी आप सुखा सकते हैं, और खिड़कियां खोलकर वेंटिलेशन बना सकते हैं। मोटे कपड़ों को बीच बीच में पलटते रहें ताकि अंदर की नमी निकल सके। जरूरत पड़े तो हैंगर या रस्सी पर दूरी बनाकर टांगें ताकि कपड़े एक दूसरे से चिपके न रहें। हल्की धूप निकलते ही तुरंत बाहर डालें या आयरन ड्रायर की मदद लें ताकि कपड़ों में स्मेल और फंगस ना पनपे। बारिश में कपड़ों की स्मेल दूर करने के कुछ आसान तरीके हैं, जैसे नमक वाले पानी में आप कपड़े भिगो सकते हैं, इससे सीलन की स्मेल कम होती है। सफेद सिरका आप मिला सकते हैं, बैक्टीरिया बदबू कम होती है। बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, जो उसकी गंध होती है वो न्यूट्रल होती है, और नींबू का रस भी आप मिला सकते हैं, कपड़ों में ताजगी आती है। और बदबू अगर आप नहीं चाहते कि आपके कपड़े से स्मेल आए तो उसको धोकर तुरंत सुखाएं। और एक बात का और ध्यान रखें कि अलमारी में सूखे कपड़े ही रखें, सिलिका जेल रखें या नीम की पत्तियां रखें। गीले कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़े बिना टांग देना सबसे बड़ी गलती होती है। इसके अलावा कपड़ों को आपस में सटाकर या ओवरलैप करके सुखाना, बंद कमरे में बिना हवा के कपड़े सुखाना, कपड़े पूरी तरह सूखने से पहले अलमारी में रख देना, गीले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में घंटों छोड़ना, मोटे और पतले कपड़ों को एक साथ सुखाना,

0: नमी वाली जगह पर कपड़े सुखाना, कपड़ों को कई दिनों तक एक ही जगह टंगा रहने देना, स्मेल आने पर भी कपड़ों को दोबारा धोने की बजाय पहन लेना, ये सारी गलतियां हैं जो हम कभी न कभी जरूर करते हैं। मॉनसून में गीले या नमी वाले कपड़े पहनने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे स्किन पर फंगल इन्फेक्शन, दांत खुजली का रिस्क बढ़ जाता है, शरीर से स्मेल आने लगती है, रैशेस, खुजली और स्किन में जलन हो सकती है, लंबे समय तक नमी रहने से सेंसिटिव स्किन में एलर्जी बढ़ सकती है, इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, पहले से मौजूद एक्जिमा या अन्य स्किन डिजीज के लक्षण बढ़ सकते हैं, बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण का रिस्क ज्यादा बढ़ सकता है। और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप कभी मतलब रेयरली हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हैं, तो वो कभी कभी इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिंथेटिक या नाजुक फैब्रिक वाले कपड़े जो है वो कभी मत सुखाइएगा, इससे आपका जो कपड़ा है वो नुकसान उसका हो सकता है। ज्यादा डिटर्जेंट पूरी तरह धुल नहीं पाते हैं कपड़ों को और कपड़ों में साबुन के अवशेष छोड़ देते हैं, ये अवशेष नमी के साथ मिलकर बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, इससे कपड़ों में सीलन जैसी स्मेल आने लगती है।
1: बात जरूरत की।
0: सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यस, देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर दिया विशेष बल।

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है यह विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों को रिहा करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर मांगा जवाब। और गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए हैं प्रभावी कदम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कल अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भावी कार्ययोजना की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: यह बैठक विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करने पर केंद्रित रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार के भीतर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाकार दोनों प्रकार की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और एकीकृत एवं प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर सकें। जन केंद्रित सुशासन का महत्व बतलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिक ही सदैव शासन व्यवस्था के केंद्र में रहने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि हर निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर कल लोकसभा में चर्चा हुई। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्यवाही को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कल कई बार बाधित हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल नीट मुद्दे पर प्रदर्शन के मामले में गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्यवागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए

0: लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है।
2: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता के दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे। हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। ये राज्य सरकार कोई भी रहे इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
1: प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
3: सनातन दर्शन विचार एवं संस्कृति में गुरु शिष्य के रिश्ते को प्रतिष्ठित करने वाला पावन पर्व गुरु पूर्णिमा गोरक्ष पीठ के लिए विशेष होता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वह अवसर होता है जब गोरक्ष पीठाधीश्वर शिवावतार एवं नाथ पंथ के आदि गुरु महायोगी गोरखनाथ सहित पीठ के अपने पूर्ववर्ती गुरुजन की पूजन स्तुति करते हैं। इसके बाद वह अपने शिष्यों और गोरक्ष पीठ के श्रद्धालुओं को स्नेहाशीष से अभिसंचित करते हैं। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: आज से ही भारतीय जनता पार्टी वाराणसी से देशव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। इसमें मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन लागू किया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर दिया विशेष बल। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है यह विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों को रिहा करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर मांगा जवाब। और गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए हैं प्रभावी कदम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडिया वेव 241.5 हजार मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है गायन, राग है शिव तोड़ी, कलाकार हैं डॉक्टर शुभंकर दे। आपके साथ तबला संगति किशोर कुमार मिश्रा की है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गायन सुन रहे थे। राग था शिव तोड़ी, कलाकार थे डॉक्टर शुभंकर दे। आपके साथ तबला संगति किशोर कुमार मिश्रा की थी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में

0: लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली

0: समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलिट ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के

0: प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना ये है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000-meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bagged silver medal in women's weightlifting event.

0: मुकाबले में हरजिंदर कौर ने भी चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रहिशगाह पर सरकार के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के साथ आला सतह की दूसरी मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने खजाने, मईशत, कॉमर्स, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों से वाबस्ता महकमों और वजारतों के मुस्तकबिल के इक़दाम के एजेंडे का जायजा लिया। इस मीटिंग में विकसित भारत के मकसद की समत पेशरफ्त में तेजी लाने पर तवज्जो मरकूज की गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में टीम साजी पर बिलखसूस जोर दिया और अफसरान से अपील की कि वो एक मुश्तरक मकसद के एहसास के साथ काम करें। उन्होंने हुकूमत के अंदर उफकी और उमूदी दोनों तरह की रुकावटों को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि महकमे आपसी हमांगी के साथ काम करें और मरबूत नतायज फराहम कर सकें। अवाम को मरकज में रखने वाली हुक्मरानी की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के अवाम हुक्मरानी के मरकज में रहने चाहिए। जनाब मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि तवानाई की सलामती, कौमी सलामती, इक्तसादी इस्तेहकाम और शहरियों की बहबूद से करीब से जुड़ी हुई है। जनाब मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ही डिजिटल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी ने उन हिकमत अमली वाले शोबों में पेशगी और फ़ौल मुआसलात की अहमियत पर जोर दिया जहां भारत बड़े इकदाम कर रहा है ताकि ऐसे इकदाम के इर्द गिर्द फैली गलत मालूमात और बेबुनियाद खदशात का मुकाबला किया जा सके। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों और शोबों के सेक्रेटरीज और वज़ीर आज़म के दफ्तर के सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज़ से आदित्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: लोकसभा में आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक तर्मीम बिल 2026 पर आगे बहस होगी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल ऐवान में यह बिल गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किया। मजकूरा बिल में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट में तरमीम की बात कही गई है। इस बिल में कई अहम दफात को शामिल किया गया है। इनमें 10 साल तक की कैद की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और कसूरवार अफराद की इमलाक जब्त करना शामिल है। मुतालिका केसों में तेजी के साथ निपटाने की खातिर मस्कूरा बिल में कहा गया है कि हर रियासती सरकार और मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर मुकदमे की कार्रवाई के लिए खसूसी टास्क फोर्स अदालतें कायम करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि थाने में मुतालिका जानकारी कलमबंद किए जाने के 2 महीने के अंदर अंदर इन मामलों की तहकीकात मुकम्मल की जानी चाहिए जबकि मुकदमे की कार्रवाई फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के 3 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगी। ये बिल पेश करते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए बिल में तलबा और मुल्क के नौजवानों की बहबूद के तहफ्फुज के तहत सरकार के पुख्ता अहद का इहादा किया गया है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो तालीम के शोबे के ताल्लुक से संजीदा नहीं है और वो हकीकी इस्लाहात लाना नहीं चाहती।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने मस्कूरा बिल को एक बड़ी तब्दीली लाने वाला कदम करार दिया और कहा कि मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहानात को यकीनी बनाने के लिए इस तरह का बिल वक्त का तकाजा है।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने मुख्तलिफ इम्तिहानात के पर्चे लीक होने के मामले पर तश्वीश जाहिर की है। जनाब यादव ने कहा कि 2024 में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक नया

0: बनाए जाने के बावजूद इस साल नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ। इधर कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो तलबा के मफादात का तहफ्फुज़ करने में नाकाम रही है और वो तालीमी निजाम को कमजोर कर रही है। दीगर अरकान ने भी बहस में हिस्सा लिया। इनमें एनसीपी, सीपीआईएम, वाईएसआरसीपी, आरजेडी, एआईएमआईएम और श्रोमणी अकाली दल शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद खवातीन को बाइख्तियार और उनकी गुजर बसर को यकीनी बनाना है। यह फैसला कल दिल्ली सेक्रेटरिएट में वजीर आला रेखा गुप्ता की सदारत में एक काबीना मीटिंग में किया गया। स्कीम के तहत अहल खवातीन को हर महीने 2500 रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम के लिए 2026-27 के बजट के लिए 5110 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में नमानिगारों से बात करते हुए वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का आगाज 1 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 से 60 साल की उम्र के दरमियान वाली वो खवातीन जिनके कुनबे की आमदनी 25 लाख रुपए सालाना है, इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगी।
1: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
0: भारतीय जनता पार्टी आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें यौमे पैदाइश के मौके पर गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में पूरे मुल्क में श्री गुरु रविदास महाराज समरस्त संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। वाराणसी में सियर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जाय पैदाइश पर इस मुहिम का बाजाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज बनारस के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास के जाय पैदाइश पर इस मुहिम का फौरी तौर पर आगाज होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां पर दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस मुहिम के तहत संत रविदास के मुकद्दस जाय पैदाइश की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्क की दीगर रियासतों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 25,000 लोगों के शामिल होने का इम्कान है। प्रोग्रामों की ये फहरिस्त माघी पूर्णिमा और संत रविदास की योम पैदाइश यानी अगले बरस 20 फरवरी तक चलेगी। बीजेपी के सदर नितिन नवीन, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी समेत तमाम सरकर्दा लीडरान के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की उम्मीद है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: केरल में 14 में से 7 जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में तेज बारिश का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत में आज सुबह सवेरे से औसत बारिश हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके में सरकार की वेश्याना कार्रवाई में गुजश्ता 2 दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक मकामी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने हजारों पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे पीर के रोज 25 अफराद मारे गए जबकि कल मजीद 5 अफराद हलाक हुए। उधर इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात की आजादाना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खित्ते में मवासलाती खिदमात बहाल की जाएं और वहां मीडिया और आजाद मुजाहिदीन को जाने की इजाजत दी जाए। अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमेरिका ने यह दावा भी किया है कि गुजश्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में ये इल्जाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमेरिकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई

0: के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाजों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलहा रखने के मकाम को निशाना बनाया। ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों में गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में इस्माइनास चैंपियन का मकाम ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद रहा। 29 साल भारतीय वेटलिफ्टर ने कंबाइन वजन 2,227 किलोग्राम उठाकर भारत का सातवां हिस्सा हासिल कर लिया। इस मुकाबले में हरजिंदर ने भी दौलत मुश्तरका का लगातार दूसरा तमगा हासिल किया। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में कांस्य का तमगा हासिल किया था। इसके साथ ही ग्लासगो के इन खेल मुकाबलों में भारत के तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है, जिनमें 2 सोने, 7 चांदी और 3 कांस्य के तमगे हैं। इसी दौरान 4 भारतीय मुक्केबाजों का सोने के तमगे हासिल करने का यकीन है। ये लोग अपने तमगों को चांदी और सोने के तमगों में बदलने के मकसद से अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे जब ये लोग सेमीफाइनल्स खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल पर बहस को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, पेपर लीक की रोकथाम के तरमीमी बिल पर जोरदार बहस। अखबार प्रताप की सुर्खी है, लोकसभा में मंगल को भी वक्फे सवालात खलल का शिकार रहा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर आजम ने आसाम के अराकीन पार्लियामेंट से मुलाकात करके सैलाब की सूरत हाल की मालूमात हासिल की, मदद का यकीन दिलाया। राजनाथ ने कोस्ट गार्ड में सिनफी मसावात और इमदादी रकम से मुतालिक 2 पॉलिसी असलाहत का आगाज किया। ये खबर भी अखबार में नुमाया है। अखबार ने दौलत मुश्तरका खेलों में पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ के शॉटपुट में सोने का तमगा जीतने की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार की अहम बैन अलावी खबरें इस तरह हैं, इकतसादी पाबंदियां ईरान पर फौजी हमलों से ज्यादा मुअसर हो सकती हैं, अमरीकी हुकाम का बयान। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुजाकरात में अमरीकी तजावीज मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने तुर्की को F-35 जंगी तैयारों की फरोख्त पर नेतन्याहू का एतराज मुस्तरद कर दिया।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों और वजारतों में करीबी तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आला अहदेदारों के साथ मीटिंग में मुस्तकबिल के इकदामात के एजेंडे का जायजा लिया। आज लोकसभा में पब्लिक इम्तहानात में गलत और तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर आगे बहस होगी। दिल्ली सरकार ने हर अहल खातून को 2,500 रुपए की महाना माली इमदाद फराहम करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जाबराना कार्रवाई में मरने वालों की तादाद गुज़श्ता 2 दिन के दौरान बढ़कर 30 तक जा पहुंची है। और मगरबी एशिया में ईरान ने अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आप सुनेंगे मधुरमा कार्यक्रम इन संदेशों के बाद।
3: पुलिस
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा,
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658,
3: 0542227658।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658
3: 0542227658।
4: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता। और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं, हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा, फिल्म संगीत का सदाबहार कार्यक्रम। आज का मधुरिमा कार्यक्रम संजय दत्त पर केंद्रित है। वजह उनका जन्मदिन है, तो उन्हें ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन की। और इस आरंभिक गीत से पहले आप सभी को नमस्कार आपकी रेडियो साथी सिद्धार्थ का। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। इनके माता पिता का नाम हम बताएंगे आपको, तो आपको पता लग ही जाएगा कि पूरा परिवार फिल्मी पृष्ठभूमि के लिए मशहूर था और मशहूर है। पिता सुनील दत्त और माता का नाम नरगिस दत्त, दोनों अपनी अपनी जगह एक हस्ताक्षर अपने आप में। एक बाल कलाकार के रूप में 1972 की फिल्म रेशमा और शेरा से फिल्मों में पदार्पण किया और 1981 की फिल्म रॉकी से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनका प्रवेश हुआ। तो क्यों ना फिल्म रॉकी का ये गीत सुनते चलें और बाकी जानकारी इस गीत के बाद।

श्रोताओं, वो फिल्म विधाता 1982 से जो सर्वाधिक कमाई वाली फिल्म थी, इस फिल्म से सितारे बने। उनकी फिल्म 1985 में जान की बाजी, 1983 में मैं आवारा हूँ, 1986 फिल्म जीवा, 1986 में ही फिल्म मेरा हक, 1987 में इनाम 10,000, 1987 में जीते हैं शान से, 1988 में मर्दों वाली बात, 1989 में इलाका, 1989 में ही फिल्म हम भी इंसान हैं, कानून अपना अपना 1989, ये फिल्में प्रमुख रहीं। ये गीत जो आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म जीवा से। आइए सुने हमारा आप साथ साथ कार्यक्रम मधुरिमा।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का STD कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से

0: 11 बजे के बीच, तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मधुरिमा आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज का कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म अभिनेता संजय दत्त पर, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। 1986 की फिल्म नाम से उन्होंने समालोचकों से भी प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म कब्जा 1988 और जी पी दत्ता की फिल्म हथियार 1989 के लिए भी समालोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हथियार से है।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मधुरिमा। ये था फिल्म हथियार का गीत और 1999 का वर्ष उनकी वापसी का दौर रहा। इसी वर्ष उनकी फिल्म वास्तव के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उनकी सबसे सफल फिल्म में फिल्म वास्तव शामिल है। लगे रहो मुन्ना भाई 2006, इस फिल्म के लिए उन्हें मुन्ना भाई के अभिनय के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके पहले 2003 में इनकी फिल्म मुन्ना भाई MBBS आई थी, जो सफल फिल्मों की श्रेणी में थी। साथ ही फिल्म खलनायक को कैसे हम भूल सकते हैं, जो 1993 में आई थी और सफल फिल्मों की श्रेणी में रही। ये गीत फिल्म खलनायक से, और इसी गीत के साथ ही एक बार पुनः संजय दत्त जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए हमें यानी सिद्धार्थ को आज की मधुरिमा कार्यक्रम को समाप्त करने की यहीं अनुमति दें। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत की सदाबहार, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। यह आकाशवाणी वाराणसी है। कुछ ही पल में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है विवेक कुमार का।
2: भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 11 करोड़ 32 लाख की लागत से भव्य बुद्ध थीम पार्क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसके उद्घाटन की बात कही जा रही है। यह पार्क बोध वृक्ष, 3D गैलरी और लाइट एंड साउंड शो जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बौद्ध दर्शन का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा, जिससे कुशीनगर की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा गौतम बुद्ध संग्रहालय के नजदीक विकसित इस पार्क को जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। आधुनिक तकनीक, आध्यात्मिक अनुभव और बौद्ध विरासत के अद्भुत संगम के रूप में विकसित यह थीम पार्क देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन, दर्शन और करुणा के संदेश से जोड़ने का नया माध्यम बनेगा। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज विकास खंड में जल जीवन मिशन के तहत जल चौपाल एवं जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की

0: अध्यक्षता गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ पेयजल के महत्व, जल संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीणों से पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता एवं नियमितता के संबंध में फीडबैक भी प्राप्त किया। ग्रामीणों ने यह बताया कि योजना के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जीवन शैली में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टेकुआटार में बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि
1: बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को, अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर जनसभा को गोरखपुर के सांसद रवि किशन, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, प्रदेश सरकार के कारागार व कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान तथा अन्य स्थानीय विधायकगण ने संबोधित किया। कुशीनगर जिले में वृक्षारोपण महाभियान के तहत बीते 12 जुलाई को जिले के विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 39 लाख से अधिक पौधरोपण किया गया। फाजिलनगर क्षेत्र में बौद्धकालीन कुकुत्था नदी के समीप वन विभाग की भूमि पर विशिष्ट वन की स्थापना की गई, जहां लगभग 17,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। कुशीनगर जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुशीनगर जिले में खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण अभियान के 8वें चरण का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मोबाइल वेटनरी यूनिट एवं बहुउद्देशीय सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 जुलाई से चलने वाला यह अभियान 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जिले में पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुशीनगर जिले में लगभग 1,73,000 से अधिक पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है।
2: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख है नरेंद्र प्रताप का।
3: जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के परिसर में प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को आयोजित होने वाले किसान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में जनपद के सुदूर क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में कृषकों ने प्रतिभाग किया। पिछले दिनों जिले में मानसूनी बारिश के चलते जिले में पानी में डूबकर होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि मानसून के दौरान डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मानसून के आगमन के साथ ही जनपद आजमगढ़ में नदियों, तालाबों, पोखरों, झीलों, नहरों एवं अन्य जलाशयों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डूबने की अनेक दुखद घटनाएं सामने आई हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं असावधानी, जलधाराओं की गहराई एवं तीव्र बहाव का सही अनुमान न लगा पाने तथा सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि वो स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा जलाशयों के समीप विशेष सतर्कता बरतें। मॉनसून के समय में जगह जगह जलभराव, गंदे पानी और नालियों के कारण संक्रमण जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे निपटने के लिए जिले में गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जुलाई माह में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में

0: चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए संचारी रोगों से बचाव, स्वच्छता बनाए रखने तथा जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संयुक्त अभियान है जिसमें पंचायत विभाग साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग जागरूकता एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। आजमगढ़ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले कुल 49 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विभाग भवन आजमगढ़ के सभागार में किया गया। मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने छात्राओं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिला एवं बालिका कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। छात्राओं ने सम्मान प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अपने जीवन का प्रेरणादायी क्षण बताया तथा भविष्य में और अधिक मेहनत कर जनपद एवं प्रदेश का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात समूह सखियों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण शिविर हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जिले में अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यशाला में विकासखंड अहिरौला, अतरौलिया, हरैया, लालगंज, मार्टिनगंज एवं मेहनगर की समूह सखियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण के दौरान शासन की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों की महिलाओं को अधिकाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के संबंध में समूह सखियों को आवश्यक दिशा निर्देश एवं विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसे न केवल महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। प्रदेश सरकार नारी शक्ति को विकसित उत्तर प्रदेश की धुरी मानते हुए महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं समग्र सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को नई गति प्रदान कर रहा है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये पहली सूचना थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त हुई है। सूचना अनुसार आलोक कुमार मोदनवाल, उम्र 16 वर्ष, इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। रंग सांवला, लंबाई 5 फीट 5 इंच, पहनावा नीला जीन्स शर्ट। इनके पिता का नाम है विनोद कुमार गुप्ता और दिनांक 26/6/2026 दिन शुक्रवार को अपने निवास से निकले किंतु अभी तक वापस नहीं आए। इनके बारे में कोई भी जानकारी यदि आपके पास हो तो कृपया मोबाइल नंबर 7398049968 और 9695382788 इन दोनों मोबाइल नंबरों पर देने का कष्ट करें। एक और खोए व्यक्ति के बारे में सूचना हमें

मिली है, और ये सूचना जगतपुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त हुई है। सूचना अनुसार इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनका नाम है रानी, उम्र है 16 वर्ष, पिता का नाम रज्जब। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। रंग कोरा है, लंबाई 4 फिट 2 इंच लगभग, ये सूट प्लाजो पहनी हुई हैं, और 2/5/2026 को दोपहर से घर से निकलने के बाद गायब हो गई हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। जिस किसी व्यक्ति को कहीं ये मिले तो आप इन नंबरों पर, मोबाइल नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर हम आपको नोट किया देते हैं, 8957906654 और 9219173864। इसके अलावा थाना प्रभारी रोहनिया और उत्तर निगम अमीर बहादुर सिंह वाराणसी, इनका मोबाइल नंबर है 9798559525। मोबाइल नंबर अमीर बहादुर सिंह का आप नोट कर सकते हैं, 7985595525। और थाना प्रभारी रोहनिया वाराणसी का मोबाइल नंबर है 9454404397। इन नंबरों पर आप सूचना दे सकते हैं। एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है, पंचराव धन्नूपुर थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनका नाम है नज्जुम बानो और गुलाम हुसैन इनके पिता का नाम है, और इनकी ऊंचाई है 4 फिट 9 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास हो तो पचराव धन्नोपुर थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी को कृपया दे सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम रेल होगा हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से फजाओं के खला से, सूरज के उजाले से फजाओं से खला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर से पुरसरार घटा से, बिजली के चमकने से कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से अनाजों से गजा से, बरसात से तूफान से पानी से हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। सामीन बज़्म, आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबाब अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है रामपुर रेडियो मरकज से आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। समय से जब ये दुनिया वजूद में आई तो इसमें ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत के पेश नज़र हर उस चीज़ को पैदा किया गया जो कि ज़िंदगी के तहफ़ के लिए ज़रूरी है, ख़ुसूसन इंसान जिसे अशरफुल मखलूक कहा गया, उस हज़रत इंसान के लिए

0: जमीन के बनाने वाले परवरदिगार ने हर उस चीज का इंतजाम किया जो जिंदगी की बका और उसकी बेहतरी के लिए जरूरी थी। बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में एहसास होता है कि आखिर इसको बनाने की क्या जरूरत थी, या दुनिया में इसकी क्या अहमियत, क्या हैसियत है, क्या जरूरत है। कभी कभी हम मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों, मच्छर मक्खी से परेशान होकर ये कह बैठते हैं कि आखिर अल्लाह ने इन्हें क्यों पैदा किया। लेकिन सामीन, जब हम गहराई से नज़र डालते हैं तो कोई भी चीज़ कुदरत के कारखाने में बेकार नहीं है। इसी तरह हमारी जंगल की जिंदगी, जंगली जानवर जो हमें बहुत डरावने महसूस होते हैं और यूं लगता है कि शायद ये हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो जाते हैं, इनकी क्या अहमियत और क्या जरूरत। समिन, जंगली जानवरों की अहमियत भी हमारे माहौल और इंसानी बका के लिए नागुजीर है। ये जानवर बायोडायवर्सिटी यानी हयातियाती तनवों को बरकरार रखने और कुदरत के माहौलियाती निज़ाम को मुतवाजन रखने और खुराक की जंजीर को चलाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनके बगैर तो जिंदगी का तवाजुन ही इस जमीन पर बिगड़ सकता है। जंगली जानवर माहौल को साफ रखने और बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। जैसे कोई मुर्दा जिस्म, मुर्दा जानवर, मुर्दा कीड़े मकोड़े, उन सबको ये खाकर सफाई का काम अंजाम देते हैं। इनकी मौजूदगी जंगलात और कुदरती नबातात की अफजाइश के लिए भी जरूरी है। जंगली जिंदगी के लिए और हमारी खेती के लिए फायदेमंद कीड़ों पर काबू पाती हैं और पौधों के जरखेजी में अहम किरदार अदा करते हैं जो इंसानी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाता है। जंगली पौधों और जानवरों का मुताला नई अद्वियात और इलाज की दरियाफ्त में भी मददगार साबित होता है। जंगली जिंदगी किसी भी मुल्क के कुदरती हुस्न का अहम हिस्सा है और कौमी मईशत में वर्ल्ड लाइफ टूरिज्म के जरिए नुमाया इजाफा होता है। जंगलात की कटाई और बेदरिया शिकार की वजह से हमारे जंगली जानवरों की बहुत सी खूबसूरत और नायाब नस्लें नापैद हो रही हैं जिन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सामीन, आज 29 जुलाई बैनुल अक्वामी टाइगर्स डे इसी जिम्न का एक हिस्सा है जिसे आलमी योम शेर भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ही दुनिया भर में जंगली शेरों के तहफ्फुज़ के लिए शऊर बेदार करना और उनके कुदरती मस्कन को तबाह होने से बचाना है। समीन, शेरों की हमारी जिंदगी में, हमारे इस जंगल की जिंदगी में और दुनिया की खूबसूरती और दुनिया की बका में क्या अहम रोल है, क्या उसकी ज़रूरत है, आइए आज इस सब पर बातचीत करते हैं। इस सिलसिले में हमने गुफ्तगू की परवेज़ हनीफ साहब से, उनका मुकम्मल तारुफ भी वो खुद ही आपको देंगे और फिर उसके बाद हम उनसे बात करेंगे आलमी टाइगर्स डे के इस मौके पर इन शेरों की बका, इनकी अहमियत और इनकी ज़रूरत पर। तो आइए आपको सुनवाते हैं परवेज़ हनीफ साहब से की गई ये बातचीत। जनाब परवेज़ हनीफ साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। परवेज़ साहब, पहले हम आपसे आपका तारुफ जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में मुख्तसरन बताइए।
1: मुझे परवेज हनीफ कहते हैं, मैं यहाँ पीलीभीत में हूँ
0: जी
1: और इस वक्त जो है वो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन में मैं मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ पे।
0: अच्छा
1: मेरा करीब 40 साल पुराना जो है
0: जी
1: वो एक शौक था फॉरेस्ट का, क्योंकि तो पीलीभीत फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की उसकी कहानी जो है
0: जी
1: वो सारे हिंदुस्तान के फॉरेस्ट में जो है बड़ी मशहूर।
0: बहुत अच्छा
1: ये टाइगर का जो है वो एक सेंटर माना जाता था
0: जी जी जी
1: और अंग्रेजों से लेकर के वो पुराने वक्त में सभी रहा है, इन सबका जो है वो यहाँ पर जो है वो एक फन एंड फूड के लिए जो है वो टाइगर के नाम इस्तेमाल होता था।
0: अच्छा
1: ये बड़ा तराई का इलाका है, तराई का जंगल है,
0: जी
1: ये पूरा देहरादून से लेकर के और ये आज कराई।

0: पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, और गोरखपुर जाकर के ये नेपाल तक में दोनों एंड में जाकर के मिल गया है। ये पट्टी कहलाती है तराई आर्कलैंड,
1: जी
0: और इस तराई आर्कलैंड का ये बादशाह है वो
1: अच्छा
0: टाइगर है। ये
1: जी
0: टाइगर हैबिटेट, और टाइगर के लिए ये इलाका अपनी जगह बहुत मशहूर और बहुत इसकी अहमियत है, टाइगर हैबिटेट।
1: तो ये इस सिलसिले में जो आपने मालूमात हासिल की और जो भी काम इस पर किया, तो ये आपका एक क्या बचपन का शौक था या किसी चीज़ से इंस्पायर होकर आप इस तरफ मुतवज्जे हुए?
0: नहीं, बिल्कुल इंस्पायर हुए। एक
1: जी
0: बड़े मशहूर, मैं बहुत छोटा था जब पढ़ता था,
1: जी जी
0: वो संबोधा नगर में मैं पढ़ता था, वहां पर अक्सर जब कॉलेज में जाता था तो रास्ता रुका हुआ है, पता चला क्या हो रहा है, बोले कि यहाँ पर जो है आदमपुर टाइगर को मारने के लिए सब शिकार हो रहा।
1: अच्छा
0: तो भारत सिंह माधो टांडा के शिकारी थे, ये बात है करीब 1965 और 70 के बीच
1: अच्छा
0: की। बीच में जब हमने देखा यहाँ पर भी टाइगर की बड़ी कहानियां हैं, और वो सुनाते थे ब्रिटिशर्स जमींदार और अंग्रेज आते थे,
1: जी
0: जिम कार्बेट का नाम तो मतलब यह है कि टाइगर को, आदमखोर टाइगर को मारने में है,
1: जी
0: लेकिन पीलीभीत जो है वो टाइगर प्रोटेक्शन और टाइगर प्रिवेंशन को ले लीजिए
1: जी उनके
0: और
1: तहफ्फुज़
0: टाइगर
1: के लिए
0: हैबिटेट के लिए बहुत ज्यादा वो है। तो फिर हमारी भारत सिंह जी से जो है
1: जी
0: मुलाकात हुई, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग जो हो तो इसमें इंटरेस्ट लीजिए, वाइल्ड लाइफ को देखिए, यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत तेजी से कम हो रही
1: परवेज
0: बहुत
1: साहब,
0: तेजी से।
1: ये आज 29 जुलाई को जो हम आलमी यौम टाइगर मना रहे हैं, ये कब
0: देखिए
1: से मनाया जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह है?
0: इसके पीछे वजह यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर प्रोटेक्शन का काम हिंदुस्तान में होता है,
1: अच्छा
0: और हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा टाइगर आज ही दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं
1: जी
0: वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हिंदुस्तान टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। वो टाइगर का भी जो है ये हैबिटेट यहाँ पर बहुत अच्छा है। एक्चुअली चूंकि शारदा नदी जो है
1: जी
0: और जो नहर का जो सिस्टम है, पूरे
1: जी जी
0: जंगल के अंदर नहरें होना, घास के बड़े बड़े जो है वो लैंड होना, तो ये सब ऐसे पॉजिटिव एटमोस्फेयर है
1: जी
0: जिससे
1: जो
0: जो
1: उन
0: है वो
1: जानवरों
0: टाइगर
1: को
0: को।
1: अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं।
0: जी 1973 में ये एक्ट जो है इंदिरा जी ने जो है वो लेके आई थी,
1: जी
0: और उन्होंने कहा था कि टाइगर का प्रोटेक्शन हो। दूसरी बात ये कि टाइगर हमारा जो है नेशनल एनिमल भी
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग टाइगर्स के तहफ्फुज़ की बात कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी नस्ल जिंदा भी रहे और आगे उसकी बका भी हो। तो उसमें जो हमारा माहौल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें टाइगर्स का क्या रोल है, उनकी क्या ज़रूरत है कि हम उसकी तरफ इतने ज़्यादा मुतवज्जे रहते हैं?
0: है। एक चीज बायोडाइवर्सिटी है,
1: जी
0: यानी जैव विविधता।
1: जी जी
0: तो बायोडाइवर्सिटी अपनी जगह पर पूरी दुनिया में जो आप चाहे मतलब ये है कि छोटे से लेके नन्हे से जो है वो प्रोटोजोआ से लेकर के और आप बड़े से बड़े जानवर तक चले जाइए, हाथी तक चले जाइए, तो
1: जी
0: ये सब ये जो है बायोस्फीयर है, और बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है, और
1: बिल्कुल
0: पूरे तरीके से वो सब एक सिस्टमेटिक चीज ही है।
1: जी
0: टाइगर
1: जी
0: के बारे में तो ये वो सोचा जाता है, कहा जाता है, और ये हकीकत है कि जहां कहीं टाइगर है तो
1: जी
0: वो जंगल अपनी जगह महफूज है।
1: अच्छा
0: तो टाइगर्स डे जो है, जब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में टाइगर नेशनल एनिमल हुआ और टाइगर के प्रोटेक्शन की बात की गई, एक्ट लाया गया बाकायदा। आप देखिए
1: जी
0: पीलीभीत में तो 17-17 टाइगर, 20-20 टाइगर एक एक हफ्ते में जो शिकार मारना है, ये सब
1: जी
0: हो गया,
1: अच्छा
0: तो ये
1: इसके
0: सब
1: कम,
0: साफ हो गया।
1: हाँ कम होने की खास वजह क्या रही? शिकार के अलावा भी क्या कोई वजह रही जिसकी वजह से ये हमारे टाइगर्स की तादाद कम हुई थी?
0: देखिए इसको लोगों ने एक शौक के तरीके से इस्तेमाल किया, वो टाइगर का
1: जो भी
0: वो टाइगर
1: शिकारी
0: के
1: होते थे वो उसे अपना एक एजाज मानते थे कि
0: हाँ वो
1: हमने इस पर
0: समझते थे
1: फतह
0: कि
1: हासिल की।
0: हम बहादुर हैं, हम
1: जी
0: बहादुर हैं, तो
1: जी
0: कहते नहीं थे कि हम शेर हैं। तो ये एक बड़ा ही जो है वो स्टेटस सिंबल टाइप का था
1: जी
0: वाइल्ड लाइफ का, तब
1: जो
0: से
1: जंगल
0: और इसके
1: कटे
0: बाद
1: और आबादियां बढ़ी, क्या इसकी भी वजह रही टाइगर्स की तादाद कम होने में?
0: हाँ तराई में तो बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में

0: 200 साल की जो सरकार रही, उसमें देखा गया कि टाइगर को बड़ी तेजी के साथ में जो है इनकी किलिंग हुई, बड़ा नुकसान हुआ इससे। और टाइगर का न होने का मतलब वो जंगल एक उजाड़ हो जाना,
1: जी
0: उसकी जो खूबी है, जो उसकी ब्यूटी है, वो टाइगर है। और टाइगर जो है वो हमारे बायोडायवर्सिटी में जो है सबसे टॉप पे आता है।
1: तो परवेज साहब, जो
0: ये
1: ये तादाद तेजी से कम हुई थी, इसको बढ़ाने के लिए क्या तरकीब अपनाई गई और सरकार की जानिब से इसके लिए क्या प्लान बनाए गए? क्या
0: देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये आपका जो है वो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण बना, प्राइम
1: जी
0: मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, और उस प्राधिकरण के अधीन जो है उसके अंडर में टाइगर रिजर्व है या टाइगर पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है,
1: जी
0: इस तरीके के जो है वो जगहों को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया,
1: जी
0: कहाँ
1: जी
0: कहाँ टाइगर है, कहाँ कहाँ टाइगर के हैबिटेट है, निवास स्थल है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए उस इलाकों को जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसका एक्ट भी अलग बन गया। आप उसमें अंदर
1: जी
0: टहलते हुए पाए गए जनाब, तो आपके ऊपर जो है वो सख्त
1: केस हो
0: कानून
1: जाएगा,
0: है,
1: बिल्कुल
0: जजमेंट
1: इस
0: जब किया गया। तो आज
1: जी
0: ये हालत है, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर हिंदुस्तान में है,
1: बहुत
0: और
1: अच्छी
0: पूरे
1: बात।
0: दुनिया के लोग जो है उनकी कोशिश ये होती है कि उन टाइगर को रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमसे कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और लोगों को जोड़िए। 100% मैंने जो है उसको प्रोटेक्शन का काम किया। इसके
1: जी
0: अलावा इन्वायरमेंट एजुकेशन पे हमने काम किया कि जंगल और जंगल के पास के रहने वाले जंगल को जाने, क्योंकि सबसे
1: बिल्कुल,
0: अच्छा काम अगर कोई कर सकता है तो जंगल के पास के लोग
1: पास
0: कर
1: रहने
0: सकते
1: वाले
0: हैं।
1: ही कर सकते हैं, बिल्कुल।
0: उन्हीं ने ही बर्बाद किया और उन्हीं लोगों को के जरिए आबाद हुआ दूसरा। तो हमने कोशिश ये किया कि जंगल के अंदर और जंगल के आसपास के इलाकों में हमने वर्ल्ड बैंक के स्कूल जोड़ दिए।
1: देखिए परवेज साहब, सरकार
0: बिल्कुल
1: और आवाम जब साथ मिलकर काम करती है तभी कोई अच्छा नतीजा सामने आता है, और ये तब्दीली भी आई कि हमारे खत्म
0: आई
1: होते
0: बिल्कुल
1: हुए टाइगर्स फिर से बढ़े, और इसमें आप लोगों का, सरकार का और आम इंसान का, सबका मिला जुला रोल रहा। तो परवेज साहब, हमें बहुत खुशी हुई आपसे सिलसिले में बात
0: बहुत
1: करके,
0: बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: आइंदा भी हम आपको जहमत देंगे कि फिर इस तरह के किसी मौजू पर आपको मदु
0: आइए
1: करेंगे।
0: जरूर,
1: जी, हम आपके
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत
0: ठीक है,
1: शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह।
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया
0: मैडम,
1: बहुत
0: ठीक
1: बहुत। सामीन, अभी आपने समाप्त की जनाब परवेज हनीफ साहब से ये अहम गुफ्तगू, जो आज के आलमी टाइगर्स डे के मौके पर खसूसी तौर पर की गई थी। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ये हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और आइए अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में थोड़ा सा प्रोग्राम का मज़ा तब्दील करते हुए आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की खूबसूरत आवाज़ में शहजाद अहमद की ये प्यारी सी गज़ल।

0: ये थे गुलाम अली जो पेश कर रहे थे शहजाद अहमद की ये खूबसूरत गजल। समीन, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमें आपके खतूत और आपके पैगामात का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ख़त लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम, ऑल इंडिया रेडियो रामपुर, पिन कोड 244901। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। जी हाँ सामीन, अब आप व्हाट्सएप पर भी अपनी राय, अपने ख्यालात हम तक बखूबी पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9410087876। तो हमें आपके ख्यालात का, आपकी राय का, आपके मशवरों का बेचैनी से इंतज़ार रहेगा, खतूत के ज़रिए भी और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए भी। और अब इसी के साथ अपने प्रोग्राम की मेज़बान रबा पंजुम को रामपुर रेडियो मरकज़ पर तैयार आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दें। अलविदा।
1: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हम आपके लिए उपलब्ध हैं डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। 9:50 और 42 सेकेंड। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं नंदलाल यादव और साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम के पहले देवी गीत इस संदेश के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में नंदलाल यादव और साथी के स्वर में लीजिए सुनिए ये

0: श्रोता हम अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे नंदलाल यादव और साथी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स हम आपके लिए उपलब्ध हैं। DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। इसके साथ ही न्यूज़ ऑन IR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर सुबह के 10:11। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार इस संदेश के बाद।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का STD कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
0: श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस झनकार कार्यक्रम में जहां आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। और इस कड़ी में शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में फिल्म बागबान का गीत। रचना है समीर की और संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

श्रोताओं, जानकार कार्यक्रम की ये पहली पेशकश आप सुन रहे थे। अमिताभ बच्चन और ऋचा शर्मा की आवाज़ें थीं और फिल्म का नाम था बागबान। रचना समीर की थी और संगीत आदेश श्रीवास्तव का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं झनकार, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। ये कार्यक्रम का अगला गीत

श्रोताओं, ये आवाज़ थी हेमंती शुक्ला और यसुदास की, और फिल्म का नाम था चश्मे बद्दूर। संगीत राजकमल का था और रचना इंदु जैन का। और अब कार्यक्रम का ये गीत आइए सुने।

श्रोतम, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का झनकार। ये रचना थी फिल्म गुड्डी से, वाणी जयराम और साथियों की आवाज़ें थीं, रचना गुलजार की थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं झनकार कार्यक्रम की अगली भेंट। सुनिए ये गीत हमारा आप साथ साथ।

शो तो ही रचना थी फिल्म लगान से, और आवाज़ें लता मंगेशकर और A.R. रहमान के साथ, साथियों की थी रचना जावेद अख्तर की। कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुन रहे हैं झनकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर, वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता। और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं, हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।

श्रोताओं, ये गीत जो आप सुन रहे थे देश प्रेमी फिल्म से था और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, रचना आनंद बख्शी की थी। इसके पहले आपने सुना फिल्म धर्म करम का गीत, आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं, साथ दिया था साथियों ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं झनकार कार्यक्रम की ये अगली भेंट।

श्रोताओं कार्यक्रम आप सुन रहे हैं झनकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ें थीं और साथ ही था साथियों ने। फिल्म का नाम था धन दौलत और रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी। और अब ये गीत फिल्म धर्मवीर से।

0: गीत गाता चल। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाज़ें थी जसपाल सिंह और साथियों की, रचना रविंद्र जैन का। और इस गीत के साथ ही आज का हमारा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार अब यहीं संपन्न होता है। आप जुड़े हैं आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र के साथ। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। समय हो चला है आपके फरमाइशी ईमेल संदेशों पर आधारित हमारे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का, जिसे हम आपकी सेवा में लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
3: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 222-1052 पर। वाराणसी का STD कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ

0: विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं, हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: तो आप सभी सुनने वालों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में। आज ये कार्यक्रम आपकी सेवा में लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का ये पहला गीत कारवा फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत राहुल देव बर्मन का। इस गीत को सुनने के लिए किन श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा, हम आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

कारवां फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ों में। साथ में आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत था और राहुल देव वर्मन का संगीत। और इस गीत के लिए हमें हमारे श्रोता बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, मीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना ने ईमेल किया। साथ में हमारे और भी श्रोता हैं। शिवाजी नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिरा ताई खोबरखेड़े, सुनैना, दीपाली, स्वराज और तनुज। साथ में है दिलदार नगर पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, बबलू तिवारी, राम निवास सिंह कुशवाहा। सादुल शहर राजस्थान से है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है तारा देवी विश्वकर्मा, विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। चंद्रानगर अम्बाला से हैं कृष्णा कुमारी, बीना कुमारी, सोनाली और डोली कुमारी। चांदनी चौक गड़ई पंडरिया छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और साथ में है क्रिस्टी पटवा। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं नारायण गायकवाड़, साईं गायकवाड़। पूना जंक्शन मस्तानपुर से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमारे श्रोता हैं एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुनिशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान।

सादुल शहर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं राजकुमार और चंद्रकला। ग्राम होइनापार लाटाबोर बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, योगिता गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई और गंगाराम साहू। और आइए कार्यक्रम की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ा जाए और आपको सुनाते हैं गाइड फिल्म का एक गीत। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है, सचिन देव बर्मन का संगीत है और आवाज है लता मंगेशकर की।

गाइड फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र का लिखा ये गीत था, संगीत था सचिन देवर्मन का और पसंद आप सब श्रोताओं की। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल और आशुतोष जायसवाल, धरारा बजड़िया वाराणसी से एनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, एजाजुर रहमान, सलीम आजाद अंसारी, इकबाल अंसारी और श्रवण कुमार, पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा, चंद्रानगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, अजिता जोशी और दुर्गा कुमारी, और अजयपुर पोस्ट उगापुर भदोही से पप्पी यादव, ललित

चरण यादव, बबलू यादव और सुनील यादव। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और महेश राम टेकी के साथ प्रतिभा गोंडा ने। पद्मा टॉकी नेफा नगर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वरतड़कर, शुभम वरतड़कर और पुन्नू वरतड़कर। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुराण मेहरा जी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बटिंडा रोड मड़ी डबलवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। बदरुद्दीन अंसारी, मुस्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी हैं अहमदनगर बजरडीहा से। दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से। चंद्रनगर सहारनपुर से हैं कौशल्या जोशी, अजिता जोशी और दुर्गा जोशी जी। ग्राम बहुआरा पोस्ट दिलदार नगर जिला गाजीपुर से हैं अकलू राम और केदार राम। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं माखन सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांती, तृप्ति थांती, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती, बेबी वमिका और वाणी थांती। ऊंची भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं मुकेश गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, मधु गोस्वामी, अनु गोस्वामी और आशा गोस्वामी। उमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं बालूअप्पा धड़बले, ज्योति धड़बले, शिव सुंदर धड़बले और आराध्या धड़बले। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान। तो अगली फरमाइश जिन श्रोताओं की है उनके नाम तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें इन्होंने सुनना चाहा है तेरे घर के सामने फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की। हसरा जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत से सजाया राहुल देव बर्मन ने। तो आइए सुने तेरे घर के सामने फिल्म का ये गीत।

हम आपको बताते चलें, ये गीत आप जिन श्रोताओं की फरमाइश पर सुन रहे थे उनके नाम थे कस्बा बड़ाला जिला अम्बाला हरियाणा से हमारे श्रोता थे रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, बीजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरुशब्द राहुल। ग्राम लसुड़िया, जिला तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णो, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश डांगी ने भी इस गीत की फरमाइश की। इसी गीत के लिए हमें तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज़ मुलाड़ी और दिलशाद मुलाड़ी के साथ नसीर मुलाड़ी और आपके चाचा चाची के साथ सारा परिवार सुनना चाहता था। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हमारे श्रोता त्रिभुवन नाथ मालवी, अनमोल मालवी श्लोक और समस्त मालवी परिवार भी इस गीत को सुनने के ख्वाहिश रखते थे। और इसी गीत के लिए बेबरा संबलपुर छत्तीसगढ़ से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा ने भी हमें ईमेल भेजा। ये मुक्कम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका से हमारे श्रोता हैं, आपने नाम इसमें नहीं लिखा। फिलहाल आगे बताते हैं आपको कि इस गीत के लिए हमारे पास नागचुंग रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब डाबर, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारी ने भी हमें ईमेल किया। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और आदि जैन का भी हमें ईमेल मिला। और ये है पानी टंकी परेवा जौनपुर से रॉकी बम बम माना रिंकू और हमारे

होता है कासम कालोनी, सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इजरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। साबतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन और रितेश सेन का भी हमें ईमेल मिला। सदर बाजार मारवाड़ बिलाला राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रंजन रजक, लालू सोना मोना, हनी यश और आपके मम्मी पापा। पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता। माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा, अडार नादगांव घाट छत्तीसगढ़ से। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजीता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। और अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि अगली फरमाइश किस गीत के लिए है। ये है लोफर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लोफर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सब श्रोताओं की। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका जंघेल, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल। और इसी गीत को हमारे श्रोता गम्हरिया जमशेदपुर से सुनना चाहते थे रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल। चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, सुभाष जायसवाल, शिवांश जायसवाल। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता थे नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, खुशी खर्चे, वंदना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे श्रोता सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और हेमलता। बाजार रोड मुंगिसापुर से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सबिस्ता पलक लुबिना, यश मंसूरी। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, समस्त छाबड़ा परिवार।

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल, अनीता, रंजन और हेमंत नामदेव। आर्यनगर, कोहका भिलाई, छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। पांडर कवड़ा से ही अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। आर्यनगर, कोहका भिलाई, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं आपका, हमने ईमेल इस कार्यक्रम में पहले भी शामिल किया। और जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, डुमरा से वलीउल्ला अंसारी। वार्ड नंबर एक पोफाली से हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन और प्रथमेश चंदन के साथ पांडुरंग कुम्हार। कलानौर से हैं नरेश शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। भान बेड़ा मुगलवाल से हेमंत पटौदी, उमंग पटौदी, मोक्ष पटौदी और भरत राम पटौदी के साथ जयंत पटौदी। मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, उमंग मल्लिक, आकांक्षा मल्लिक और माही मल्लिक। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। मुबारकपुर ऊंची तकी आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा और वकार हैदर। और कार्यक्रम का ये है अगला गीत। ये गीत है सीता और गीता फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत।

सीतर गीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। ये पसंद थी हमारे इन श्रोताओं की। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया की। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया मंजू कटारिया नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा। इंदिरा बिहारी दिल्ली से बेबी अंसारी निशा डब्लू अंसारी जूही परी अंसारी की। बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा था भाई प्रेम सिंह वड़वाल ने। सुखबीर काजल वड़वाल लखबीर वड़वाल रानो कृष्णा श्रीमती छिंदो प्रवीण शीतल नवीन रंगीला निशान अनमोल और प्यारे बेटे चटकू मटकू ने भी। इसी गीत की फरमाइश आई खैल बाजार पानी पतो से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा पापा जी नानक चंद मल्होत्रा की। ग्राम चरौदा बाजार नवापारा जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर प्रियंका ठाकुर दीपक खुशबू और ज्योति ठाकुर। रघुवीर नगर दिल्ली से हैं जफर मुआजम शेख जी साथ में हैं फलकनाज बेबी अलिशबा शेख। और रामरतन टॉकेज कुंडलवाड़ी से हैं गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा अजय कुमार गुप्ता साथ में हैं बड़ी बहू रिम्मी और तनुश्री गुप्ता। रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से हैं पप्पी यादव ललित चंद यादव बबलू यादव सुनील यादव और लवकुश यादव। मदरसा गेट मड़ियाऊ जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास राघव कुमार आशा देवी और भानुप्रिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ग्राम घुरो नियमताबाद से हैं हमारे श्रोता वंश नारायण प्रजापति सितारा देवी प्रजापति रिया कुमार प्रजापति अनुराग कुमार प्रजापति किशुन कुमार प्रजापति और आपके मम्मी पापा।

से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफुद्दीन। कोठवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे श्रोता है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। पद्मापुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और ममता अरोड़ा। खादान कोठी बोरापारा चौक बसबेरिया वेस्ट बंगाल से हैं मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश शाह और वसंत लाल साव जी।

विशा, जयप्रकाश साह और वसंत लाल साहु जी। डाक और गांव नियामताबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। और अब आ कार्यक्रम का ये है अगला गीत परिचय फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज और ये खूबसूरत गीत लिखा है गुलजार ने और इसे और खूबसूरत संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने।

परिचय फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, और ये पसंद थी हमारे जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी के साथ में इस गीत को सुनना चाहते थे हमारे श्रोता। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश। मदरा गेट मड़ियाहू जौनपुर से शादेव अंसारी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहेब, ग्राम घोरो। पोस्ट नियमताबाद वंशनारायण प्रजापति, सितारा देवी प्रजापति, रिया प्रजापति, अनुराग प्रजापति, किशन कुमार प्रजापति और आपके मम्मी पापा की। ग्राम कुंडलवाला तारा पोस्ट लोअर रोड राजस्थान से हमारे श्रोता थे। लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओम नाथ।

नारंग सारंग शिवांग रोली अदिति और आपकी माता जी निर्मला त्रिपाठी। और इसी गीत के लिए नूर महल महसूल जिला बिहार सीतामढ़ी से हमारे श्रोता हैं मुसर्र जहानाज तलत जहानाज फरहत जहानाज रिफत जहानाज नुजहत जहानाज साजिश साहिन साजिया साहिन नाजिया नूर नाज और आपकी बहनें और आपके परिवार के सभी सदस्य। अहमदनगर बजड़िया वाराणसी से बदरुद्दीन अंसारी मुस्ताक सुलेमानी सलीम आज़ाद और मल्लू अंसारी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा रामटेके साथ में है श्रव्या रामटेके। बटिंडा रोड डबल वाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग और तानिया नारंग। और इसी गीत के लिए हमारे पास सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे श्रोता टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ्रचंद बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने भी हमें मेल किया।

नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर से बुनकर आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मोनिशा बानो और गुड़िया बानो ने भी हमें मेल किया। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजे शेख, दानिश शेख और अमन आफरीती ने भी हमें इस गीत के लिए फरमाइश भेजी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी और अरजान अब्बासी के साथ अबान अब्बासी ने भी हमें ईमेल किया इस गीत के लिए, साथ में आपका पूरा परिवार भी था। और कार्यक्रम का अगला गीत और आखिरी गीत कामचोर फिल्म से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, इंदिवर का लिखा गीत, राजेश रोशन का संगीत।

और हम आपको बताते चलें कि इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं ने हमें ईमेल किया उनके नाम, क्योंकि समय कम है और गीत भी सुनते रहिए और नाम भी सुनते रहिए। सोन वर्षा खानपुर मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर।

तब मारकंडे साथ में है बेबी किट्टी। आपने गलती से मारकंडे को बमारकंडे ही लिखा था। और इसके साथ ही आज का हमारा ये गीत सुनते रहिए और इस कार्यक्रम में अपनी रेडियो सखी किरण सिंह को दीजिए यही अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। अब आइए सुनते हैं हमारा NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल।

0: सफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओ, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
0: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
0: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
0: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
0: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
0: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेंसबर्ग में हुआ था। उसे

फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा। हाँ और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन हाँ, मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद? हाँ, उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो
2: हाँ
1: कर दिए। हाँ। अब इस इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: हाँ। देखो सामने दीवार पर देखो।
1: हाँ।

0: वाह जॉन, लगता है आप सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
0: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: Бидний дүнөөс мэнд гараа лекен. Камьяби нэмэлт. Ясалтай кэби мансил баттур. Let's go. Мэнэ. Ярака. Е. यहाँ तक तो ठीक है, अब देखता हूँ कि क्या होता है। विलियम?
1: हाँ जॉन।
0: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
1: करता हूँ।
0: हाँ, और सुनो,
1: हाँ,
0: आप कमरे में अंधेरा करो।
1: एक मिनट।
0: हाँ,
1: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
0: हाँ ठीक है, और सुनो, स्क्रीन ऑन करो।
1: हाँ ठीक है। अरे वाह जॉन।
0: हाँ
1: देखो सामने।
0: अरे हाँ,
1: क्या बात है।
0: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
1: हाँ जॉन,
0: हाँ
1: हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
0: हाँ
1: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
0: तुम्हें विलियम, बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति हैं जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ,
2: आइए।
3: यहाँ?
2: हाँ, आइए आइए, इस तरफ
3: इधर।
2: हाँ, अब आप

0: आप इस कैमरे के सामने चलिए, हाँ इधर, हाँ थोड़ा सा इधर,
1: इधर
0: हाँ अब ठीक है। हाँ साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
2: ओह ये तो कमाल हो गया, आंखों को विश्वास नहीं होता। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉर्डन, इट्स अन अनबिलीवेबल मिरेकल।
0: शुक्रिया शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित हमारा ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में हम लेकर आ रहे हैं सुगम संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं युगल किशोर सिंह। कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में आइए सुनते हैं मीराबाई की ये रचना।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का। कलाकार हैं युगल किशोर सिंह। अब कार्यक्रम के आखिर में आपके स्वर में प्रस्तुत है महादेवी वर्मा की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के कलाकार थे युगल किशोर सिंह। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने गायन। कलाकार हैं शुभंकर दे, राग है शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगति किशोर कुमार मिश्रा की।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे डॉक्टर शुभंकर डे। राग था शुद्ध सारंग। आपके साथ सबले पर संगति थी किशोर कुमार मिश्रा की। शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
2: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
3: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीरवन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री

अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना और कार्यक्रम विवरण। पहले जानकारी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। ये पहली सूचना थाना फूलपुर कमिस्ट्रेट वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार शनि दयाल जायसवाल जो पुत्र हैं बाबा साव के, निवासी हैं ग्राम नंदनपुर थाना फूलपुर कमिस्ट्रेट वाराणसी के। शनि दयाल जायसवाल की उम्र है 36 वर्ष, लंबाई 5 फुट 4 इंच के करीब है, रंग गेहुआ है और चेहरा गोल है। ये 15 फरवरी 2024 शाम 7 बजे से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा पैंट शर्ट और काला जैकेट था। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दे सकते हैं। एक नंबर भी है जिस पर आप सूचना देखकर सहयोग कर सकते हैं। नंबर है 8881075499। और ये अगली सूचना है सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त। इस सूचना के अनुसार वेदिका बिंद जो पुत्री हैं राजकुमार बिंद के, निवासी हैं B18/194 रेवड़ी तालाब थाना भेलूपुर वाराणसी की। वेदिका बिंद की उम्र है 18 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। ये 17 जून 2026 से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा सफेद रंग की लेगी, गुलाबी रंग का कुर्ता और सफेद रंग का दुपट्टा था। यदि इनके संबंध में भी आपको कोई सूचना मिले तो अपने नजदीकी थाना या थाना भेलूपुर वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना यही संपन्न होती है। और अब कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए दे देते हैं हम आपको संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। प्रश्न कॉल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा रात 10 बजे और संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा गायन। कलाकार होंगे डॉक्टर रामशंकर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का आनंद उठाई अंजुमन कार्यक्रम में रात 9:30 पर। शाम 6:30 पर सुनिए कृषिगत कार्यक्रम जिसमें किसान भाई सुनेंगे बातचीत अनुभव खेती में के अंतर्गत। इसमें कृष्ण कुमार यादव से होगी बातचीत, साथ ही किसान भाई सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे नंदलाल यादव और साथी। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। अंग्रेजी वार्ता का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर जिसमें होगी आज की बात, मार्गदर्शन, यूथ डायरी, गीत संगीत और सूचना के साथ जानकारी भी। और दोपहर 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कुछ बातें

चुकी। और अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में बहनें सुनेंगी चर्चा और वार्ता। वार्ता का विषय है किताबें। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अनुराधा बैनर्जी। गीत संगीत और सेहत ज्ञान के साथ साथ सुनिएगा जायका। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरों का प्रसारण होगा लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी देर में। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر مرکزی حکومت کی سیکرٹریوں کے ساتھ دوسری اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے خزانے اور معیشت، تجارت اور صنعت اور ٹیکنالوجی سے متعلق وزارتوں اور محکموں کے مستقبل کا لائعمل کا جائزہ لیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: यह बैठक विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करने पर केंद्रित रही. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने सरकार के भीतर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और एकीकृत एवं प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर सकें. जन केंद्रित सुशासन का महत्व बतलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिक ही सदैव शासन व्यवस्था के केंद्र में रहने चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि हर निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए. समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक.
0: لوک سبھا میں آج عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پر بحث ہوگی. عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتین سنگھ نے کل ایوان میں بالا میں پیش کیا. بل کا تعارف کراتے ہوئے ڈاکٹر جتین سنگھ نے کہا کہ یہ نیا قانون ملک کے طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے حکومت کی گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کا ادا کرتا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کے مستقبل سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آج صبح گرو پورنیما کے مبارک موقع پر گورکش پیٹھادھیشور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے نات فرقے کی روایت کے مطابق شیو اوتار مہایوگی گرو گورکھ ناتھ کی خصوصی پوجا کی. گورکش پیٹھادھیشور نے بھگوان گورکھ ناتھ اور دیگر گروؤں کو خراج عقیدت پیش کیا اور عوامی بہبود کے راستے پر ان کی رہنمائی کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. گورکھ ناتھ پیٹھادھیشور نے بھگوان گورکھ ناتھ اور دیگر گروؤں کو خراج عقیدت پیش کیا. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वीं यौम पैदाइश के याद में आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुल्कगिर श्री गुरु रविदास महाराज हारमोनी रेजोल्यूशन मुहिम का आगाज करेगी. इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह आज सीर गोवर्धनपुर वाराणसी संत रविदास जी की जाय पैदाइश पर किया जाएगा. वाराणसी बैन अल-अक़वामी बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बत स्टडीज सारनाथ ने आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बती स्टडीज कैंपस में आषाढ़ पूर्णिमा की तकरीबात का मुश्तरका तौर पर एहतमाम किया. मेहमान खसूसी नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा कि भगवान बुद्ध का दरमियानी रास्ता अमन, आहंगी और इंसानी बहबूद का रास्ता. उन्होंने मजीद कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की तालीमात के मुताबिक तस्लीम कर रही. वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकज उत्तर प्रदेश की डबल इंजन वाली हुकूमत भगवान बुद्ध से जुड़े यात्राओं और विरसे के मकामात को तरक्की देने के लिए मुसलसल काम कर रही है, जिससे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों के लिए आलमी म्यार की सहूलत को यकीनी बनाया जा सके. गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भगवान बुद्ध की महानिर्वाण के मुकाम कुशीनगर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा. गुरु पूर्णिमा, जिसे अर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है, बुद्ध मत में मजहबी अहमियत रखता है. सावन के मुकद्दस महीने में कांवड़ यात्रा के महफूज और पुरम इनकाद के यकीनी बनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में वसी इंतजाम किए जा रहे. वाराणसी आने वाले खवातीन कांवड़ियों की हिफाजत और सहूलत को तरजीह देते हुए बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खवातीन अकीदतमंदों के लिए अलहदा रिहायश, बैतुलखला और खाने के कमरे फराहम करेगी. अमरोहा में कांवड़ यात्रा के महफूज तकमील को यकीनी बनाने के लिए 30 जुलाई से 28 अगस्त तक हाईवे पर गाड़ियों

की रफ्तार पर पाबंदी रहेगी। 30 जुलाई से हापुड़ के कांवर रास्तों पर भी रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा। मेरठ की जिला मजिस्ट्रेट वी के सिंह ने कहा कि तमाम मुतल्लिका कांवड़ यात्राओं की यात्रियों की मुकम्मल करने के लिए तालमेल कर रहे हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश रियासती देही रोजी रोटी मिशन ने रियासत के तमाम अजला के लिए कल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया है। मिशन से वाबस्ता 50,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन इस बड़े पैमाने पर मुहिम में तिरंगे तैयार करेंगी। टाइगर्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। रियासत में पिछले कुछ दिनों में शेरों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को आया है। महकमा मौसमियात ने रियासत में 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी। इधर अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के अजला में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। कुछ ही पलों का इंतजार लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए हमारी बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो दोस्त सुखदा का प्यार भरा नमस्कार, और सोनी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सभी श्रोता सखियों को सोनी का प्यार भरा नमस्कार और सुखदा आपको भी नमस्कार।
0: सखियों, आज तो बहुत ही खास दिन है
1: जी सुखदा,
0: और आज भीड़ भी बहुत है। और भाई हो क्यों ना, आज तो गुरु पूर्णिमा है
1: जी,
0: और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे अनमोल और पवित्र स्तंभ है। ये केवल शिक्षा देने का माध्यम ही नहीं है सोनी,
1: जी
0: बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक धागा है जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवंत रखता है।
1: जी सुखदा, हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है और हमारी संस्कृति में तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। गुरु हमारे अज्ञान का नाश करते हैं और हम में ज्ञान भरते हैं। वो हमारी कमियों को दूर कर उसकी क्षमता के अनुसार हमें पहचान कर हमें निखारते हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो प्राचीन काल में ग्रंथ लिखे जाते थे,
1: जी
0: मतलब जो गुरु होता था अपने मुख से ज्ञान बोलते थे और शिष्य उन्हें पढ़कर कंठस्थ कर लिया करते
1: जी
0: थे,
1: जी
0: यानी कि याद कर लिया करते थे, है ना। और इसी तरह ज्ञान हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहा। और हम इतिहास की गहराइयों में अगर और जाएं तो उदाहरण के लिए भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी श्री कृष्ण ने एक साधारण शिष्य की तरह महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहकर 64 कलाओं की शिक्षा ली। द्रोणाचार्य को ले लीजिए, और अर्जुन, एकलव्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का ही एक उदाहरण ले लीजिए। तो जहाँ गुरु के एक स्पर्श और मार्गदर्शन ने नरेंद्र नाम के युवक को विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद बना दिया।
1: बिल्कुल सुखता, ये गुरु की ही महिमा है कि गुरु एक साधारण व्यक्ति को भी ऊपर उठा देता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसीलिए तो हमारे सनातन में गुरु को ईश्वर से बड़ा गया है और ईश्वर ने भी खुद स्वयं गुरु को अपने से बड़ा स्थान दिया है। और कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसी महिमा हमारे गुरु की है और आज का ये हमारा जो दिन है हमारे गुरु को ही समर्पित है। सुखदा, ऐसे तो गुरु हमारे जीवन के हर क्षण से जुड़े हैं पर आज के दिन गुरु का विशेष महत्व है।
0: बिल्कुल। और सोनी, ये जो गुरु

0: शिष्य परंपरा है ना, वो
1: जी
0: आज भी अस्तित्व में है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल चुका है।
1: जी
0: और प्राचीन काल की तुलना में आज ये परंपरा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में अपने मूल रूप में बची है। जैसे कि अब देख लीजिए, शास्त्रीय संगीत है, कथक है, या भरतनाट्यम जैसे नृत्य और पारंपरिक चित्रकला में आज भी घराना प्रणाली जो है वो चलती है। यहाँ शिष्य गुरु के घर या फिर संस्थान में रहकर सालों तक रियाज करते हैं। और अगर आज की बात करें तो आज भी हमारे शहर वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार के आश्रमों में दीक्षा की परंपरा है।
1: बिल्कुल सुगदा। और देखिए, ये पर्व शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरु को समर्पित है, और इस दिन हम विशेषकर गुरु की पूजा अर्चना करने से हमें ज्ञान और शांति मिलती है। जैसे हम सभी अगर अपने शिक्षक के पास हैं तो सुबह उठकर स्नान ध्यान करके अपने गुरु और शिक्षक से भेंट करके, गुरु को जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार है उन्हें भेंट करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और आचार्य शिक्षा देते हैं लेकिन गुरु दीक्षा देते हैं, जो चेतना की पराकाष्ठा है। गुरु केवल ज्ञान का भंडार नहीं भरते बल्कि भीतर जीव शक्ति का संचार करते हैं।
0: बिल्कुल। और गुरु अपने शिष्यों को आध्यात्मिक साधना और जीवन जीने का मार्ग भी सिखाते हैं, है ना। कहते हैं ना सोनी, कि हमारा जो पहला गुरु होता है ना, वो
1: जी
0: हमारे माता-पिता ही होते हैं,
1: जी
0: जिन्होंने हमें जन्म देने के साथ साथ जीवन को जीने की राह भी दिखाई
1: जी
0: है ना। तो क्यों ना आज हम अपनी सखियों को एक गुरु से समर्पित ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: सखियों, आज 29 जुलाई यानी कि आज के ही दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाघों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है।
1: बिल्कुल सॉरी, कहते हैं ना कि सखियों, ये जो प्रकृति है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं कहीं हमारी भी है,
0: जी बिल्कुल।
1: है ना। तो

0: प्रकृति की रक्षा केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि एक कदम फिटनेस के लिए और एक कदम प्रकृति के भविष्य के लिए। बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे, और जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा। और वैसे सोनी, जैसे हम लोग कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं तो हर
1: जी
0: एक दिवस की एक थीम होती
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: जी
0: तो उसी तरह से आज जो इंटरनेशनल टाइगर डे है, इसकी भी एक थीम है कि एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी कि स्थानीय स्तर पर कार्य कर वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल। और सुगुदा, इसके लिए संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि स्कूली प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां, जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और संरक्षण करें। और इसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो सखियों, सबकी जिम्मेदारी पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है सुधा
0: बिल्कुल
1: कि इनका संरक्षण करे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इन्हें न सिर्फ किताबों में देखे बल्कि वास्तव में भी देखे और जाने।
0: बिल्कुल। और किताबों से याद आया सुनी कि किताबें भी तो ज्ञान से भरी होती हैं,
1: बिल्कुल
0: वे भी तो हमारी गुरु होती हैं,
1: हाँ
0: और वे आपको जीवन की सीख भी देती हैं,
1: जी
0: और वे आपको कठिनाइयों, प्रेम, भय और हर छोटी छोटी चीजों के बारे में सिखाती हैं जो जीवन का हिस्सा है।
1: और किताबें ही हमारी वास्तविक गुरु होती हैं। और देखिए, हम अगर किताब भी पढ़ते हैं तो हमें सही ज्ञान मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं।
0: बिल्कुल। तो आज हम अपनी सखियों को इसी चर्चा पर आधारित सुनवा देते हैं एक वार्ता जिसका विषय है किताबें, और वार्ताकार है डॉक्टर अनुराधा बनर्जी।
2: सामान्यतः हमारा परिवेश मन और विचारों को हर क्षण सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित और परिवर्तित करता रहता है। पारिवारिक और सुपरिचित परंपराओं के अनुभवों से गुजरते हुए हमारा मन अच्छे बुरे विचारों को देखता सुनता है, प्रतिक्रियाएं भी देता है, अच्छी बहस भी करता है, लेकिन जीवन में इन घटनाओं का प्रभाव परिवर्तनकारी बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। शहरी परिवेश हो या ग्रामीण, स्कूल कॉलेज हो या खेत खलिहान, चौक बाजार या अन्य संस्थाएं, जहां भी इंसान दाखिल होता है उसके मन की अदृश्य परवरिश होती रहती है। इन प्रभावों से प्रश्नों के, सवालों के बुलबुले जरूर उठते हैं, पर क्रांति और विस्मित करने वाले परिवर्तन नहीं आते। हम प्राप्त ज्ञान से लकीर के फकीर बने रहते हैं। जैसा था जैसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, या इस सोच में दिक्कत ही क्या है? ऐसी सोच हमारी सोच के तौर तरीकों पर हावी रहती है। एक मोड़ आता है जब जिंदगी में उच्चतम क्रांतिकारी सोच पैदा करने वाली पुस्तकों का प्रवेश होता है। हमें मौका मिलता है कि हम अपनी यथास्थितिवादी विचारों का विश्लेषण करें। वैसे यहाँ भी त्वरित फल पाने की आशा कुछ ही पाठकों में सीमित रहती है। जिनको स्कूल कॉलेज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने उच्च कोटि के विचारों का पाठ भी किया है, उनका ज्ञान परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं तक जाकर समाहित हो जाता है। जीवन को दिशा देने वाले विचार और प्रभाव किताबों में ही बंद होकर रह जाते हैं। हम उन्हें अपने व्यवहार में नहीं ला पाते। थियोरी रह जाती है, प्रैक्टिस कहीं नहीं होती। यथास्थिति की सुखद निद्रा परिवर्तन के जोखिम से दूर हटा ले जाती है। निरापद रहता है मृत परंपराओं से चिपके रहना। वैसे ये कहना सरासर गलत होगा कि मानव परिवर्तन नहीं चाहता। संपूर्ण मानव इतिहास तो असंख्य परिवर्तनों का समाहार है। गुफा मानव ने जो पत्थरों को रगड़कर आग जलाई और सूर्य की प्रदक्षिणा को रोककर धरती की प्रदक्षिणा की गति को वेगवान बनाया, उसी का आधुनिकतम हासिल है अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की परिक्रमा। कोपरनिकस और गैलीलियो के बलिदान और त्याग ने मुट्ठी भर मनुष्यों की वैज्ञानिक चेतना को इतना प्रेरित किया कि एक विशाल मानव समूह विज्ञान की खोज का कायल बन गया और उसकी सोच में तब्दीली आई। इंसान बाहरी स्तर पर परिवर्तन को आसानी से ग्रहण कर

लेता है। परेशानी होती है जब वैज्ञानिक और तर्कवादी सोच से सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश होती है। इसीलिए तर्कवादी सोच और यथास्थिति को कायम रखने वाली छद्म ज्ञान परंपरा के बीच टकराहट हर सदी में कई बार देखने को मिलती है। शास्त्रों की गलत व्याख्या द्वारा जिस क्रूर सती प्रथा को शाश्वत बना दिया गया था, विधवा स्त्री का रुदन, शोषण और आत्महनन जब आम बात हो गई थी, तब राजा राममोहन राय और बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हर प्रकार का प्रतिरोध झेलकर संकीर्णता की स्थापित दीवारों को गिरा दिया। भारत में स्त्री विमर्श की पहली शुरुआत करते हैं राजा राममोहन राय। हर भारतीय को नवजागरण के प्रथम शिल्पकारों के लिखित विचारों को पढ़ना ही चाहिए। नवजागरण का मंत्र था, उठो जागो और समय न गवाओ, त्याग दो यथास्थिति को। जिंदगी के व्यवहारिक पक्ष से समाज की कुंठित दशा को देखना सबके बस की बात नहीं है। अस्पृश्य समाज के दर्द को उजागर करने वाली पुस्तक गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा ज्वलंत दस्तावेज है। हमारे अनन्य संविधान के महान प्रणेता आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर की रचनाएं रोंगटे खड़ी करती हैं। उनकी पुस्तकें अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर ए वीजा, मूक नायक, बहिष्कृत भारत हमारे समग्र समाज की बेहतरी के लिए जरूर पढ़ी जानी चाहिए। ये पुस्तकें न्याय और समानता के विचारों की वाहक हैं। हम भारतीयों के लिए निर्मित संविधान इन्हीं पर आश्रित है। इन महान आत्माओं को बड़े बड़े सैद्धांतिक विचार सपनों में नहीं मिले थे। तृष्णा के जल के लिए छटपटाते हुए, अपनी छूत से उच्चतर को बचाते हुए, अधिकारहीनता की जिंदगी के श्रृंखल में तड़पते हुए, चरम मानवीय गुणों को पुनः स्थापित करने की क्रांति कर दी थी इन महान आत्माओं ने। परिवर्तन की ऐसी मशाल जलाने वाले, अपनी जिंदगी को बलिवेदी पर चढ़ाने वाले लोगों का समूह इस दुनिया में आता रहा है। यथास्थिति को मिटाने के लिए अपनी सुदृढ़ उपस्थिति से अन्याय को समाप्त किया है। श्री राम, श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति, आदि कवि श्री वाल्मीकि के रामायण और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आज भी और भविष्य में भी जनमानस को राह दिखाते रहेंगे और अवश्य ही प्रेरित करेंगे। महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, करबला के बलिदानी, गुरु गोविंद सिंह और अनेकों धर्मों के महान संतों को याद कीजिए। सत्य, धीरज, प्रेम, क्षमा के हथियार से क्रूर रूढ़ियों को चुनौती देने वाले इन महान आत्माओं ने यथास्थिति से लड़ने की ताकत को हिम्मत दी है। वे हमें प्रश्न उठाना सिखाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपके लिए बांग्ला साहित्य और ज्ञान परंपरा से मूर्धन्य व्यक्तित्वों का नाम और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना चाहूंगी। व्यक्तिगत रूप से उन महाप्राण व्यक्तियों ने मेरे अंदर सोचने की ताकत पैदा की, परिवर्तन को चाहने की लौ जलाई, मेरी अपनी त्रुटियों और संकीर्णता से लड़ने की ताकत दी। रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, आशापूर्णा देवी और महान तपस्वी स्वामी विवेकानंद का नाम सुना ही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के कुछ नाटकों का अनुवाद करते समय मेरे स्थापित विचार बिल्कुल जैसे विस्थापित हो गए। जब चंडालिका नाटक में अपनी जाति के कारण लांछित, उपेक्षित और दुत्कारी चंडालिका को बुद्ध शिष्य आनंद द्वारा सह मानवी बनने का सर्वश्रेष्ठ सम्मान अर्पित किया जाता है, चंडालिका के हाथों से जब आनंद अशुद्ध कुएं का जल ग्रहण करते हैं, तब प्रकृति नाम की वो चंडालिका क्या कहती अपनी माँ से? उसे तो सदियों की अंधकार भरी दुनिया में आशा की किरण दिख गई है। आनंद ने ऊंच नीच के विभाजन को अपने कर्म से खारिज कर दिया है। ये कहानी है वो अपने माँ से कहती है, ये कहानी है मेरे नए जन्म की। उस दिन की बात है, माँ झुलसती दोपहर में बछड़े को कुएं के पानी से नहला रही थी। मेरे सामने आ खड़े हुए बौद्ध भिक्षु पीत वसन में कहा, जल दो। मेरे प्राण चौंक उठे, मैंने दूर से प्रणाम किया। सुबह की रोशनी से बना था उनका रूप। मैंने कहा, मैं चंडाल की बेटी हूँ, कुएं का जल अशुद्ध है। उन्होंने कहा, जैसा इंसान
मैं हूँ।

वैसी ही इंसान तू भी है। हर जल तीर्थ का जल है जो तापित को स्निग्ध करता है, तृषित को तृप्त करता है। पहली बार सुनी ऐसी बात, केवल एक अंजुरी जल लिया उन्होंने मेरे हाथ से और अगाध असीम हुआ वो पानी। सातों समुद्र एक हो गए उस जल में, डूब गया मेरा कुल, धुल गया मेरा जन्म। प्रबोधन की ओज से भरे ये शब्द मेरे लिए चमत्कारी थे। कितना गहन सत्य था मानवता के इस दर्शन में और कितनी विकृति थी मानवता को दुत्कारने की भावना में। उसी तरह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यासों में एक शताब्दी पहले समाज को आईना दिखाने का बीड़ा उठाया था। गांवों की हालत, दरिद्र की दुर्दशा, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ण अवहेलना एक देश को अधःपतन की ओर ही ले जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शरद ने दुख को न जाने कितने रंगों में बहुत करीब से देखा। परतंत्र भारत में बंगाल के गांव में गरीबी झेलते, भूख की मार सहते, शिक्षा के लिए हारी लड़ाई लड़ते हुए बालक शरद ने दुख को बार बार पहचाना। आजीविका के लिए बंगाल, बिहार, सुदूर बर्मा, फिर स्वदेश वापसी एक यायावर जीवन ने अनुभवों की पिटारी को तिल भर खाली न छोड़ा था। कर्तव्य परायणता, देश के प्रति प्रेम और सरोकार का दायित्व कहाँ है? कौन कहता है अपने लिए जिए तो क्या जिए, किसे देश के लिए अपने स्वार्थ से परे जाने की पड़ी है? बंगाल की भूमि पर जन्मी आशापूर्णा देवी की असंख्य रचनाओं में मात्र एक उपन्यास को उठा लीजिए। उनकी प्रथम प्रतिश्रुति नामक उपन्यास ने पिछली सदी में हम लोगों की दृष्टि बदलने में क्रांति कर डाली थी। एक पूरी पीढ़ी को इस महान उपन्यास लेखिका ने आलोकित किया था। उपन्यास की केंद्रीय पात्र सत्यवती के सवालों और आचरण से जाने कितनी दीवारें चटक गईं, कितने दरवाजे हिल गए, कितनी गांठें खुल गईं। श्री ने अपनी स्थिति की दयनीयता के कारण को तर्क से समझा, उन रूढ़ियों को करीब से देखा जो यथास्थिति को शाश्वत बनाती हैं। श्री का दमन अवनमन किसी दैवी इच्छा के चलते नहीं होता, इसके पीछे एक सामाजिक षड्यंत्र क्रियाशील है। इसी काले सच की ओर इंगित करते हुए आती है किशोरी सत्यवती की अमोघ टिप्पणी। घर परिवार में हर विधवाओं की स्थिति, मूक विवाहिताओं का भय और हर तरह की विडंबना को देखते हुए उस सहेली पुण्य से वो कहती है, नारी की लाचारी ईश्वर की देन नहीं है। सत्यवती की सहेली सोचती है गोत्रांतर होने के कारण औरत की ये स्थिति है। वो कहती है लड़की का जन्म ही कूड़ा है। सत्य कहती है लड़की का जन्म कूड़ा ना है रे पुन्नी, हमारे विधान दाता ही कूड़ा है। पर गोत्र कर जन्म भर के लिए पल्ला झाड़ने का आदेश भगवान ने न दिया था। इस वार्ता का अंत में स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्दों से करना चाहूंगी, जिन्होंने हम लोगों को बारंबार आगाह किया कि देश प्रेम का अर्थ है उसमें रहने वाली हाशिए पर खड़ी असंख्य निरक्षर भूखी प्यासी सर्वहारा जनता की सेवा। उन्होंने कहा, जो देश अपनी माताओं और बहनों और स्त्रियों का निरादर करता है और हाशिए पर खड़ी जनता की उपेक्षा करता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। निर्विकल्प समाधि के द्वारा स्वयं मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा रखने वाले जिद्दी नरेंद्र को परम गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने धिक्कार देते हुए कहा था, सिर्फ अपना मोक्ष देखेगा, ईश्वर का दर्शन सिर्फ खुद करेगा। तू वट वृक्ष बन, तेरे सम्मुख खड़ी ये भूखी प्यासी रोती हुई जनता ही तेरा ईश्वर है, इनकी सेवा। नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद बनने तक का सफर गुरु मंत्र द्वारा मन और विचारों को बदलने का सफर है। स्वामी जी का प्रैक्टिकल वेदांत इसी दृष्टिकोण को हमारे सामने रखता है। हर व्यक्ति से एकात्मता का बोध कैसे होगा, समता का बोध कैसे जागेगा? हम दुनिया के मालिक बन सकते हैं, पर यदि दूसरों के दर्द का अनुभव नहीं कर सकते तो सब कुछ व्यर्थ है। एक ही राह है, बस प्रेम। सब कुछ व्यर्थ है अगर हम दूसरों की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का स्थान लेगा प्रेम, तभी हमारे मन और विचार परिवर्तित होंगे। आज भी समस्याओं से, विकृतियों से, हिंसा से घिरी ये दुनिया ऐसे विचारों के लिए प्रतीक्षा करती है। फिर कोई आता है और अपने अनमोल शब्दों से मन और विचारों को बदलने का प्रयास करता है। AI का अत्याधुनिक समाज हो,

0: आणविक युद्धों को लड़ने का साहस रखने वाला समाज, जरूरत तो अंततः उस परिवर्तन की है जो समाज को शांति दे सके। कालजयी पुस्तकों में आत्मत्याग, बलिदान और निस्वार्थ प्रेम का ही जयगान होता आया है। धन्यवाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: सखियों अभी आप सुन रही थी डॉक्टर अनुराधा बनर्जी द्वारा ये वार्ता। वार्ता का विषय था किताबें।
5: भाई सखियों अभी तो हमारे पास पिटारे में बहुत कुछ है, लेकिन अभी सुनवा देते हैं सखियों को और एक और प्यारा सा गीत।
4: बिल्कुल।

0: भाई सुनी, हमारे मैंने कहा था कि सखियों बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन अभी तो देखो घड़ी रानी टिक टिक कर रही है और जो कि हमें जाने का इशारा भी कर रही है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सखियों से विदा लेते हैं और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी रेडियो दोस्त सुखदा
1: और सोनी को
0: दीजिए
1: अनुमति दीजिए।
0: अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुने कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं नंदलाल यादव और साथी। इस कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में प्रस्तुत है ये पूर्वी।
1: जो गवा दो मावा।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं नंदलाल यादव और साथी। कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना आपके स्वर में पूर्वी, पूर्वी के बाद कार्यक्रम में प्रस्तुत है ये छपरहिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार थे नंदलाल यादव और साथी। इनका गाया लोकगीत आप कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मिड डे न्यूज का प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी देर में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को सौंपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप सौंपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न

0: सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहे हैं,
4: हाँ।
3: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखवापदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तो

0: तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
1: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में है। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
2: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज की प्रस्तुति सना सलीम की।

जरा आंखें खोलिए और इस मंजर की रूह में उतर कर देखिए। ये जो बूढ़े तने हुए आम के दरख्त अपनी सदियों पुरानी संजीदगी भूलकर हवा के एक एक थपेड़े पर पागलों की तरह डोल रहे हैं, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। ये तो कुदरत का सरेआम तमाशा है, जहां वक्त का पहिया उल्टे पांव दौड़ गया है। जो पेड़ कल तक अपनी डालियों का बोझ संभाले गंभीर खड़े थे, आज बादलों की इस गड़गड़ाहट ने उनके भीतर की सोई हुई एक ऐसी ऊर्जा को जगाया है कि वो अपनी हर बंदिश भूलकर झूम उठे हैं। और उसी झूमते पागलपन के बीच हवा के एक जोरदार झोंके के साथ वो जो टप की आवाज सुनाई देती है, आम का गिरना, ओहो, टप टप, वो आवाज नहीं है, वो तो बचपन की तिजोरी का ताला टूटने की आवाज है।

अब ऐसे में भी भला कोई सभ्य बनकर तहजीब का चोंगा ओढ़े खड़ा रह सकता है? अरे छोड़िए इस दुनियावी सलीके और कायदे को, अब खड़े खड़े तमाशा क्या देखना, दौड़ पड़िए कीचड़ चिपके या कपड़ों पर छींटे पड़े, आज परवाह किसे है। और जब हम नंगे पैर उस भींगी फिसलन भरी मिट्टी पर भागते हैं और पानी से भारी हुआ कुर्ता शरीर से चिपक जाता है और आंखों में बिजली सी कौंध उभरती है कि वो जो सामने झाड़ी में गिरा है वो अहम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जरा निगाह घुमाकर उस घने गहरे घुरमुट की तरफ तो देखिए, जहां बादलों का नगाड़ा बजते ही वो मोर का नाचना, अपनी भारी मखमली पंखों का वो विशाल पसार, नीली हरी गर्दनों की वो मदमस्त थिरकन, वो कशिश, वो महज एक पक्षी का नाचना नहीं है, वो तो साक्षात कुदरत का हमारे नाम एक खुला हुक्मनामा है, एक ईश्वरीय पैगाम है जो कह रहा है कि जब आसमां इस कदर मेहरबान हो, जब रहमत बरस रही हो, तो हिसाब किताब की कश्तियां डुबो दो और बिना किसी झिझक बिना किसी डर के जिंदगी के इस जश्न में झूम उठो।

जरा इस बहते रेले के शोर में छिपे तिलिस्म को तो सुनिए। जब आसमान इस कदर टूटकर बरसे कि छतों के परनालों से पानी उफनता हुआ सारी सरहदें लांघकर सीधे आंगन में भर जाए, तो समझ लीजिएगा कि अब सिर्फ मौसम नहीं बदला है, अब इस कायनात का मिजाज बदल गया है। ये पानी नहीं है, ये तो वक्त का एक ऐसा सैलाब है जो हमें हमारी हर संजीदगी से आजाद करने आया है। अब ऐसे में भला कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे? अरे ढूंढिए, घर का कोना कोना छान मारिए और निकालिए वो पुरानी रद्दी, उन पर जो लिखा है उसे आज मिट जाने दीजिए। बस उंगलियों को अपनी पुरानी रफ्तार याद दिलाने दीजिए। जरा आड़े जरा तिरछे मोड़ कर देखिए, सलीके से कोनों को दबाते हुए तैयार करिए अपनी वो जादुई फौज, कागज की नाव, और फिर उस भरे हुए पानी के बीच खड़े होकर एक हुंकार भरिए कि मेरी कश्ती इस बार सीधे समंदर पार जाएगी। इस एक आवाज में जो अल्हड़पन है, जो बेफिक्री है, वो आपको उम्र के उस पार ले जाती है, पानी के उस मटमैले तेज बहाव में अपनी उस अदना सी सफेद कश्ती को हौसले से छोड़ देना और फिर धड़कते दिल से थमती सांसों के साथ कीचड़ और पानी में छपक छपक करते हुए उसका पीछा करना। वो कश्ती जब पानी के भंवर में फंसकर जरा डगमगाती है, एक तरफ को झुकती है, तो छाती के भीतर धक से रह जाता है, एक अजीब सा रूहानी रोमांच हिलोने लेने लगता है। वो महज एक कागज का खिलौना नहीं है, उसे कमतर रखने की भूल मत कीजिएगा। वो तो दरअसल हमारी उस उम्मीद की सवारी है जो इस दुनिया की तमाम थपेड़ों के बीच भी घुटने टेकना जानती है। उसे तो बस इस जिंदगी के बहाव में बहते जाना है। अगर वो कश्ती किसी तिनके से टकरा कर पानी में गल कर डूब भी गई तो रंज कैसा, उदासी कैसी। अरे कागज अभी और भी बहुत है और इन हाथों में कश्तियां गढ़ने का हुनर आज भी जिंदा है। तो उठिए, एक और सफा फाड़िए और एक नई कश्ती बनाइए और फिर से बहा दीजिए इस सावन के हवाले।

जरा रसोई की उस दहलीज पर कदम रख के तो देखिए, जब बाहर भीगते भीगते शरीर पानी से पूरी तरह तर बतर हो जाए और सावन की वो ठंडी पुरवाई हड्डियों तक में एक मीठी सी सेहरन जगाने लगे, तब घर का वो एक कोना जो चिर परिचित ममतामय रसोई की आंच किसी मरुस्थल में छांव की तरह अपनी तरफ खींचने लगती है। मिजाज देखिए इस मौसम का, बाहर आसमान से पानी की अनवरत झड़ी लगी हो, खिड़कियों के शीशे बौछारों से धुंधला रहे हो और भीतर कड़ाही में तेल खोलकर अपनी खुशबू ना बिखेरे, भला ऐसे भी कोई सावन होता है क्या? ऐसा सावन तो मुकम्मल ही नहीं माना जाएगा भाई। इस महफिल का असली सुल्तान तो बस अब आ ही रहा है और साथ में क्या, लोहे के उस काले पड़ चुके भगोने में खोलती हुई मूसल से कूटे गए अदरक और इलायची के दानों की खुशबू से सराबोर वो एकदम कड़क चाय। चाय का तैयार होना मानो घर के हर शख्स को एक जगह समेटने का बहाना है। उस धुएं उठते मिट्टी के कुल्हड़ों या पीतल के ग्लासों को अपनी दोनों हथेलियों के बीच भींच कर उसकी गर्माहट को अपनी रगों में उतरते देखना और फिर लकड़ी की पीढ़ियों और मोढ़ों को खिसकाकर एक तंग गोल दायरा बनाकर बैठ जाना, क्या नजारा है। उस वक्त ना किसी दफ्तर की घंटी का खौफ होता है, ना किसी घड़ी की सुइयों का तकादा और ना ही इस मतलबी दुनिया का कोई हिसाब किताब। वो जो बहता है वो है बस एक बेमतलब की गपशप, बचपन के पुराने किस्से और अपनों के बीच से उठते वो बेसाख्ता खिलखिलाते ठहाके जो घर की कड़ियों को छूकर लौटते हैं। जिंदगी का असली रस, उसका खालिस जायका किसी बड़ी कामयाबी या रईसी में नहीं है। जिंदगी का असल रस तो सावन के इसी छोटे से मुकम्मल ठहराव में है। चलिए इस आंच के इर्द गिर्द बैठें और इस रस को जी भर के पी लें। तो फिर कैसी झिझक, ये बारिश हर बार हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर पूछती है, कहाँ खोए हैं, बाहर आइए। ये मौसम हमें बूढ़ा होने की इजाजत नहीं देता, ये तो हर बरस लौटता है हमें ये बताने के लिए कि जब तक आसमान में बादल हैं और जमीन पर पानी, तब तक बचपन जिंदा है। तो फेंक दीजिए इन छतरियों को, खोलिए घर के किवाड़ और कल से शुरू हो रहे सावन में खुद को पूरी तरह से झोंक दीजिए। आज फिर से कश्ती बनाइए और आज फिर से एक बच्चा बन जाइए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज की प्रस्तुति सना सलीम की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DTH JRM 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AI

तैयार पर। स्टडी घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मेरे में 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, ओटीटी वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजे आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आई सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया फिल्म यहूदी से। आवाज मुकेश की है, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: अभी आप मुकेश की आवाज में सुने थे फिल्म यहूदी का गीत। अब आइए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में सुने फिल्म धरती कहे पुकार की फिल्म का ये गीत।
1: बंधे एक डोरी से जइयो कहां।
0: गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुना रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने फिल्म प्रोफेसर का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीतकार हैं हंसराज जयपुरी और संगीत रचना शंकर जयकिशन की है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 सेमीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुने युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: गुरु गोविंद दोउ खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं जीवन में ज्ञान का प्रकाश तभी सार्थक होता है जब उसे सही दिशा देने वाला कोई मार्गदर्शक हमें मिले।
1: जी हाँ दोस्तों, गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि व्यक्ति के विचारों, संस्कारों और व्यक्तित्व को भी नई ऊंचाइयाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। उनका सानिध्य हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने की दृष्टि देता है और जीवन की राह को सरल बना देता है।
0: तो दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके जीवन का सदैव ज्ञान, विवेक और सफलता के प्रकाश से आलोकित करता रहे, यही हमारी हार्दिक मंगल कामना होगी।
1: आइए इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त।

0: दादू आपका तारा मतलब
1: बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
2: पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
0: हाँ बैल, मुझे मार मतलब
1: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
3: और ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
0: इसका मतलब
3: इन्हीं से पूछो।
2: समझा पापा।
4: और भी यह कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कुछ पर्व केवल परंपराएं नहीं होते बल्कि वे हमें जीवन के गहरे मूल्यों से भी परिचित कराते हैं। आज का दिन भी ऐसे ही अनेक प्रेरणादायी संदेश अपने साथ लेकर आया है।
8: बिल्कुल दोस्तों।

0: आज आषाढ़ पूर्णिमा है हिंदू पंचांग के अनुसार। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि होती है जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन श्रद्धा, साधना और आत्मचिंतन का विशेष महत्व बताया गया है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा का यह पावन अवसर ही गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और संस्कारों से हमारे जीवन को सही दिशा दी। और दोस्तों, आज का दिन हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा के साथ साथ वहीं प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश भी दे रहा है।
0: क्यों? क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। इसका उद्देश्य है चीता जैसे तेज और दुर्लभ वन्य जीव के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना।
1: बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज का दिन भारत के महान उद्योगपति और दूरदर्शी व्यक्तित्व जहांगीर रतन जी टाटा भाई, दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वे टाटा समूह के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और भारतीय नागरिक उड्डयन के अग्रदूत माने जाते हैं।
0: वर्ष 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी। उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज ही के दिन स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनानी अरुणा आसफ अली जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का दिन है। और हमारे सभी युवाणी के श्रोताओं को और के साथ मिलकर हमें और हम हमें मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर उन्होंने अदम्य साहस और देशभक्ति का परिचय दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदैव याद किया जाएगा।
0: तो आज का जीवन मंत्र है ज्ञान हमें दिशा देता है, प्रकृति हमें जीवन देती है और महान व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देते हैं। इन तीनों का सम्मान ही एक समृद्ध और संस्कारित समाज की पहचान हो सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और चलिए इन्हीं प्रेरणादायी बातों के साथ अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था और उसके विनर कौन कौन है। लेकिन उससे पहले हमारा कल का प्रश्न क्या था ये जान लिया जाए। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होकर भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, और इसका सही उत्तर है सारनाथ।
0: और अब बारी है उन श्रोताओं का नाम जानने की जिन्होंने हमें सही जवाब उत्तर लिखकर भेजा है। तो उनके नाम ऐसे हैं, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, चंदा चंदौली से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा, नेपानगर मध्य प्रदेश से, प्रभुदया शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे। इसके साथ ही संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवार और आनंद गुप्ता।
1: तो क्या बात है, इन सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से हमें जवाब देते रहें और विनर भी बनते रहें। बाकी आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए आपको हमारे जो है कार्यक्रम में जुड़े रहना पड़ेगा और उसे सुनते रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं वो बातचीत जिसका शीर्षक है नीट की तैयारी, अनुभव, चुनौतियां और सफलता के मंत्र। और ये बातचीत हमने की है श्रेया आनंद सिंह से। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने युवाणी कार्यक्रम में युवाओं के करियर, ग्रोथ और भविष्य से जुड़ी हुई बातचीत करते हैं और उनके लिए सही गाइडेंस से जुड़े हुए अलग अलग तरीके की बातचीत आपके सामने लेकर के उपस्थित होते हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमारे बीच में इस बार की नीट क्वालिफाई एक एस्पिरेंट हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में है और इनका नाम है श्रेया आनंद। श्रेया, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसा
0: थैंक यू
1: लग रहा है
0: मैम,
1: आपको?
0: बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को मेरा नमस्ते और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू।
1: तो श्रेया, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि डॉक्टर बनने का ये जो सपना है, आपने कब और

0: क्यों देखा, इस सपने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: मैंने बायो चूज ही इसलिए किया था क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन जब मैंने उस टाइम पे, हम लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं इसलिए हमें आइडिया नहीं था कि फाउंडेशन वगैरह कोर्सेज भी होते हैं, तो हमने स्कूल स्टडी कंटिन्यू की और सोचा कि इसी के साथ प्रिपरेशन करेंगे और खुद से करेंगे। बट उस टाइम मतलब 12th के साथ एक बार मैंने नीट दिया तो उस साल तो बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब तैयारी करते हैं किसी कोचिंग में या कहीं पे भी ज्वाइन करके तैयारी करते हैं। लेकिन उस टाइम पे फिर जैसे मैंने 12th क्लियर किया उसी साल कोविड आ गया तो कोचिंग्स मोस्टली शट डाउन हो गई और मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग बट मुझे पैसे रिफंड कर दिए गए और कोचिंग बंद हो गई। और उस टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज इतने वायरल जितने अभी हैं उस टाइम पे नहीं हुए थे, तो ऑनलाइन भी खोजने पे कोर्सेज नहीं मिल रहे, तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख के मैं फिर भी फर्स्ट फेज ऑफ कोविड में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब सेकेंड फेज आया कोविड का तो मेरे पूरी फैमिली को कोविड हो गया, तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हुआ, हेल्थ कंसर्न्स आए और उस टाइम पे मैंने मतलब मेरी पूरी फैमिली को हुआ तो सब बीमार हुए बट वी लॉस्ट माय मदर, तो थोड़ा सा वो वाला सेटबैक आया जीवन में। और उसके बाद हम लोग गांव चले गए क्योंकि कोप करना थोड़ा मुश्किल था, शहर में उस टाइम इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं था। और हमने मम्मी को खोया भी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे किसी डॉक्टर की हेल्प नहीं मिल पाई और इसी मेडिकल नेग्लिजेंस पे मेरी मम्मी नहीं रही, तो उसके बाद से हमने फिर हम घर चले गए गांव में और वहां जाके ये जो सेटबैक आया तो उसके बाद तैयारी वाला थोड़ा सा मेरा जो मेंटालिटी था वो बंद हो गया क्योंकि सोच नहीं पा रही थी मैं पढ़ाई के डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने फिर BSc में इनरोल करा लिया कि कम से कम कुछ पढ़ाई चलती रहे रेदर देन सिटिंग एट होम। तो फिर उसके बाद मैंने BSc पूरी की और उसके बाद मैंने ये बोला पापा को, माय फादर, कि मुझे डॉक्टर, अभी भी मेरा डॉक्टर बनने का मन है। तो कभी भी ऐसे बहुत ऐसे रैंडमली चूज किया हुआ ड्रीम नहीं था डॉक्टर बनना, जैसे एक डायरेक्शन में मेरा जीवन चला और मुझे मिल गया डॉक्टर का सपना ऐसे करके।
0: आपकी बातचीत से लग रहा है कि काफी मिक्स टाइप की चीजें आपके साथ हुई
1: हाँ,
0: है
1: हाँ,
0: और
1: हाँ।
0: काफी सारे अप्स डाउन आपने फेस हाँ। किए हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर बनने का सपना है हाँ। इन सबके बीच उसको कहीं झुकने नहीं दिया
1: हाँ।
0: और पैरेलल आपने भाई BSc कंटिन्यू किया, उसके बाद से वापस से फिर से रीस्टार्ट किया
1: हाँ।
0: और आपकी बात से सच में मुझे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रही है और काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि वास्तव में कितने भी हमारे साथ में चैलेंजेस हों लेकिन हमारा जो फोकस है वही है मेन मंत्र की हमें आगे बढ़ना है और अपनी ड्रीम को अचीव हाँ। करना है। आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे जो दूसरा सवाल है वो ये है कि नीट जैसी ये कठिन परीक्षा, इसके लिए आपका रोजमर्रा का पढ़ाई रूटीन क्या था और कितना घंटे पढ़ना या फिर क्या तरीके से आपकी स्टडी प्लानिंग हुआ करती थी?
1: नीट में मैं ये कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो भले मैं 6 घंटा भले रोज पढ़ती थी बट 6 घंटा कंटिन्यू रोज का फिक्स था कि इतना तो पढ़ना ही है, वो मिनिमम है। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी और ये 6 घंटे 8 घंटे जितना मुझसे हो पाए उतनी देर पढ़ती थी, उसके बाद फिर घर आते थे ताकि घर वाला डिस्टर्बेंस ना रहे उसमें। तो पढ़ाई का ड्यूरेशन फिक्स रखना और एक डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते रहना कि हम एक तरफ से कर रहे हैं, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं।
0: मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, हाँ. है, रादर हम कोई घंटे के हिसाब से डिवीजन करके पढ़ें। और इसी तरीके से मेरा अगला जो सवाल आपसे है वो ये कि जैसे आप नीट प्रिपरेशन की स्टूडेंट रह चुकी हैं तो बच्चों को क्या है ना जो इस मेडिकल लाइन से जो प्रिपरेशन करने में जुड़े रहते हैं उनके साथ समस्या आती है ना ये फिजिक्स वाले फोबिया की, उनको कैलकुलेशंस इतने ज्यादा कह सकते हैं कि ट्रॉमेटिक लगते हैं कि अरे कैसे हम फिजिक्स को कवर करें और भाई क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिशन में तो वो तो भर भर के पूछे ही जाएंगे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या प्लानिंग था?
1: मैम मैंने 11th में बायो के साथ साथ मैथ्स भी लिया था, तो मैथ्स वाला मेरा ये बहुत समस्या नहीं थी मैथ्स पढ़ने में क्योंकि मैंने मेन मैथ्स लिया था तो मैं PCMB की स्टूडेंट थी, तो फिजिक्स में मैथ्स वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे कभी। हाँ, जिनको होता है उनके लिए स्ट्रैटेजी ये रखनी चाहिए कि फिजिक्स में शुरुआत में बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आप बेसिक मैथ्स का जब शुरू में पढ़ाया जाए तो उसका नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं और जब भी आप भूलें तो उन नोट्स को खोल के दोबारा रिवाइज करें क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं आता, जितना बेसिक मैथ्स हम पढ़ते हैं उतना ही आता है फिजिक्स में।
0: मतलब एक सिलेबस डिफाइन करके हाँ।

0: इतने को हम अच्छे से प्रिपेयर करें।
1: हाँ हाँ
0: बात अगर केमिस्ट्री की करें तो ऐसा कुछ है क्या कि बायोलॉजी वालों को केमिस्ट्री बहुत पसंद होती है?
1: नहीं, मेरे केस में ये नहीं सही है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स के कलर याद करना, मैक्सिमम 50-52 सॉल्ट्स है, सबके कलर आपको याद करने हैं, सबका टेस्ट क्या है ये याद करना है, तो थोड़ा सा ये रटने वाली चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। बट यही है कि आपको अपना रिविजन करते रहना चाहिए। नोट्स है अगर आपके पास, जरूरी नहीं कि आपके पास 1000 नोट्स हो, आपके पास एक नोट्स हो, बट उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, तो इससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो एक नोट्स कम से कम आपको रटा हो जाता है फिर, तो उसमें आप भूलते नहीं है कभी भी।
0: और बात करें जैसे फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आते हैं तो वहां पर उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि भाई इतने सारे रिएक्शंस और इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनको लेकर के क्या हम रूटीन फॉलो करें, कैसे हम उसकी रिविजन को ध्यान रखें और उसमें मिस्टेक्स हमारे कम हो, इस पर प्रैक्टिस बना सकें।
1: मैम, ऑर्गेनिक में जितने नेम रिएक्शंस हैं वो तो आपको लर्न ही करने, एक तरफ सारे लिख लीजिए और याद करिए, और बाकी जितने रिएक्शंस हैं वो प्रैक्टिस के थ्रू करिए। जैसे आपको अगर कोई बुक अवेलेबल है, प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है, तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करिए, रोज करिए। ये नहीं कि आप एक दिन 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं और उसके बाद नहीं प्रैक्टिस कर रहे, आप 20 क्वेश्चन लगाइए पर रोज लगाइए, तो इससे आपको चीजें याद हो जाती हैं ओवर द टाइम।
0: यानी प्रैक्टिस ही उसका
1: हाँ
0: मंत्र है। और जैसे नोट्स अगर मैं प्रिपरेशन की बात करें तो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस होता है
1: हाँ
0: और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो समझ लीजिए एकेडमिक के कंपेयर में डबल ट्रिपल प्रेशर होता है, तो ऐसे में नोट्स बनाने का क्या मेन जो है क्राइटेरिया होना चाहिए किसी एस्पिरेंट का?
1: मैम, बायो में तो मैं नहीं कहूंगी नोट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बायो में एनसीईआरटी ज्यादा जरूरी है। आप एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। हाँ, अगर कोई टॉपिक डिटेल में नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो उसको आप नोट्स बना के या उसी में स्टिकी नोट्स लगा के आप हाईलाइट कर सकते हो, तो बायो में तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में है, फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स के नोट्स तो बहुत शॉर्ट बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो, तो क्वेश्चन वाले नोट्स आपको अलग बनाने चाहिए और थियोरी वाले अलग, तो उससे याद होती है चीजें, प्रैक्टिस कहाँ करना है वो पता रहता है। केमिस्ट्री में तीन तरीके की केमिस्ट्री है, तो आपको तीनों के लिए अलग नोट्स बनाने पड़ेंगे, अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नोट्स बहुत ज्यादा नहीं कि आप मल्टीपल जगह से नोट्स बनाएं, आप एक जगह से एक तरीके के नोट्स बनाएं और उसे याद करें, वो याद होना आपको ज्यादा जरूरी है।
0: और मैं एक और सवाल इसी में आपसे आगे पूछना चाहूंगी कि नोट्स की आप अगर बात कर रहे हैं तो बहुत तरीके की बुक्स हैं, ये एक कंफ्यूजन हो जाता है चाहे वो एकेडमिक का बच्चा हो चाहे वो कॉम्पिटेटिव का बच्चा हो, हर जगह पे एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग आप रेफरेंस बुक की तरफ ज्यादा बोलेंगी या एनसीईआरटी प्रिपरेशन के लिए हम किस तरीके से बुक्स का कह सकते हैं कि चूजिंग कर सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पर आप क्या बोलेंगी?
1: मैम, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स के लिए तो मैं कहूंगी कि आप टीचर्स पे रिलाई करें, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्हें पता है कहाँ से कितना पढ़ना है, ये उन्हें ही पता रहेगा। बायो के लिए तो एनसीईआरटी ठीक है, पर कितनी रेफरेंस बुक से कितना पढ़ना है ये आपको टीचर ही बता सकते हैं, तो टीचर पे रिलाई करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से।
0: तो इस तैयारी में आपको मुश्किलें अगर मैं जहां भी आई हैं तो उसको आपने कैसे हैंडल किया है, या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रेस अक्सर होता है, प्रेशर होता है, कह सकते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और उसमें अपनी पर्सनल लाइफ, तो इन सबको आपने कैसे बैलेंस किया?
1: मैम, स्ट्रेस के लिए तो मैं रेकमेंड करूंगी कि कोई भी एक स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, कोई भी एक। जैसे मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, अगर मुझे बहुत स्ट्रेसफुल लगता है तो वो खेल के आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हो, या मूवीज देख सकते हो कभी कभी, जरूरी नहीं रोज देखो, बट कभी कभी आप अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए देख सकते हैं। और पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस मेरे केस में थी, लेकिन बहुत प्रेशर नहीं था पेरेंट्स का। कंपटीशन बहुत है इस एग्जाम में, और उस कंपटीशन में जो सेलेक्ट हो रहे हैं वही सबसे अच्छे नहीं है, ये बात है। और शायद कोई ना सेलेक्ट हुआ हो और आगे जाके बहुत अच्छा बन जाए, तो इसीलिए कभी भी हारना नहीं चाहिए ये सोचिए कि मैं नहीं सेलेक्ट हुआ। और इसलिए मेरे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन थोड़ा इस डायरेक्शन में था, तो मुझे बहुत समस्या नहीं हुई उससे डील करने में।
0: यानी अपने ड्रीम्स को तो अपने साथ रखना है पर
1: हाँ
0: उसके साथ उसके प्रेशर को अपने साथ नहीं रखना
1: हाँ
0: है कि भाई हमें डॉक्टर बन करके एट एनी कॉस्ट ही और
1: हाँ
0: यही हमारे लिए
1: हाँ
0: हाजिर होना है और यही हमारे लिए आखिरी

0: ऑप्शंस है,
1: हाँ
0: ऐसा कुछ नहीं। और सचमुच ये सारी जानकारी जो आपने दी वाकई उसे सुन करके बहुत ही इंस्पायरिंग फील हो रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हो रहा है श्रेया सचमुच।
1: थैंक यू मैम।
0: और बस अब इसी के साथ साथ मैं आपसे आखिरी सवाल और आपसे एक पूछना चाहूंगी कि जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो अपकमिंग आने वाले हैं और उनका सपना है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट बने और डॉक्टर बनकर के सामने आए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या उनको बताना चाहेंगी कि किस तरीके की एक स्ट्रांग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो फॉलो करें?
1: मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी इज द की, जैसा मैंने पहले बोला कि आपको रेगुलर पढ़ना है, चाहे जितना देर पढ़ना है वो आपके ऊपर है। ओवर द टाइम आपका ड्यूरेशन हो सकता है, अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो बढ़ के 8 घंटे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो अगले दिन नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा और शायद क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है तो कोई आपके आगे निकल जाए। बाकी स्ट्रेटजी में मैं फिजिक्स में बोलूंगी कि जितने न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो उतना करो, केमिस्ट्री में भी वही रहेगा मेरा, मल्टीपल न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे टेस्ट दीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप मल्टीपल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। और बायो में चीजें रिवाइज करिए, बार बार, 50 बार, 100 बार, वही किताब खोलिए लेकिन रोज खोलिए, यही मेरी स्ट्रेटजी है।
0: ओके श्रेया, सचमुच आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने खूब सारी जानकारियां हमें दी और उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के बहुत ही हेल्प में आएंगी। और आपको भी आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू मैम, सभी को धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी श्रेया आनंद सिंह से ये बातचीत, जिसका शीर्षक था नीट की तैयारी, अनुभव, चुनौतियां और सफलता के मूल मंत्र। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो।
4: 0542227658।
5: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
5: 0542227658।
0: तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं आज के दिन में क्या खास है इतिहास में।
1: दोस्तों, आज के दिन 29 जुलाई 1876 को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना की गई थी। इसे भारत और एशिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान माना जाता है।
0: और इसी के साथ साथ दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि हमारे यू डायरी में आज कौन से नए शब्द हम सीखने वाले हैं। तो हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है
1: क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन कुड बी क्रेडिबल कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इनकरेजेस मीनिंगफुल कोलैबोरेशन।
0: और दोस्तों, हमारा आज का हिंदी का शब्द है परिव्यय, जिसका अर्थ है किसी कार्य, योजना या वस्तु पर किया गया कुल खर्च। और अगर मैं हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो हम कह सकते हैं अनावश्यक परिव्यय से बचना आर्थिक प्रबंधन के लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब यू डायरी के शब्द जानने के बाद और इतिहास से जुड़ी जानकारी के बाद सुनते हैं ये बातचीत, जिसका जो विषय है वो है बोर्ड परीक्षा में सफलता का मंत्र। और इसे हमारे साथ जो प्रस्तुत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं वो है वंश श्रीवास्तव। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम युवाणी में हम सभी युवाओं से संबंधित, करियर से जुड़ी हुई, उनके ग्रोथ से जुड़ी हुई और उनके फ्यूचर से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो आपके सामने लेकर के आते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके और आपको आपके भविष्य का सही गाइडेंस मिल सके। तो ऐसे ही विषय के साथ आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं अपने कार्यक्रम युवाणी में। और आज हमारे साथ हैं बनारस के प्रतिष्ठित विद्यालय से क्लास 10th के टॉपर वंश श्रीवास्तव। तो चलिए वंश से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्लास 10th में कैसे अपनी इतनी अच्छी पोजीशन बनाई, इतना अच्छा स्कोर किया और इतना अच्छा परसेंटेज लेकर के अपने फैमिली का और अपने साथ में जो भी लोग इनके साथ जुड़े थे, इनकी जर्नी में जुड़े थे, चाहे वो इनका स्कूल हो, चाहे

0: उनके टीचर्स हो, उनका भी नाम आगे बढ़ाया। तो वंश, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो वंश, सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे होने वाला है वो ये कि ये बताइए कि इस शानदार प्रदर्शन में आपका सफर कैसा रहा और आपने ये टॉपर लिस्ट में जो बनने का ये आपका सपना था उसकी शुरुआत कैसे की?
1: मैंने क्लास 10 में जब एंटर किया तो ये मेरा ड्रीम था कि मुझे 90% से अबव स्कोर करना है। तो उसके लिए मैंने मेहनत की। स्टार्टिंग में मैं बहुत कंसिस्टेंट था, मैंने अपना हार्ड वर्क दिया और मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे जितने कजन्स थे और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे इस जर्नी में।
0: ओके, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम जो था वो बहुत स्ट्रांग था।
1: जी।
0: और जैसे आपके साथ का जो आपका फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि अक्सर जो क्लास 10th के बच्चों की बात की जाए तो ये टीन एज होती है, तो बच्चे अक्सर करके क्या होता है कि, या आपके जो सहपाठी होंगे, आपने ये चीज फील भी की होगी कि अक्सर वो सर्कल जो होता है ना वो अपना प्रॉपरली चूज नहीं कर पाते हैं और अक्सर किसी गलत सर्कल में आ जाते हैं। तो आपका फ्रेंड सर्कल चूज करने का कोई ऐसा पर्टिकुलर आइडिया था कि हाँ ये मेरी पढ़ाई में हेल्प करे या कुछ इस तरीके का?
1: जी, मेरे जो कजन्स थे और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत अच्छा था। मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे स्टडीज को लेके, तो एक तरीके से मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा मेन रोल प्ले करता है मेरे इस जर्नी में।
0: ओके, अच्छा ये बताइए मुझे कि आपका पढ़ने के दौरान सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट कैसे था? जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कुछ सब्जेक्ट हमारे बहुत इजी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमारे बहुत टफ होते हैं। मैथ्स से अक्सर करके बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, तो मैथ्स को लेकर के आपका क्या स्ट्रेटजी थी आपकी और किस तरीके से आपने अपने मैथ्स पर फोकस किया?
1: जी, मैंने मैथ्स में काफी प्रैक्टिस की, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था। काफी लोग मैथ्स को रटते हैं लेकिन मैंने उसे समझने की कोशिश की और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की। और एक चैप्टर था जो एंड में आते आते मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री, उसकी आइडेंटिटीज से दिक्कत हो रहा था, लेकिन उसमें मैंने प्रैक्टिस किया तो मेरा काफी परफेक्ट हो गया था ट्रिग्नोमेट्री। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, तो उसमें मैंने ज्यादा वर्क किया और मैंने उसकी जो भी की पॉइंट्स होते हैं उस पर ध्यान दिया। इंग्लिश में उसकी समरी को अच्छे से समझा जिससे मुझे मेरे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने को मिले, तो ये मेरी सब्जेक्ट पर अच्छा कमांड बनाया मेरी प्रैक्टिस ने। और मैथ्स में प्रैक्टिस करने से ही सिर्फ मुझे समझ आता था मैथ्स, और मैथ्स रटते नहीं है कभी भी।
0: ओके, माने आपके हिसाब से प्रैक्टिस जो है वो मैथ्स को परफेक्ट बनाने में,
1: ये
0: कह सकते हैं सबसे बड़ा जो एक मूल मंत्र है वो प्रैक्टिस ही है। और आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जैसे क्या होता है कि SST सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां अक्सर करके बच्चे ना बहुत ज्यादा बोरिंग फील करते हैं और इस सब्जेक्ट से भागते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा चीजों का इतिहास पढ़ना है और काफी चीजें जो है वो बेसिकली थ्योरेटिकल बेसिस पे ही हैंडल करनी है। तो आपका सोशल साइंस पर कैसा जो पढ़ाई का रूटीन रहा है या फिर आपकी जो प्लानिंग रही है वो किस तरीके की रही है?
1: सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर टाइम पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग उसमें काफी ज्यादा चीजें हैं जो हम लोग रिमेम्बर नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो उसे रिवाइज करते रहना चाहिए। हिस्ट्री में भी रिवीजन बहुत जरूरी है, जैसे कुछ पॉइंटर्स हैं जैसे सत्याग्रह पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस पे हमें अपनी उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। जब भी कोई चैप्टर पढ़े उसको एक टाइम रूटीन पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज करते रहना चाहिए सारे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को। और इस लिखने का जो बोर्ड में एक प्रोसीजर होता है SST के लिए, वो पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। मैंने अपने बोर्ड्स में पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को लिखा है और कोई भी आंसर्स आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, लेंथी होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टू द पॉइंट जरूरी होता है।
0: वहीं अगर मैं हम साइंस की बात करें तो मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर करके ना साइंस में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कंटेंट देना कितना है साइंस में भी, जो कि यहां पर बेसिकली फैक्ट्स की बात करते हैं, बट कुछ बच्चे क्या है कि यहां पर फंस जाते हैं। तो आप अगर मैं डिफ्रेंशिएशन की बात करें साइंस और सोशल साइंस में, तो आपके अकॉर्डिंग कॉपी राइटिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
1: कॉपी राइटिंग SST में तो पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, सारा आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए। और साइंस के लिए हमारे पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स में हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा सॉल्व करनी चाहिए, जितनी भी साइड बुक्स होती हैं आप उससे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। NCERT की हर लाइन को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसे अच्छे से समझना चाहिए।

0: कि वो लाइन हमें क्या सिखाती है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो साइंस में हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए और न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए फिजिक्स में, और बायो के लिए आपको हर एक टर्म की डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए, और कॉपी राइटिंग में आपको हर एक चीज जो मेन पॉइंट होते हैं उसको अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे जो इनविजिल एग्जामिनर चेकर जो होते हैं वो आपके कॉपी के हाईलाइटेड पॉइंट को देख के ही आपको मार्क्स दे सके, और कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए।
1: ओके, कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखना। यस, ये इस पर मैंने देखा है कि अक्सर करके बच्चों की हैंडराइटिंग का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो सब चीजें समझ तो पाते हैं बट जब लिखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग का उन्हें इश्यू क्रिएट होता है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रॉपर हैंडराइटिंग के लिए आपका क्या जो एक रूटीन रहा है या आपकी जो प्रैक्टिस रही है स्पीड मैनेजमेंट कॉपी राइटिंग के लिए, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे?
0: मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी PYQs और सैम्पल पेपर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए। इससे हम लोग को टाइम, जैसे ही हम लोग का एंड आता है बोर्ड से कुछ समय पहले, हम लोग को वो सारे सैम्पल पेपर और PYQ सॉल्व करने चाहिए। उसे टाइमर सेट करके हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, जिससे हम लोग रियल फील ले पाए बोर्ड का, जिससे हमें पता चले कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो जब भी आप सैम्पल पेपर लगाते हैं तो आपको उतना आइडिया हो जाता है कि कितने टाइम में मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से हो पा रहा है, जिससे हम बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं।
1: एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी। अभी बीच में आपने एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस दिया था, तो क्या होता है ना कि मैंने देखा है कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ साइड बुक्स होती हैं, मैथ्स के लिए है और साइंस के लिए है। स्पेसिफिक अगर मैं बात करें मैथ्स साइंस ज्यादातर, हालांकि सभी सब्जेक्ट में रेफरेंस बुक्स का है लेकिन ज्यादातर मैथ्स और साइंस में। तो क्या है कि ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारा एक मैस सा हो जाता है, कुछ बच्चों में मैंने ये भी प्रॉब्लम देखी है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं हम अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमें एनसीईआरटी को ज्यादा रूटीन में फॉलो करना चाहिए या फिर साइड बुक का? कैसे
0: जी,
1: हमारा प्रॉपर दोनों बुक्स पे कमांड होना चाहिए?
0: हमें पहले अपनी एनसीईआरटी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे हमें हर एक चीज समझ में आए, क्योंकि एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत सफिशियंट है, मतलब बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपका एनसीईआरटी पे कमांड अच्छा हो जाए तो आप रेफरेंस बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। रेफरेंस बुक की हेल्प सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्विंग में ले तो वो ज्यादा अच्छा है। एनसीईआरटी को हमें पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए किसी भी चीज में।
1: ओके, तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि रेफरेंस बुक का ज्यादा हेल्प लेना है या पीवाईक्यू के लिए? मैंने देखा है अक्सर करके बहुत सारी बुक्स आती हैं अलग अलग पब्लिकेशंस की, तो बच्चे ना मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पीवाईक्यू सॉल्व करें या, अगर मैं सारे सब्जेक्ट की ही बात कर रही हूं, तो पीवाईक्यू पे ज्यादा जोर देना सही है या फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम रेफरेंस बुक से सॉल्व कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है?
0: मैं अपने ओपिनियन से जो बताना चाहता हूँ कि PYQ ज्यादा क्वालिटी देता है रेफरेंस बुक के कंपैरिजन में। PYQ हमारे लिए ज्यादा जरूरी है लगाना, और एक टाइमर फिक्स करके लगाना जरूरी है, जिससे हम अपने आप को समझ पाए, एनालाइज कर पाए अपने आप को कि हमें और कितनी मेहनत करने की अभी जरूरत है। तो PYQ बेटर है देन द रेफरेंस बुक।
1: ओके, और लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, काफी ज्यादा प्रेशर होता है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो ऐसे में आप अगर मैं अपने लिए भी टाइम निकालना चाहे, अपने लिए भी क्वालिटी टाइम निकालना चाहे, आपके हॉबीज होंगे या फिर जो भी आपका फेवरेट कुछ भी ऐसा पार्ट हो, तो उसके लिए आपका क्या मतलब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे?
0: 10th में प्रेशर तो काफी होता है कि अच्छे मार्क्स लाना है हमें, तो उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत भी करनी होती है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपना थोड़ा टाइम बिताना जरूरी माना, क्योंकि प्रेशर कम करना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वैसे भी हम लोग काफी एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर झेल रहे होते हैं। इस वजह से मैंने अपने फ्रेंड्स से काफी बातें की, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, तो जिससे मेरा थोड़ा प्रेशर कम होता है।
1: बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में ज्यादा बिलीव करते थे।
0: जी
1: और ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि बाकी जो 10th के आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपने 10th की प्रिपरेशन के लिए और आगे फ्यूचर के लिए किस तरीके से रूटीन को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए?
0: अपने राइटिंग प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, और उन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कभी भी हम लोग लास्ट में एग्जाम में पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, ये एक मिथ है। और हमें अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमें फर्स्ट डे से ही कंसिस्टेंट रहना होगा अपने पढ़ाई पे, तो जिसके वजह से हम एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है हमें, कॉपी नीट और क्लीन।

0: लिखनी है, उसमें हौच पौच नहीं करना है, और टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए, लेंदी होना वो जरूरी नहीं है।
1: तो वंश, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारियां हमसे शेयर की, और वाकई मुझे लगता है कि ये बातचीत सुनकर वो सभी श्रोताओं को भी बहुत मदद होगी जो आने वाले भावी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं।
0: थैंक
1: धन्यवाद
0: यू।
1: आपका। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी वंश श्रीवास्तव से हमारी ये बातचीत, और इसका विषय था बोर्ड परीक्षा में सफलता का मंत्र। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ अब रोजगार के लिए क्या क्या मंत्र हमारे प्रोग्राम में आपके लिए होने वाले हैं, यानी आज की रोजगार सूचना क्या है वो जान लेते हैं।
2: तो हमारी आज की रोजगार सूचना आपके लिए ये है कि रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तकनीशियन पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती 6,500

0: के लिए अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती 6,557 रिक्तियों के लिए की जा रही है और इसकी अंतिम तिथि आज यानी 29 जुलाई 2026 को है।
1: तो आज इसकी अंतिम तिथि है। तो भैया अंतिम तिथि तो खत्म होने की कगार पर आ गई है, क्योंकि शाम हो गई है। आप इतना कर सकते हैं कि यदि आपने आवेदन कर लिया है तो जम करके इसकी तैयारी में लग जाइए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी indianrailways.gov.in पर जा करके ले सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो भी तैयारी है उसको आप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम का भी अब समाप्ति का समय पास आ रहा है, हमारे जाने का भी वक्त आ रहा है पास, लेकिन इतना जल्दी अभी हम स्टूडियो छोड़ के नहीं जाएंगे भाई, अभी और भी बातचीत हमें आपसे करनी है। सबसे पहले तो भाई मैं भूल गई अपराजिता, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे बताना
0: बिल्कुल
1: है। तो चलिए डायरी और पेन के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे।
0: तो ध्यान से सुनिएगा, आज का हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के तहत दो उपयोजनाएं कौन सी हैं। फिर से सुनिएगा, प्रश्न है अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के तहत दो उपयोजनाएं कौन सी हैं।
1: और इसका सही जवाब आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यानी यूथ ए आई आर वाराणसी पर जाकर, या फिर हमारे ईमेल के पते पर यानी यूथ ए आई आर वेनिस पर जाकर के फटाफट से भेजिए, और बनिए हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर। अगर में आप हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के जवाब में कहीं चूक गए और विनर बनने से पीछे रह गए, तो आज का सुनहरा मौका आपको नहीं छोड़ना है। आज इसका जवाब आपको हमें लिख भेजना है और हमारे कल के कार्यक्रम में अपने नाम को सुनने के लिए तैयार रहना है। क्यों?
0: बिल्कुल
1: और बिल्कुल भैया, अब जो हमारी स्टूडियो की क्लॉक है ना, अब उसने एकदम इशारा देना शुरू कर दिया है कि अब टटा बाय बाय हमें कर देना चाहिए। लेकिन जाते जाते आपसे हम ये कहेंगे कि भाई मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनी जो भी भावी परीक्षाएं हैं, जो भी तैयारियां हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं आप अपने लिए तैयार करने के लिए खुद को हर दिन सोच रहे हैं, उसके लिए अपना एफर्ट डालते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा युवाणी कार्यक्रम सुनते रहिए, और इसे आप अपनी प्रतिक्रियाओं के थ्रू हमें बताते भी रहिए कि कहाँ कहाँ पे हमें चेंजेस करने चाहिए और क्या सुधार हमें करना है। क्यों लगता है ना?
0: हाँ बिल्कुल, आप हमें उसी इंस्टा आईडी यूथ ए आई आर वाराणसी या मेल पर आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं हमारे प्रोग्राम का।
1: बिल्कुल। और आज की ये दो रेडियो साथी यानी कि मैं नेहा
0: और मैं प्राजिता,
1: का नमस्कार, और आपको अलविदा करते हुए ये गीत भी।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं हमारे गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। लोकसभा लोक परीक्षा अंचे साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज पारित कर दिहलस। ये विधेयक लोक परीक्षा अंचे साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करेला।
1: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
0: लोक परीक्षा अंचे साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 में कई गो खास प्रावधान शामिल कर गयल बा।
3: विधेयक के तहत लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन का दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।

0: गुरु पूर्णिमा का त्योहार आज पूरा प्रदेश में रिवाज के मुताबिक उत्साह के साथ मनावल जा रहा हो। ए मौका पर श्रद्धालु अयोध्या के साथ ही प्रदेश के कई जिलन में पवित्र नदियन में नहा के पूजा अर्चना कैले। गोरक्ष पीठाधीश्वर आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ के नाथ पंथ के रिवाज के हिसाब से खास पूजन कैले।
1: गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ, दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, योगीराज बाबा गंभीरनाथ समेत नाथ पंथ के सभी गुरुजन की भी विधि विधान से पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ को रोट का महाप्रसाद भी अर्पित किया गया। पूजा अर्चना की आनुष्ठानिक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद गुरु पूर्णिमा पर होने वाली परंपरागत सामूहिक आरती हुई तथा सभी गुरुओं के प्रति आस्था निवेदित की गई। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में ए आषाढ़ी पूर्णिमा पर महापरिनिर्वाण मंदिर में बौद्ध भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के चीवर चढ़ोन साथ ही विशेष पूजा अर्चना कई के विश्व के कल्याण आ शांति को कामनु कैन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में 23 जुलाई से चल रहल श्री राम कथा के समापन सत्र आ गुरु पूर्णिमा महोत्सव के संबोधित कैन। ए मौका पर वहां के लोगों से अपील कैने कि लोग देश के प्रगति जत्रा में बाधा पैदा करे वालन से सावधान आ सतर्क रहें। मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ल कई गो खास बात लोगों से साझा कैने।
2: राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से श्रीलंका भी भूत है। वो इस बात पर गौरव की अनुभूति कर रहा था कि देखिए प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में फिर से बनकर के तैयार हो गया है और उसके लिए वह अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर हमें देख रहा था कि अलग अलग नदियों का जल, अलग अलग प्रदेशों की मिट्टी और दुनिया के अंदर से भी वह हर देश जो भारत का शुभचिंतक है वह भारत के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेज रहा था। याद रखना, भारत की यात्रा भारत को अपने बल पर आगे बढ़ानी पड़ेगी। व्यक्ति हो या समाज, उसका अपना अस्तित्व तब है जब उसका देश का अस्तित्व है।
0: आज विश्व बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ए मौका पर वन्य जीव प्रेमियन की शुभकामना दे रहे हैं। प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह बतौले की बाघन के संरक्षण के प्रति लोगों के जागरूक करे बदे हर साल ये दिवस मनावल जाला। मौसम विभाग प्रदेश के पश्चिमी जिलन में 2 दिन ले भारी बरखा का चेतावनी दे ले हो। ए बीचे गोरखपुर और इकरे लगे के कई पूर्वी जिलन में आज दिन में तेज घाम रहल आ बादरन को आवाजाही बनल रहल। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे होगी संसद समीक्षा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:15 पर सुनेगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की 44वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर आशुतोष, प्रस्तुति दिलीप यादव और संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा की होगी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 सुनेगा डॉक्टर रामशंकर का गायन। अंजुमन कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:30 पर। अंग्रेजी कार्यक्रम में सुनेगा शाम 7 बजे टॉक द लिटरेसी लिजेसी आप मुंशी प्रेमचंद, टाकर होंगे डॉक्टर सुप्रिया सिंह। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनेगा अनुभव खेती में विषय पर डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव से सतीश कुमार यादव की बातचीत। साथ ही साथ किसान भाई सुनेंगे नंदलाल यादव और साथी का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में

और रात्रि 10 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब कल दिनांक 30 जुलाई सन 2026 दिन गुरुवार के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल शाम 4 बजे सुनेगा संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम। संसद समीक्षा होगी कल रात्रि 8 बजे और कल रात्रि 10 बजे सुनेगा संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये सभी कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल रात्रि 10:30 सुनेगा विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। कल सुबह 7:31 पर और कल दिन 12:45 पर इसी कार्यक्रम में सुनेगा डालिया मुखर्जी का गायन। कल प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में ओसरीली भूमि में वृक्षारोपण विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। कल प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जल जनित रोग कारण और समाधान विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राजेश जैन।

श्रीराम चरित मानस से संगीत में पाठ सुनिएगा कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस होगा कल सुबह 7 बजे। मधुरिमा सुनिएगा कल सुबह 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर और कल दिन 1:45 पर कलाकार होंगी डॉक्टर ज्योति सिन्हा। इनके गाय लोकगीत आप कल शाम 6:30 पर केशगत कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। साथ ही साथ केशगत कार्यक्रम में आप सुनिएगा पशुओं में सर्रा बीमारी कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर मनीष कुमार से सतीश कुमार यादव की बातचीत। कल शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आकर्षण होंगे आज की बात मेरी पसंद यू टायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। उमिया कार्यक्रम में कल दिन 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी चर्चा गीत संगीत और बालिका शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा का महत्व विषय पर शैली श्रीवास्तव से बातचीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल दिन 12:30 पर कलाकार होंगी स्नेहा अवस्थी। धरती के गीत कार्यक्रम में कल शाम 5 बजे सुनिएगा बघेली गीत। ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ताजमहल का एक गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीतकार रोशन।

अभी आप ताजमहल फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। अब आइए लता मंगेशकर की आवाज में सुने फिल्म मेरा गांव मेरा देश का एक गीत। शब्दकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम मेरा गांव मेरा देश।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम सम्प्रसारित करेंगे।

0: पंचो राम राम।
1: का हो भोला भैया, का हाल चाल बाय?
0: बुझान भैया हाल चाल तो सब निमन बाय, अपन सुनावा का हाल हो।
1: ये बोला भैया हमरो हाल चाल बढ़िया बाय, और खेती किसानी में का होत बा भैया?
0: देखा बुझान भैया अपने खेती किसानी में धान के समय से रोपाई हो गल बा, और साथे साथे धान में अपन पहली खाद भी हम दे देले बाड़ी।
1: अच्छा, बहुत सजग किसान हुआ भोला भैया।
0: काहे ना भैया।
1: अच्छा भोला भैया, ये तो बड़ा बढ़िया काम कैले बड़ा कि समय से अपन तू खेती बाड़ी कह के आ समय से तू अपन पहली खदियो डाल देले बड़ा। तो हम तो समझत बाड़ी कि अगले बगले के जौन भी किसानन के धान हुई उसे तो तुम्हार धान बढ़िया लहरात हुई हो।
0: बुझान भैया हम बुझत हैं धान तहूँ धान अपन रोपाई कई दिले बार खाद उद, क्या कि तहूँ एक चतुर किसान हुआ और खाद उद देले के बाद ना देखा हम तो बुझत है कि मेला वाला घूमे के मन तू बनावत हुआ।
1: ये देखा भैया, हम जैसे तू कहला ना कि हम अपन खाद पानी दे दिले बाड़ी पहला ना, तो हमहूँ खाद पानी दे करके हमहूँ एकदम खाली हो गेल बाड़ी।
0: होए के भी चाहिए।
1: आ हमरे बात के तू बुझू गईला हा? अच्छा जौन तू बात बुझला ना बड़ा भोलापन से बुझला, ये बदे कि तुहार भोला नाव हो।
0: बिल्कुल सही कहला भैया। देखा हर मने के ना कोनो बात बूझ बूझ के बोले के चाहिए, जैसे तुम्हार नाम बुझा।

0: ना तू बूझ बूझ के बोलला हो भैया, ऐसे हर मने के ना कोनो बात बूझ के ही बोले के चाहिए।
1: ये भैया बात भी बूझे, अब बात बुझले में भोलापन भी होए के चाही। हाँ, आ वो भोलापन तोहरे में हो भोला भैया। अब भोला भैया, जवन तू मेला का नाव लेला है ना, तो तू जानत हुआ आज हर जगह गुरु पूर्णिमा का मेला लगल बा है। आ भैया बड़ा आज तो जाम रहल है, अब भागत परात पंचायती में भाई तो जरूरी है ना बा।
0: तो देखा जोन बात कहला ना
1: हाँ
0: बुझान भैया
1: हाँ
0: कि हर जगह भीड़ भाड़ रहल है, तो देखा आज जोन गुरु पूर्णिमा का दिन हो,
1: हाँ
0: एकर अपने जीवन में अपने
1: हाँ
0: समाज में बड़ा महत्व हो।
1: अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कहला भैया। देखा भैया, आगे बढ़े बदे ज्ञान हो चाहे खेती बाड़ी के कोनो काम हो, बिना कोनो गुरु के आदमी आगे नहीं कर सकत।
0: बिल्कुल भैया, देखा जो कहल गल हो बुझावन भैया कि जो मिट्टी जो कच्ची मिट्टी का जो रूप होला वो बच्चन का होला, बाल्यावस्था का होला, तो ओके सींचे खातिर ओके सही से आकार देवे खातिर पहले तो देखा अपन जोन माई होली वो अपन पहला गुरु होनी,
1: कितना
0: काहे
1: बढ़िया
0: कि
1: बात
0: जो
1: बतेला
0: हमन
1: भोला
0: के
1: भैया।
0: जन्म दे के संसार में लायल ही, और हम लोग के जब कुछो ना आवला, जब हम लोग आ ऊ करी ला जा, तब वो देखा वो जो माइये होलिन कि अपने प्यार से वो सब समझ जानी कि अभी हमरे बचवा के का चाही।
1: ये भैया, ये तो बिल्कुल बात सही कहला है, जो पहली गुरु बाणी माई बाणी,
0: बिल्कुल भैया,
1: आ माई का जरूर सेवा करे के चाहिए
0: बिल्कुल,
1: भाई। अच्छा एक बात और बोला भैया,
0: हाँ बुझाउन भैया।
1: आज तो बाय गुरु पूर्णिमा, आज गुरु का बखान तो बटली बा है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा एक चीज़ और है, जौन हमहन खेती किसानी जौन कैल जाला भैया ना, तो खेती किसानी में भी अपने तरह तरह का बड़ा बढ़िया बढ़िया गुरु बाणा। अब जेकर खेती किसानी बड़ा बढ़िया होत बा, जेके कहल जाला प्रगतिशील किसान बाणा, तो उनसे ज़रूरत पड़े तो खेती किसानी का माटी का या कौनो प्रजाति लगावे के बा, तो अगर जानकारी हमें लेवल जाला, तो
0: बिल्कुल।
1: भैया उनके भी खेती किसानी के गुरु कहे में कौनो
0: और
1: परहेज नहीं
0: देखा
1: का भैया।
0: अपन जोन बूढ़ पुरनिया हुआ भी ना, जो
1: हाँ
0: ज्ञानी लोग हुआ
1: हाँ
0: वो देखा बड़ा उत्साहित रहलन अपन ज्ञान देवे खातिर बतावे बदे।
1: हाँ ये तो
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया बात कहला है। उनकर ये मन रहला कि भैया हमरे पास जौन ज्ञान बा, कोई पूछी तो हमन
0: हम
1: ओके बतावल
0: बताई
1: जा।
0: बाटी ताकि लोगन
1: हाँ
0: का फायदा हो सके।
1: अल्लेवे के भी चाहिए।
0: हाँ तो ई तो बिल्कुल सही बात कहला हो बुझाउन भैया, जब गुरु को बात कहला है ना तो देखा आज देव गुरु पूर्णिमा, और गुरु का मतलब अज्ञान का अंधकार दूर करे वाला और शिक्षा का प्रकाश दे के हम लोग के जीवन में शिक्षा रूपी प्रकाश पैदा करे वाले अपन गुरु ही होला।
1: बिल्कुल सही कहला भैया। अब बोला भैया कितना बढ़िया बात बतौला है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होला, आ ज्ञान नहीं रही तो कोनो काम कैसे होई,
0: बिल्कुल ना
1: पढ़ाई
0: हो
1: लिखाई हो चाहे खेती बाड़ी
0: बारी
1: हो। बोला भैया यही से गुरु के भगवान से भी ऊपर का दर्जा देवल जाला,
0: बिल्कुल
1: और
0: भैया।
1: कहल भी जाला, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पाँ, बलिहारे गुरु आपने जो गोबिंद दियो बताए। मतलब गुरु और भगवान दोनों एक साथ ही अगर खड़ा बाणा, तो पहले गुरु का चरण छुए के चाहिए, काहे से कि यह गुरु भगवान की अन जाए का रास्ता बतावन भैया।
0: बिल्कुल सही कहला हो बुझाउन भैया, यही से कहल जाला कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई।
1: अच्छा बहुत बढ़िया भैया बतौला है भाई, गुरु को महिमा अपरंपार है,
0: बिल्कुल।
1: और कम से कम साल भर में एक बार गुरु के महिमा के पूजय का, उनके सम्मान करे का ये दिन आवला, और हम सबकर धर्म बना लगे भाई गुरु का सम्मान भी करे के चाहिए और पूजा भी करे के चाहिए।
0: कहे देखा अपन जोन गुरु हो ना
1: हाँ भैया
0: वो उनके ध्यान में उनके नज़र में कोई छोट बड़ ऊंच नीच ना होला, वो देखा एक अपने नज़र से अपने अपने छात्र के अपने बच्चन के ज्ञान की ओर बढ़ावा ना। तो भाई आज का जो दिन हो ना गुरु पूर्णिमा का, एकर महाती ना ऐसा ही ना हो, ई पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चला लावा था बुझावन भैया।
1: ये भोला भैया जो ये बात बतौला ना, यह असली और बढ़िया गुरु का श्रेष्ठता पा है।
0: बिल्कुल।
1: ये बदे कि भैया जोन गुरु हो ना, चाहे देखा स्कूले में जोन मास्टर साहब बाणे लोगों जोन पढ़ावत लिखावत बाणे, तो वो जोन लड़का तेज बा पढ़े में, वो आ जन तनी कम
0: कमजोर
1: तेज कमजोर
0: कमजोर
1: बा,
0: बा
1: तो दोनों के समान वो ध्यान
0: ध्यान
1: देवल
0: देला और तरासन।
1: तरासन है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल कितना बढ़िया बात जोन बतौला भैया। साथ ही साथ ही जानत हुआ, गुरु

0: भी जैसे एक बात कहला ना कि वह पहला गुरु हमार माई है,
1: माई है,
0: हाँ, और दूसर का गुरु हम जिसे धरती माई कह
1: माई है
0: उपमा
1: कहने
0: देवल
1: भाई,
0: बोला, काहे से कि भैया जब हम चले सीखली जाए तो ये धरती माई पर रहता
1: माई
0: है
1: पे
0: काहे
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल बुझाउन भी है,
0: आ तीसरा गुरु भैया गुरु की कहल जाला,
1: गुरु कहल जाला।
0: और भैया चौथा गुरु जौन हुआ वो भैया हमन का बाणा जी ज्ञान दिले बा।
1: ज्ञान दे ले इतने ना बुझाउन भैया, अपन ये गुरु जो धरती पे हमन के लायल हुआ, अपन पिता जिनकर उंगली पकड़ के हम लोग चलल है
0: चलल
1: और चले
0: सिखले
1: सिखले
0: गए।
1: है।
0: एक चीज और भैया, बिल्कुल बोला भैया, कितना बढ़िया बात बतौला है। सच्चे समाज के निर्माण देखा सच बताई गुरु ऐसे बोले।
1: गुरु से बोला बिल्कुल। और गुरु गुरु के साथ
0: गुरु के साथ जोन भैया ना, अगर उनकर सम्मान कहके उनके बात की मान करके अगर आदमी कोनो भी काम करे तो वो सिर्फ आगे बढ़ी भैया।
1: बिल्कुल बुझावन भैया, गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति का ना एक सनातन चेतना के उत्सव जगाए वाला एक पर्व हो, और ज्ञान और संस्कार सत्य और मानवता के साथे साथे जीवन में प्रकाश फैलाए का ही पर्व हो।
0: बिल्कुल परम भैया। आज एक चीज और है, इसे समाज के निर्माण भी होला, ये बदे गुरुजन के प्रति अपन आभार व्यक्त करे के दिन हो जीवन गुरु हमन के जीवन में दिशा और दृष्टि बदलना। माने हमन के कोनो चीज के ज्ञान नहीं रहे तो गुरु भाई बताऊ ना,
1: बिल्कुल
0: यही से कहल जाला गुरु उस शक्ति हुआ जीवन केवल अक्षर का के ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जिये का कला भी सिखावाना।
1: बिल्कुल सिखाओ ना तो बुझान भैया,
0: हाँ बोला
1: एका
0: भैया,
1: बात बत कही अपने खेती किसानी के आगे भी होई,
0: बिल्कुल हो भैया,
1: बाकी ऐसे पहले ही संदेश हो एके पंच लोगन के सुनवा देवल जाए।
0: बिल्कुल सुना दो भैया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: बुझाउन भैया,
1: हाँ भैया
0: लेकिन सनेस तो होगल,
1: बिल्कुल होगल भैया,
0: अब अपने खेती किसानी की ओर चलल जाए।
1: बिल्कुल चलल जाए भैया।
0: तो अनुभव खेती में कृष्ण कुमार यादव और सतीश कुमार यादव भैया के नगद के बत कही हो, पंच लोग भी सुने और हम लोग भी ध्यान
1: बिल्कुल
0: से सुनल
1: सुनवाए
0: जाए।
1: दो भैया।
2: किसान भाई लोग, हमनी लोग अपने बीच में रह रह के कहल जाओ कि कोनो न कोनो जे प्रगतिशील किसान है ओके अपनी पंचायती में बुलावे नहीं जा, ताकि भाई उनके भी ये मौका मिले कि वो अपन जो खेती करत हुए और वो खेती में कितना बढ़िया लाभ कमाते ना किसान भी उनके बता भी सकें। तो ऐसने में कृष्ण कुमार यादव जे की नगवा नवापुरा पोस्ट फतेहपुर अटवा जिला गाजीपुर के रहे वाला हुआ, आज उनके हमनी का अपनी कार्यक्रम कृषि जगत पे बोले ले हैं जा और उनसे आज जानल जी कि उनकर खेती में का अनुभव है। तो सबसे पहले कृष्ण कुमार जी, आपका हमनी की कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
3: जी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद आपको।
2: तो सबसे पहले आप हमारी किसान भैया उनके ये बताएं कि भाई ऐसे में तो मुख्य फसल धान का है,
3: जी जी
2: लोग धान का तैयारी में हुआ,
3: हाँ,
2: तो
3: हाँ।
2: आप का धान में तैयारी कैले हैं और कौन कौन धान के लगावे के सोचले हैं या लगावत हैं?
3: हमन का धान का खेती में चिंटुआ एगो धान बा, महीन धान होला जो खाए में बड़ा स्वादिष्ट होला, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगेला।
2: अच्छा।
3: तो चिंटुआ धान का जो बा अब रोपाई का तैयारी होता, बीया पड़ गई बा खेत में, और एगो कुबेर धान होला।
2: अच्छा।
3: तो कुबेर धान थोड़ा कम समय में होला, 110 दिन का लगभग होला।

0: कुबेर धान, चिंटुआ धान और एगो श्री राम धान।
1: अच्छा,
0: ये तीनों धान का हमन का बिया डल्ले बट जा, अब ओकर रोपे का तैयारी।
1: तो कितना खेत में आप धान लगावे नी?
0: 6 बीघा का लगभग धान लगाई ले जा।
1: अच्छा, 6 बीघा का। तो जेवन आप चिंटुआ का बात कर और देखे में महीन है, खाए में स्वादिष्ट है, तो हमारे किसान भैया उनके बताएं कि ओकर आप कैसे बेहन डालने हैं और ओकर कैसे ओकर देख रेख करे लोग कहें से कि वो थोड़ा ज्यादा दिन में आप कहते नहीं है कि ओकर पैदावार होले, तो ओकर ही बारे में बताए किसान भैया उनके।
0: देखिए चिंटुआ धान का बिया डलला से पहले हमन के खेत के बढ़िया से जुताई कर ली जाए। जुताई करेला के बाद जितना घास उमन रहे के बीन के और खेत से निकाल दे ली जाए। ओकरे बाद जैविक खाद और कुछ सड़ल गोबर का खाद वो खेत में डाल के और खेत में मेढ़ी बना के और मन पानी का हमन के लेव लगा ली जाए। जब पानी का लेव लग गई तो बांस का हेंगी बना के आ हेंगी सो के हेंगा के ताकि जो ढेला रहे वो फूट जा, आ हेंगा के और बाद छिड़काव विधि द्वारा उमन बिया छिड़क लीजिए।
1: मैंने बिया का बेहन डालनी
0: जी जी, जिसे आज बेहन पड़ गई तो अब कल जो पानी नहीं खे चलाओ के।
1: अच्छा।
0: नहीं तो पानी अगर चली तो बिया उखड़ जाए। कल के बाद 1-2 दिन के बाद उमन पानी चलावे के चाहिए, जिससे बिया जब इस समय डाली ले जा उस समय बड़ा गर्मी होले तो 2 दिन पर पानी जो बार डाल के चला के आ फिर करीब बाद शाम का पानी चलाई ले जा ताकि रात भर ठंडा रही, सुबह पानी ना चलाई ले जा। सुबह अगर चलाओ के तो दिन के इतना सूर्य का गर्मी बा कि बिया जल जाये।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे शाम का पानी चला के रात भर ठंडा ही रहेला और बिया बढ़ेला।
1: ये बताइए हमारे किसान भैया उनके कि आप तो रोपाई अब करे जाते हैं
0: जी,
1: तो रोपाई से पहले वो में का तैयारी कैले हैं, जैसे खाद का या हरी खाद का भी कोनो व्यवस्था कैले हैं?
0: जी जी, हरी खाद खाते हमन के ढैचा बोले बट जा जो लगभग 4 से 5 फुट आ गई बाई समय।
1: अच्छा,
0: अब 15 दिन के बाद उसे बढ़िया से कटवा के तावा से कटवा के आ 2 गो पानी चला के बढ़िया से जुताई करा के और गोबर का सड़ल खाद डलवा के तब ओकर बाद धान का रोपाई करा के।
1: तो मैंने कि आप ए विधि से
0: जी
1: धान का रोपाई करवानी।
0: हाँ।
1: अच्छा, धान रोपला के बाद उमें का देख रेख करे के रहेला?
0: अब धान रोपला के बाद जिसे धान जिसे जिसे पानी दियाला बढ़े लगेला, समय समय पर जोन बा उमन उर्वरक खाद का प्रयोग होला, ओकरे बाद पानी समय समय से देवे के पड़ेला।
1: अच्छा, एगो और बात बताई हमारे किसान भैया उनके कि इतर रहल अपने धान के बाद कोनो साग सब्जी कभी आप खेती कैले हैं?
0: जी जी, ये समय लौकी का करेला का हमन के खेती कैले बाटी।
1: अच्छा,
0: भिंडी का खेती बा?
1: अच्छा, भिंडी का खेती बा, कैसन पैदावार होइल बा आपका?
0: देखिए भिंडी का खेती हमन के फरवरी और मार्च में कैले जा और इस समय जोन बा ओकर तोड़ाई होता।
1: अच्छा,
0: बहुत अच्छा भिंडी निकलता।
1: तो का ओकर तोड़ाई ओकर पहले बुआई के बारे में बताए कि आप तो कहते हैं कि फरवरी और मार्च में बोले हैं, तो ओकर कोनी विधि से बुआई कैली?
0: देखिए ओकर बुआई जैसे खेत के बढ़िया से जोतवा के मिट्टी जब भुरभुरी हो गई तो उमन लगभग 1 फुट पर लगभग 1 आंगुल नीचे बिया के हमन के गड़ लिया खुरपी से और धीरे धीरे धीरे धीरे जब 2-3-4-5 दिन के बाद उमन पानी देवे लगल जा। धीरे धीरे जब ऊपर आवे लगल तो मन एगो रोग लगेला जो पतई जाली जाली नियर हो जा, पीला हो जाला, तो ओकर समय समय पर दवा का छिड़काव द्वारा वो रोग से हमन के निजात पा सकेला।
1: अच्छा, तो को दवा का छिड़काव कब करनी आप, सुबेरे की शाम के?
0: नहीं, शाम का।
1: अच्छा, शाम के करेंगी। सबसे पहले तो ये हमारे किसान भैया उनके बताई आप कि ओके कैसे जाने नहीं कि अब तोड़े लाखा, कभी कभी तो बाजार में देखे के मिलेला या बहुत सारे किसान से सुने के भी मिलेला कि कई गो रोग लाग गई है, कई गो कीड़ा लाग गई है, या कभी कभी कड़ा भी हो जाले भिंडी, किसान भैया उनके ना समझ में आवला, तो ओकरे बाद आपका का तैयारी रहेला कि आप कैसे जाने नहीं कि अभी समय हो गई तोड़े का?
0: देखिए भिंडी जैसे आज तुड़ाई हो गई तो आज का बाद कल तोड़ाई ना हुई, अब फिर परसों तोड़ाई हुई।
1: अच्छा,
0: और भिंडी का जाने खातिर की कड़ा हो गई बा कि नरम बा, जब ओकर भिंडी के लिए बा पुलुई तोड़म तो अगर नरम रही तो तुरंत टूट जाये, अगर कड़ा रही तो मुरुक के रह जाये।
1: अच्छा,
0: वो टूटी ना। हाँ, और 1 दिन का आकर देखे तो भिंडी का तोड़ाई होला।
1: अब करेला के खेती के बात करते हैं तो ओकर बुवाई आप कैसे करे जाते हैं?
0: जी करेला के खेती के जोन बा हमन के बुवाई जून और जुलाई में, वर्षक जून में होला खेती जोन के हमन के कैले बाटिया। और एक एकड़ में 5 से 6 टाली सड़ा गोबर का खाद
1: अच्छा
0: गिरा के और बढ़िया से जोतवा के ताकि ओमन जोन बा घास तनकु ना रह जाए। और जोतवैला के बाद जोन बा

0: 2 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा मेढ़ बनाई ले जा।
1: अच्छा,
0: मेढ़ बना के उमन करेला गाड़ी ले जा। करेला का पौधा जब बड़ा बड़ा थोड़ा हो जाला एक बित्ता का लगभग,
1: तो सिंचाई का विधि आप अपनावनी?
0: तो सिंचाई का विधि बना के जब मेढ़ हमन के बना दे ले जा, मेढ़ का बगल से पानी जाला ताकि नीचे से नमी पाके पौधा बड़ा होला।
1: अच्छा।
0: अगर करेला का बीज अगर डूब जाए पानी में तो सड़ जाला बीज।
1: अच्छा
0: जी, यही मेड़ बना के खेती कर ले।
1: देखे मैं आओ तो कि कई किसान भी है लोग टपक विधि का भी प्रयोग करे ना, आप भी का एकर प्रयोग करते हैं?
0: ना, हमने कभी नहीं।
1: अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे एकर पौधा जम जाए तो ओमे का देख रेख करे के रहेला?
0: हाँ, जब एकर पौधा धीरे धीरे बड़ा होके लगेला, मान ली 2 फुट 3 फुट का हो गयी, तो जितना पौधा हमने का लगेले बाटी जा वो पौधन के सामने बांस गाड़ी ले जा, और बांस गाड़ के जब पूरा चारों तरफ से खेत में बांस गाड़ा जाए जितना पौधा लगल बा, अब ओकरी ऊपर जाली डाली ले जा। जब जाली डाल देवे के तो अब वो पौधा जन बा वही बांस का सहारे, पौधवा के बांस का सहारे ऊपर जाए लगे।
1: ये जो तनी हम आपके रोकब, जिससे आप कहते हैं कि बांस गाड़ के जाली लगा के ओके ऊपर चढ़ा नहीं जाए, तो ये प्रक्रिया लोग कब करें? मतलब पौधा कितना बड़ा हो जा तो ये प्रक्रिया के लोग अपनावे?
0: हाँ, तो एकरा खातिर 3 से 4 फुट का जब पौधा हो जाला करेला का, तब हमनी का जाली लगा के और मचान विधि द्वारा एक देख रेख कर लिया जाए।
1: तो आप कहते हैं कि मचान के ऊपर करेला चढ़ जाता है, तो उसमें फल कितना दिन पर लगेला?
0: उमन फल 30 से 40 दिन में लगे लगेला।
1: अच्छा, छोटे छोटे फल दिखे लगे?
0: जी, दिखे लगे। जब हमन का बोई ले जा तब से लेके आज जब 55 से 60 दिन में पौधा जो बा फल देवे शुरू कर देला।
1: अच्छा, आपको तोड़ाई कैसे करनी है?
0: आपको तोड़ाई जो बा जिसे मान ले गांव में खांची बा धामा बा, वही खांची धामा में जो बा तोड़ाई होला, तोड़ के फिर बोरा में भर के मंडी में भेजल जाला।
1: हाँ। अच्छा, ये बताई कि ओकर भी कैसे आप समय जाने नहीं कि अभी तोड़े लाख हो गई ला?
0: जिसे न बहुत ज्यादा छोटा रहे न बहुत ज्यादा बड़ा रहे। हाँ, और जब वो पौधा खराब होके लगेला जिसे कड़े कड़ा होके लगेला तो ओमन पीलापन आवे लगेला, तो पीलापन जब आवे लगे तो पौधा समझ ले कि खाए लायक नहीं थे फल।
1: अच्छा, तो कृष्ण कुमार जी, आप ही हमारे किसान भैलोन के भी बताई कि जैसे अब तो भाई आप हैं प्रगतिशील किसान, जैसे कहते हैं आपकी धान का भी खेती कर ले हैं, भिंडी भी, मैंने साग सब्जी में भिंडी करेला लौकी ये सब का भी खेती करेनी, तो आप एकर बीज का चुनाव कैसे करेनी, कैसे जाने नी कि हाई बीज हे वाली खेती में या ये समय तो के जोन भी खेती में लगावे के है तो ओकर कैसे आप चुनाव करेनी, ये बताइए मेरे भैया।
0: समय समय पर हमन का गांव में जो किसान वैज्ञानिक जो होला वो आवेला और चौपाल लगेला, और जितना हमारे गांव का किसान भाई बाटा वो किसान भाई वो चौपाल में जाला, और जो कृषि वैज्ञानिक जी लोग जिला से आवेला वो हमन के बतावेला कि कौन पौधा कौन समय लगावे के चाहिए ताकि उमन अच्छा पैदावार होके।
1: अच्छा, मतलब आप जागरूकता भी अपनी संगे संगे लेके चले नी, और जैसे भी जहाँ भी चौपाल वैज्ञानिक भैया उनका लागेला आप वहाँ समय से पहुँचे नी और जानकारी लेनी। अच्छा, और भी कोनो खेती कैले हैं?
0: जी, इस समय गन्ना का खेती भी बा।
1: कितना खेत में आप खेती कैले हैं गन्ना का?
0: गन्ना का खेती 3 से 4 बीघा बा।
1: अच्छा
0: जी,
1: मैंने 3-4 बीघा तो बहुत बढ़िया गन्ना का खेती आप कैले बानी, तो ओकर का विधि अपनावनी, कब ओकर बुवाई करावनी?
0: देखिए, गन्ना का खेती का मार्च से अप्रैल में हमने बुवाई कराई ला जा। जी,
1: मान ली ये समय तो भाई जुलाई चला था।
0: जी जी,
1: तो अब तो बड़े बड़े हो गई लोई?
0: हाँ, अब तो 2-2 फीट का हो गई बा।
1: अच्छा, तो उमे का कैसे होकर देख भैया, हाल कही नहीं है गर्मी में, और अब कहते हैं कि कितना बड़ा ऊंचाई बताओ तो नहीं है?
0: 2 फुट।
1: अच्छा, 2 फुट 3 फुट का हो गई ला,
0: 2-3 फुट।
1: तो उमे का ध्यान रखनी है, और कहा जाए उमे तो पानी और कोड़ाई भी संगे संगे चाहे ला, तक कितना कोड़ दे ले हैं?
0: अभी 2 कोड़ाई हो गई बा, गन्ना का 2 कोड़ाई हो गई बा और 3 पानी चल गई बा।
1: अच्छा
0: जी, तो और गन्ना इस समय जन बा बहुत अच्छा स्थिति में बा।
1: देखिए, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है।
0: जी, जी, जी।
1: और कहल जाओ कि कहल जाला वैज्ञानिक भैया लोग भी बताओ ना कि भाई गन्ना की खेती में बरसात को भी बड़ा ध्यान देवे के होला, कहे से कि कभी कभी खेती बड़ा नुकसान हो जाले, गन्ना गिर भी जाला, तो एकर का उपाय करनी आप अपनी खेती में?
0: अब एकरा खातिर जैसे गन्ना का हमने जब बोई ले जा तो गन्ना के 1-1.5 फुट का काट के और मेढ़ी बना के, जिसे आलू रोपाल जला वैसे ही मेढ़ी बना के गन्ना का हमने के बुवाई कर ले जा। वो मेढ़ी में गन्ना के अंदर गाड़ के डेढ़ डेढ़ फुट पर गन्ना को रोपाई होला।
1: अच्छा, हमार कहे का मतलब ये रहला कि जैसे अब जुलाई महीना चलत है
0: जी,
1: अब भाई इसमें बरसात भी होता
0: है,
1: ये बरसात से अपनी पौधा के बचाव खातिर क्या उपाय करनी?

0: बरसात से ही तो पौधा के फायदा बा,
1: अच्छा।
0: ओके बचावे के नहीं के, हमन जितने पानी गन्ना में जाई उतने गन्ना बढ़ी।
1: अच्छा, तो मान
0: हाँ
1: लिया अगर कभी कभी देखे में आवला कि भाई वो कहीं गिर न जाओ या
0: जी
1: गिरे न लगे, तो
0: हाँ,
1: ओकर का उपाय करेनी?
0: ओकर का उपाय करे के जैसे गन्ना जब बड़ा हो जाला और मोटा बात स्वाभाविक बात बाकी ओकर लोभ बढ़ जाए, तो ऐसा स्थिति में कभी बहुत ज्यादा जोर से जब हवा

0: में कभी जी बहुत ज्यादा जोर से जब हवा चले ले आप बारिश होला जोर से जब हवा चले ले तो जमीन जो बा एकदम जैसे नरम हो जाए।
1: हाँ कह लो कि पानी लग रहा सलसला जाता है चाहे पूरा ज्यादा गीला रहेला तो भाइयों के उलटला का डर रहेला
0: तब जैसे मान ली अब ओकरा खातिर पांच छह गन्ना के मिला के और एक में बांध दिले जा
1: अच्छा।
0: ताकि वो जनबा पांच छह गन्ना का जनबा सपोर्ट रहे गिर जल्दी ना।
1: अच्छा तो जब गन्ना तैयार हो जाता आप तो क्या घर पे ही पेराई करनी या मिल पे भिजवावेनी?
0: नहीं ओकर जैसे मिल बाटे अब घर तो उतना गन्ना पेरा पाई ना तो ओकरा खातिर उनके मिल में भेजवाल जाला।
1: अच्छा
0: और एक पेराई नवंबर और दिसंबर महीना में होला।
1: अच्छा तो मतलब एमे भी बढ़िया लाभ मिलेला आपके?
0: हाँ बढ़िया लाभ मिलेगा।
1: कृष्ण कुमार यादव जी आप प्रगतिशील किसान रहने आप हमारे किसान भैया लोगों के इतना अपनी खेती के बारे में बढ़िया जानकारी देने कि कौनी विधि से आप कौन खेती करी नहीं और कितना लाभ कमानी हमने की कार्यक्रम कृषि जगत में आपके आवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बोला भैया।
3: हाँ बुजान भैया
2: देखा कितना निमन और फरीज बतकही भईले पंचायती में अनुभव खेती में कृष्ण कुमार यादव अपन अनुभव सतीश कुमार यादव से बतौना है और हम किसान भाई सुनना है और एक चीज दिखला जौन कृष्ण कुमार भैया बतावत रहना कि देखा भैया जौन प्रजाति बा जिसे धान के कुल प्रजाति के नाम बतौना
3: हाँ।
2: तो प्रजाति जौन खेती बाड़ी जौन बा हमन किसानी बा भैया ना सारा व्यवस्था और ज्यादा उत्पादन लेवे बदे अगर प्रजाति बढ़िया है तो भैया उत्पादन बढ़िया हो
3: तो वही पे
2: भैया अगर चयन प्रजाति के बढ़िया हो गए तो भैया तुहार उत्पादन भी बढ़िया हो गए तुहार खेती भी बढ़िया हो गई और चार पैसा जेबे में भी आ गए भैया।
3: बिल्कुल
2: देखा भैया अनुभव खेती में कृष्ण कुमार यादव से सतीश कुमार के बत कही भैल भैया तो भैया खेती बाड़ी के बात तो हो गई और अब समझे थी मनमनसायन में आज का सुनवाओत बड़ा
3: देखा मनमनसायन में अपन नंदलाल यादव और साथी का किसानी गीत हो पंच लोग भी सुने और हम लोग भी सुने।
2: बिल्कुल सुनवा दे भैया
4: चला सहर छोड़ चली।

0: पर रखा हो जाना चाहे जेठा दो पहाड़िया।
1: बोला भैया कितना निमन लोकगीत भइल हुआ आ पंच भैया भी सुना मन सुना मन बड़ा गदगद भो गया नंदलाल यादव और साथी का। तो ये भैया अब काल का सुनवावत हुआ
2: बिहाने 6:05 पे होई देखा खेती का बात विषय रही उसरिली भूमि में वृक्षारोपण जेकर जानकारी दें दिनेश कुमार सिंह और सांझी के का सुनवा तो हो बुझावन भैया।
1: ये बोला भैया देखा सांझी के 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में बातचीत हुई पशुओं में सर्रा बीमारी कारण लक्षण और बचाव एक विषय में जानकारी दी है डॉक्टर मनीष कुमार और उनसे बात करी हैं सतीश कुमार यादव।
2: देखा भैया बात तो सब नगद कर निमन निमन भल क्या कि शुरुआते अपने गुरु से भेलो
1: बिल्कुल भैया
2: और गुरु के चर्चा पे भेलो
1: तो देखा भैया गुरु की महिमा तो बड़ी बड़ी है ना।
2: बिल्कुल बड़ी हो तो साथे साथे अब अपने बात पे विराम लगावल जाए चले के बेला भी हो तो पंच लोगन से इजाजत लेवल जाए तो पंचो राम राम, राम।

0: कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: आकाशवाणी वाराणसी के DRM यानी डिजिटल रेडियो मोंडियाल प्रसारण में आपका स्वागत है। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र द्वारा साइमलकास्ट DRM और प्योर DRM डिजिटल रेडियो टेरिस्टेरियल ट्रांसमिशन 1233 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी वाराणसी के इन उच्च गुणवत्ता और उन्नत तकनीक वाले DRM यानी डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन को DRM मोड वाले कार रेडियो में ट्यून किया जा सकता है, जहां बिना इंटरनेट के भी एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पर चार सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक ही समय में AIR समाचार, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम, लोक संगीत और फिल्म संगीत सुन सकते हैं। यहां जनरलाइन डेटा सेवा संक्षिप्त समाचार सेवा के रूप में उपलब्ध है और भविष्य में आपातकालीन चेतावनी प्रणाली यानी EWF, यातायात अद्यतन, मौसम संबंधित सूचनाएं और मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आकाशवाणी के DRM डिजिटल रेडियो प्रसारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.prasarbharati.gov.in पर जाएं और DRM डिजिटल रेडियो की नवीन तकनीकी विकास के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.drm.org पर जाएं। नई DRM कार रेडियो पर आकाशवाणी वाराणसी के DRM डिजिटल रेडियो को सुनने के लिए 1233 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। जरूर सुने।
2: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने कोई भी व्यक्तियों संबंधित सूचना। कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी, थाना बाड़ागांव से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमकुम पुत्री विजय कुमार पटेल निवासी बसनी बाजार थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी दिनांक 27 मई 2026 से कहीं लापता हो गई हैं। इनकी हुलिया इस प्रकार है। उम्र 15 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फीट, ये हरा टॉप और नीला प्लाजो पहनी है। ये बसनी बाजार थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी से लापता हुई हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी या आसपास के थाने पर आप सूचना दे सकते हैं। कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनैना साहनी पुत्री संतोष साहनी निवासी B 3/84 शिवाला थाना भेलुपुर कमिश्नरेट वाराणसी 2 जुलाई 2026 से कहीं लापता हो गई हैं। इनकी हुलिया इस प्रकार है। उम्र 17 वर्ष लगभग, रंग गोरा, कद 4 फीट 5 इंच, ये नीला जींस शर्ट पहनी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना भेलुपुर कमिश्नरेट वाराणसी या आसपास के थाना पर सूचना दी जा सकती है। कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक और सूचना के आधार पर सिद्धि यादव पुत्री राजन यादव निवासी C 13/169A1 औरंगाबाद लहंगपुरा कमिश्नरेट वाराणसी ये कहीं खो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 16 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। कोई भी व्यक्ति से संबंधित सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी वाराणसी है।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि नया विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
1: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
0: उधर राज्यसभा ने भी राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करेगा। प्रस्तावित

0: विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से भाजपा द्वारा आज राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे।
1: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने भदोही का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास की जन्मस्थली पहुंचकर मत्था टेका। इस अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों संगठनात्मक जिलों मंडलों गांवों और बस्तियों तक रवाना की जाएगी। इस आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला 20 फरवरी 2027 माघी पूर्णिमा को संत रविदास जयंती तक चलेगी। प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी गोरखपुर चित्रकूट अयोध्या समेत प्रदेश की प्रमुख धार्मिक नगरियों में गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान और पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान परिसर में आयोजित आषाढ़ पूर्णिमा समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ और विरासत स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
2: देश और प्रदेश की सरकार मिलकर के जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया गया है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, वह भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअली उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित ये देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
3: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है। और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे संभालेगा।
0: कल से शुरू हो रहे श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए ये व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

0: जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारी तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ORS वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी। और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, इस नाते सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
1: ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। श्री सिंह ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शानदार प्रदर्शन पर उनको बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की ये ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। वहीं बदायूं में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारम्भ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। यह गीत हमने लिया है फिल्म निगाहें से। आवाज मोहम्मद अजीज की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
4: सावन के झूलों ने मुझे

अभी आप मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म निगाहें का गीत सुने थे। अब आइए पंकज उधास और साधना सरगम को सुने। फिल्म का नाम मोहरा, गीतकार इंदिवर और संगीतकार बीजू शाह।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। अब आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मैंने प्यार किया का एक गीत। गीत के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।

0: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: श्रोताओं रसन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुने फिल्म आज का अर्जुन का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीतकार हैं अंजान और संगीतकार बप्पी लहरी।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए फिल्म जानवर का एक गीत, आवाजें अलका याग्निक और मनोहर उदास की हैं, शब्दकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी देर में।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक

पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष की टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान

या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेपी की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि ये एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य
श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी

0: ये मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की 44वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर आशुतोष, प्रस्तुति दिलीप यादव और संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा का है।
1: प्राच्य विद्या के सिद्धपीठ के रूप में संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का 44वां दीक्षांत महोत्सव आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 9 बजे से विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने की। शिष्ट यात्रा के मुख्य भवन में आने के साथ वंदे मातरम गीत का गायन हुआ और तत्पश्चात विश्वविद्यालय के कुल गीत का वहां के संगीत एवं मंच कला संकाय के छात्रों द्वारा गायन किया गया।

0: स्वागत भाषण करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण रखते हुए अहर्निश सेवा पथ पर अग्रसर है। सन 1791 में संस्कृत पाठशाला या संस्कृत कॉलेज के रूप में स्थापित यह संस्था 22 मार्च 1958 से वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय और 1973 से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में अनेक सोपानों को पार करते हुए संप्रति अपनी स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति में अग्रसर है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हमारे संस्कृत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में क्रमशः नई दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, लेह और अरुणाचल प्रदेश आदि में संचालित हैं।
1: मान्याः विगत 3200 वर्षेभ्यः पूर्वं वराह संस्कृत पाठशाला रूपे संस्थापिता संस्थैषा कालक्रमेण काशी राजकीय संस्कृत पाठशाला ततो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय रूपतां प्राप्य चतुःसप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमे

0: శిక్షా సమాజ సంస్కార సేవా సమన్వయ ఉన్నతి కథం మారుయ భారతీయ జ్ఞాన పరంపరాయా సంరక్షణే సంవర్ధనే తత్పరో విద్యతే।
1: स्वागत भाषण के पश्चात उपाधि वितरण और पदक वितरण का कार्य आरंभ हुआ। 44वें दीक्षांत समारोह में कुल 11,958 छात्र छात्राओं को उपाधि और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिनमें प्रथमा के कुल 106 स्नातक, पूर्व मध्यमा के 488, उत्तर मध्यमा के 494, शास्त्री के 5,418, आचार्य के 5,117, शिक्षा शास्त्री के 267, संस्कृत प्रमाण पत्रीय 1, आयुर्वेदाचार्य के 51 और विद्यावारिधि के 16 उपाधियां स्नातकों और स्नातिकाओं को प्रदान किए गए। उपाधियों और प्रमाण पत्रों का डिजी लॉकर के माध्यम से वितरण किया गया। राज्यपाल महोदया द्वारा बटन दबाकर कुल 11,958 प्रमाण पत्रों को एक साथ डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया। दीक्षांत महोत्सव में विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 29 छात्र छात्राओं को विभिन्न नामों से कुल 51 पदक प्रदान किए गए, जिसमें 17 छात्रों और 12 छात्राओं को पदक प्रदान किए गए तथा पीएचडी उपाधिधारियों और चयनित अध्यापकों का सम्मान भी किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के उपलब्धियों पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन भी किया गया और गोद लिए गए 5 गांवों के बच्चों को भी पुरस्कार देकर उनका उत्साह वर्धन किया गया। 44वें दीक्षांत महोत्सव की थीम थी संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा, विकसित भारत 2047 की वैचारिक अधिष्ठान भारतीय ज्ञान विज्ञान, सांस्कृतिक मूल्यों एवं संस्कृत की शाश्वत परंपरा को आधुनिक भारत के विकास से जोड़ने का ये एक सशक्त संकल्प है। यह थीम इस संदेश को प्रतिपादित करती है कि संस्कृत और भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल हमारी गौरवशाली विरासत ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, समृद्ध, नवोन्मेषी एवं विकसित भारत 2047 के निर्माण की सुदृढ़ आधारशिला भी हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा लघु नाटिका पुकार जल की, जिम्मेदारी कल की का मंचन भी किया गया। साथ ही बरसन लागी बदरिया इस लोकगीत का छात्राओं के द्वारा नृत्य में प्रस्तुति दी गई।

0: दीक्षांत महोत्सव के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि हमारी संस्कृति में मातृ पितृ और गुरु को विशेष स्थान प्राप्त है। इस संदर्भ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा,
1: विद्यार्थियों ये आपके श्रम का, परिश्रम का, लगन का परिणाम है कि आप इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए आपको, पूरे जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए कि इसके पीछे आपके माता पिता और गुरुओं का विशेष योगदान रहा है। इसलिए उनको भी बधाई, उनको भी प्रणाम। विद्यार्थियों आपके माता पिता के प्यार बलिदान और संघर्ष के बिना यह मुकाम हासिल करना मुश्किल है। न जाने उन्होंने कितने अपनी खुशियों का त्याग किया होगा, अपने सुखों का बलिदान किया होगा, कैसे कैसे संघर्ष किया होगा, पेट को काट कर आपको पढ़ाया होगा,

अभी आप सुने थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर आशुतोष, प्रस्तुति दिलीप यादव और संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा का था। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं।

0: धड़क धड़क के तरसे जिया रा तरसे और फिर धड़के
1: हाँ धड़क धड़क के तरसे जिया रा तरसे और फिर धड़के
0: मुख से तेरा आंचल गोरी अंगुल अंगुल सर के

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दुश्मन का गीत, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की और साथियों की। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतकार थे आरडी बर्मन। अब आइए सुने फिल्म प्यासा सावन का एक गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। गीत लिखा है संतोष आनंद ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुने थे फिल्म प्यासा सावन का गीत, आवाज लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब संपन्न हुआ।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या सुनेंगे, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
2: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
3: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
2: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय

0: गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
3: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
4: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
5: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित

0: उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर

0: की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
1: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसूमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक

0: also congratulated long distance runner Gulveer Singh on winning the silver medal in the men's 10,000 meters event. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insults to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assured medals for the country after sealing semi-final berths. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तिजामात हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। ओडिशा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। इस कानून में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार ठहराए गए अफराद की इमलाक को जब्त किए जाने समेत मुख्तलिफ अहम इल्तिजामात हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज की खातिर हुकूमत के अज़्म का इआदा करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के इल्जामात का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत ने बार बार ये वजाहत की है कि कोई गोली नहीं चली और सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इससे कबल बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि नीट मामले पर तलबा का एहतजाज तशद्दुद या नफरत नहीं था, बल्कि नौजवानों का एक शदीद इजहार था और सभी सियासी पार्टियों को इसका एहतराम करना चाहिए। राज्यसभा ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। ये बिल कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। मुजवजा कानून कौमी तराने, जनगणमन की तरह वंदे मातरम को कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करेगा। इसकी खिलाफवर्जी पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बिल को मंजूर किए जाने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, जबकि राज्यसभा में कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया। दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل

0: 2026 पेश किया। ऐवान देरी ने एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक कानून का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत कार में भी पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक तौसी कर दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी और इस वजह से दोनों ऐवानों में वक्फाए सवालात नहीं हो सका। कल लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाना है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला पर आज लोकसभा में किए गए तबसरे पर एसपी सिंह बघेल, रामदास आठोले और हर्ष मल्होत्रा समेत कई मरकजी वजीरों ने तनकीद की है। पार्लियामेंट के अहाते में आकाशवाणी से खसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर की जानिब से ऐवान में इस्तेमाल की गई जबान पार्लियामानी कार्रवाई के लिहाज से गैर मुनासिब थी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क तकरीबन 6 दहाइयों के तशद्दुद के बाद बाएं बाजू की उस इंतहा पसंदी से आजाद हो गया है जिसे कभी दाखिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा तसव्वुर किया जाता था। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने बताया कि ये हुसूलियाबी बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निमटने के लिए कौमी पॉलिसी और एक्शन प्लान के मजबूत नफाज और मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल पर मबनी कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सकी। जनाब राय ने ऐवान को बताया कि फिलहाल कोई भी जिला बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर करार नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे ने हालिया बरसों में हुकूमती इकदामात और सनती इस्लाहात की बदौलत काबिल जिक्र तब्दीली का मुशाहिदा किया है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि मुल्क बतदरीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर उभर रहा है। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड EDF हुकूमत हिंद की एक ऐसी ही पहल है जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट से तहरीक पाने वाली इख्तरा को फरोग देना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के ज्यादातर हिस्से में लगातार सैलाब और नदियों में पानी की कसीर मकदार ने रियासत को संगीन इंसानी बहरान में मुबतला कर दिया है। इसके नतीजे में 4 लोगों की मौत हो गई है और हजारों अफराद बेसहारा हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि 304 ग्राम पंचायतों के तकरीबन 3,80,000 अफराद मुतासर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इंतजामिया ने तेजी से बदलती सैलाबी सूरत हाल और उथल पुथल भरे हालात के दरमियान राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सतह आब में हुए इजाफे की वजह से बेतरानी नदी केवंझर, जाजपुर और भद्रक जिलों के अपने तास में कहर बरपा कर रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालासोर में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बनी हुई है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने नवापाड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे सैलाबी सूरत हाल के मजीद बिगड़ने के खदशात बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में गुज़श्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर है। बस्तर डिवीजन, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी समेत मुख्तलिफ जिलों में बड़ी नदियों में तुगयानी आ गई है, जिसके नतीजे में कई गांवों से सड़क राबता मुनकता हो गया है। कई सड़कों पर पानी के बहने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासर है। मजीद तफसील हमारे रायपुर के नामा निगार से।
0: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पानतोरा में तालिबात के रिहायशी स्कूल में पानी घुस जाने के बाद 50 से ज्यादा लड़कियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में कुछ स्कूलों में पानी भर जाने से आज तातील का ऐलान करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के वज्राला विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों और दीगर अफसरान को अलर्ट पर रहने और जरूरी एहतियाती इकदाम करने की हिदायत दी है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटे के लिए बालोद और कांकेर जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए माहिर मौसमियात डॉक्टर गायत्री वानी ने कहा कि रायपुर, दुर्ग और जुनूबी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और बालाई आसाम में तबाहकुन सैलाब के पस मंजर में

राहत सरगर्मियों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में आसाम के वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने जमीनी सूरत हाल से मुतालिक मालूमात हासिल की और यकीन दिलाया कि मरकज सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत बहाली और तामीर नौ के लिए दरकार हर जरूरी मदद की फराहमी जारी रखेगा। इस दौरान ओडिशा में सैलाब से पैदा हुए हंगामी हालात में शिद्दत आ रही है क्योंकि नदियों में सतह आब में इजाफे की वजह से हजारों लोगों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा और कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीर के रोज रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़िदा एक मार्च के दौरान पाकिस्तानी सिक्योरिटी दस्तों की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है जबकि दीगर मुतादद जख्मी हैं। जेर कब्जा इलाके में कशीदगी में इजाफे के दरमियान इंसानी हकूक और निगरानी से मुतालिक इदारे ने इंसानी हकूक के अक्वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर के दफ्तर पर जोर दिया है कि वो पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बेतहाशा ताकत के इस्तेमाल के मामले में मुदाखलत करे। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर के तर्जुमान जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि सिविल सोसाइटी की एक तंजीम को गैर कानूनी करार देना और अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदियां आयद करना इजहार राय पुरअमन इज्तिमा और अंजुमन साजी के हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से शदीद तश्वीश पैदा करता है। इस दौरान पाकिस्तानी अहदेदारान ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में 13 निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को यह कहते हुए मनसूख कर दिया है कि जारी एहतजाज में उनकी इंतजामिया अमला और तलबा मुबैना तौर पर मुलविस पाए गए हैं। खराब होते हवा के मेयार के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत ने परिवर्तन नामी गाड़ियों की तजदीद की पहल मंजूर की है जिसका मकसद ट्रांसपोर्ट की फजाई आलूदगी और अखराज को कम करना है। इस स्कीम का मकसद दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में पुराने और ज्यादा अखराज वाले ट्रकों और बसों को भारत स्टेज BS6 और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से तब्दील करना है। भगवान शिव की पवित्र गदा और सालाना अमरनाथ यात्रा की अलामत रिवायती छड़ी मुबारक ने आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रीनगर में मैसूमा के तारीखी दशनामी अखाड़े से अपना रस्मी सफर शुरू किया। छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले पहलगाम चंदनबाड़ी शीशनाग और पंचतरणी के अपने रिवायती रास्ते का सफर करेगी। ये पवित्र सफर श्रवण पूर्णिमा पर पवित्र गुफा में खुसूसी पूजा और मजहबी रसूमात के साथ इख्तिताम पजीर होगा जिसके साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा भी मुकम्मल हो जाएगी। अमरीका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने मगरबी एशिया के खत्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमांड ने कहा कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमरीकी फोर्सेज पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमरीका ने यह दावा भी किया कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में यह इल्जाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब की तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाजों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलहा रखने के मकामात को निशाना बनाया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। दोनों मीटिंगें ओवल ऑफिस में बंद कमरे में हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की और वजीर आजम नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंगें खत्म की हैं और दोनों मीटिंगें मस्बत और नतीजा खेज रही हैं। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों अरुंधति चौधरी साक्षी चौधरी सचिन सिवाच अंकुश पांगल और नरेंद्र बैरवाल अपने अपने जुमरों में मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह उन्होंने मुल्क के लिए तमगे यकीनी बना लिए हैं। आज का दिन भारत के मुक्केबाजी दस्ते के लिए बेहतरीन रहा क्योंकि भारतीय मुक्केबाजों ने अपने सभी 5 मुकाबले जीत लिए हैं। इन फतूहत के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के मुक्केबाजों की तादाद 9 हो गई है। वहीं ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की जानिब से जीते गए कुल तमगों की तादाद 12 हो गई है जिनमें सोने के 2 चांदी के 7 और कांसे के 3 तमगे शामिल हैं।
और आखिर में खास खास खबरें एक

0: पर फिर सुन लीजिए, लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तजाम हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। उड़ीसा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। और दौलत मुश्तरका खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शेर गोवर्धन में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। संकलन व वाचन रामकृष्ण मिश्र, प्रस्तुति दिलीप यादव और संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा की है।
2: आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शेर गोवर्धन में दिनांक 29 जुलाई सन 2026 को आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन व वाचन रामकृष्ण मिश्र का, प्रस्तुति दिलीप यादव व संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,
3: सभी बड़े बुजुर्ग, सभी लोग

एक बार

अनिल राजवर्ती उर्जा घाटी के माध्यम से कदम

मुझे रक्त रक्तदान की गर्भा भूमि है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा।

0: राज्यसभा सांसद श्री तरुण चुगजी ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,
1: समाज

0: विधि मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर कुछ भजन सुनाए।
1: Thank you.

मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा,

पावन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हुआ है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर

इस अवसर पर कुछ संत व महंत ने भी अपने विचार रखे तथा कुछ गायकों ने गीत की प्रस्तुति भी की।

0: सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। मैं महंत गोविंद दास शास्त्री सदगुरु कबीर साहब की प्राकट्य स्थली लहरतारा काशी वाराणसी। आज जैसा कि गुरु पूर्णिमा पर्व है और हमारे जीवन में गुरु का महत्व बहुत अधिक है, यदि हमें सच्चे गुरु मिल जाता है तो हमारा जीवन बेड़ा पार हो जाता है, यदि हमें सच्चे गुरु नहीं मिलता है तो हमारा जीवन गर्त में चला गया। कबीर साहब गुरु की महिमा अत्यंत मार्मिक और आध्यात्मिक और ईश्वर और अंतर हाथ सहार दे बाहर करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है। तो गुरु ऐसे ही हमें डांटता फटकारता नहीं, गुरु हमें अच्छे के लिए मारता पीटता। इस प्रकार हमारे जो माता पिता है हमें डांटता है तो हमारे अच्छाई के लिए कहते हैं। कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। आज काशी का ये अद्भुत और एक अलौकिक दिन भी बनने जा रहा है, क्योंकि आज गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती पर एक भव्य संत समागम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जिसमें पूरे देश भर के संत महापुरुषों को बुलाया जा रहा है। और यह कार्यक्रम लगातार गुरु जो रविदास जी महाराज जी की जयंती तक लगातार सद्भावना सत्प्रेम रोज। आज हम जो भटकाववादी है, लोग एक जातिवाद से ग्रसित है, वो सभी हम लोग जोड़ने का काम किए। कबीर साहब भी गुरु रविदास महाराज जी के गुरु भाई थे और एक ही गुरु के शिष्य है, तो हमारे हम सभी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और गुरु रविदास जी की वाणी को जिस प्रकार कबीर साहब की वाणी जन जन तक पहुंचे, उस तरह गुरु रविदास जी की वाणी को जन जन पहुंचाने तक काम कर रहे हैं।
1: ये थी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री गोवर्धन में आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन व वाचन रामकृष्ण मिश्र का, प्रस्तुति दिलीप यादव व संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा का।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर।
3: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता। और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं, हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
4: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

0: आईआर ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। मीडियम में 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने फिल्म संगीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म धर्मकांटा से। आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की है। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत नौशाद साहब का है।

भेजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR।

ये गीत था फिल्म धर्म काटा का। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। अब आइए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुने आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभय सिन्हा, आशा भोसले, आरती मुखर्जी और अमित कुमार को। फिल्म परवरिश। गीतकार है मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम परवरिश।

यह गीत हमने लिया था फिल्म परवरिश से। अब आइए फिल्म दूसरा आदमी का एक गीत सुने। आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राजेश रोशन।

और अब कार्यक्रम के अंत में आई सुनी फिल्म धर्मवीर का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम धर्मवीर।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आ जाए सुने डॉक्टर रामशंकर का गायन। राग है मेघ मल्हार। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर नंदकिशोर मिश्र और हारमोनियम पर लहरा दे रहे हैं इंद्रदेव चौधरी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर रामशंकर का गाया राग मेघ मल्हार। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर नंद किशोर मिश्र और हारमोनियम पर इंद्रदेव चौधरी। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। केवल काली पुतली का दान ज्योति दान। नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं। नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

डीटीएच, ओटीटी वेब्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। आज की सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर अपने कार्यक्रम के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।